0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए नशा मुक्त पंजाब से नशा मुक्त भारत की ओर विषय पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ यूथ एंड मासेस के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर राजेश कुमार। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
1: नशे का प्रकोप न केवल इसका सेवन करने वाले बल्कि उनके परिवारों, समाज और देश के भविष्य के लिए भी गंभीर खतरा है और वर्तमान सरकार ने नशा मुक्त भारत के लक्ष्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इस गंभीर विषय के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा के लिए आज कंट्री वाइड में हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर राजेश कुमार, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर SPYM। डॉक्टर कुमार, आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी में।
2: थैंक यू
1: डॉक्टर कुमार। गृहमंत्री अमित शाह ने कल पंजाब नशा मुक्ति यात्रा में भाग लिया और जलंधर में जनसभा को संबोधित करते हुए।

नासिर हुसैन की फिल्म दिल देखे देखो में उनके हीरो थे शम्मी कपूर, और इस कामयाबी ने नासिर हुसैन और आशा पारेख की एक अच्छी ट्यूनिंग हो गई दोनों में। और उसके बाद जब प्यार किसी से होता है, फिर वही दिल आया हूँ, तीसरी मंजिल, बहारों के सपने, प्यार का मौसम वगैरह में उन्होंने काम किया, और ये सभी फिल्में हिट रहीं।

0: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है और इस जब सुनिए, बाबा कौम महात्मा गांधी की यौम पैदाइश के मौके पर ये फीचर गांधी नामा।
1: जब महात्मा गांधी इस जहान में वारिद हुए, समंदरों ने अपनी लहरों से साहिल के कदम चूमे, आसमां का एक एक तारा रोशनी से चमक उठा, बादे सबा ऐसी चली कि पत्ता पत्ता थिरक उठा, ऊंचे ऊंचे दरख्त झूमे, आबशारों ने गीत गाए, जंगल में फिर मंगल हुआ, बेमौसम यूं अचानक सावन बरसा कि सूखा गुजरात बस गोकुल हुआ, धरती से यूं हुन बरसा कि मुफलिस खुशहाल हुए, खेतों ने सोना यूं उगला कि किसान मजदूर सब माला माल हुए।

0: दास्ताने आलीशान महात्मा गांधी की कुछ यूं बयान की जाती है कि पोरबंदर की रियासत में जहां मोहनदास करमचंद गांधी पैदा हुए, उनके वालिद माजिद करमचंद उत्तम चंद गांधी रियासत के दीवान थे। लेकिन मोहनदास की पैदाइश के बाद हालात कुछ ऐसे बदल गए कि उनके वालिद किसी बात पर नाराज होकर राजकोट में बस गए। एक दिन वो बीमार पड़े। मोहनदास ने बाप की बहुत सेवा की, लेकिन होनी कौन टाल सकता था, उनके वालिद हो गए जन्नती।
1: मोहनदास की वालिदा श्रीमती पुतलीबाई थीं बहुत दयावान और धर्म कर्म वाली। उनके अंदर कूट कूट कर भरी थी धर्म की गहरी आस्था। वो वैष्णव थीं, लेकिन जैन धर्म में भी उन्हें विश्वास था। वो हर समय गीता और रामायण के मुताले में डूबी रहती।

0: करती और अपने बेटे से धर्मात्माओं की कहानियां कहती रहती। मोहनदास की माता जी ने बचपन से ही उन्हें भगत प्रहलाद का किस्सा सुनाया था और राम और कृष्ण जैसे अवतारों के जीवन से भी मुतारिफ कराया था। बचपन से ही मोहनदास को अपने ऊपर बहुत विश्वास था, उनके अंदर जिद बहुत थी और अजब सा एक एतमाद था। वो जो काम सोच लेते उसे करके दिखाते थे और एक बार अगर इरादा कर लेते तो किसी को खातिर में ना लाते थे।
1: तो एक दिन मोहनदास ने शोशा छोड़ा कि वो इंग्लिस्तान जाएंगे और वहां से बड़े बैरिस्टर बनकर वापस आएंगे। घर में ये बात सुनकर एक सन्नाटा सा छा गया और उनकी माताजी को तो बस गशी आ गया। लेकिन बेटा जिद्दी था, ये बात थी सबको पता। वहीं पास में एक जैन साधु भी रहता था। उनकी माता ने कहा साधु से कि वो मोहन को समझाएं, कुछ नसीहत भी करें और करें कोई उपाय। साधु ने कहा, ये बालक उड़ता पंछी है, इसकी परवाज न रोको, जो भी ये करना चाहता है इसको करने दो। माता ने कहा मजबूर होकर, इससे लीजिए ये कसम, ये गोश कभी नहीं खाएगा और ना ही कभी किसी अंग्रेज मेम को मुंह लगाएगा।
2: इस तरह मोहनदास सन 1888 में इंग्लिस्तान वारिद हुए। वहां 3 साल तक वो रहे और खूब फूले फले। पहले पहल वो जेंटलमैन थे और नाच गाना भी उन्होंने सीखा था, लेकिन फिर दिल कुछ ऐसा बदला कि पढ़ने लगे रामायण और गीता। फिर उन्होंने सच को ढूंढा इंजील से और कुरान से, इल्म की दौलत समेटी हर भले इंसान से। इंग्लिस्तान में वो चर्च में भी गए और वहीं दादा भाई नौरोजी से भी मिले।
3: कानून की तालीम पूरी करके ये नौजवान बैरिस्टर वतन वापस आया और बैरिस्ट्री के काम में साल भर के अंदर काफी नाम कमाया। तभी मोहनदास को दादा अब्दुल्ला जैसे बड़े बिजनेसमैन का साउथ अफ्रीका से एक लंबा चौड़ा खत आया। लिखा था, मोहनदास तुम अफ्रीका आ जाओ, मुझे जरूरत तुम्हारी है, फौरन चले आओ।
0: मोहनदास ने सोचा ना था कि वो साउथ अफ्रीका ऐसे जाएंगे कि अगले 20 साल तक जैसे बस वहीं के हो जाएंगे। मोहनदास को अफ्रीका में खासी कामयाबी भी मिली, लेकिन वहां अंग्रेज के बातिल निजाम की परवरदा हर खराबी भी दिखी। मोहनदास ने देखा कि अंग्रेज मकामी लोगों को इंसानी नहीं समझते थे और हिंदुस्तानियों की तरफ तो मुड़कर भी नहीं देखते थे।
1: जुल्म और ज्यादती और नाइंसाफी का हर तरफ दौर दौरा था। वैश्विक गोरों ने इंसानियत को कहीं का ना छोड़ा था। यहां तक के हिंदुओं मुसलमानों की शादी भी वहां मानी ना जाती थी। ना शौहर था कोई और ना कोई किसी की पत्नी जानी जाती थी।
2: मोहनदास को वहां जुल्मो सितम का सामना करना पड़ा, पर मुकाबले के लिए सत्याग्रह का रास्ता मोहन ने चुना। दुनिया ने मौजजा ऐसा कभी देखा न था, सो नतीजा ये हुआ कि अपना गांधी धीरे धीरे महात्मा वहीं बनने लगा। उन्होंने आश्रम भी खोले अपने पैरुओं के वास्ते। धीरे धीरे हजारों लोग उनके पीछे आ गए
3: और फिर अफ्रीका में हिंदुस्तानियों की जिंदगी संवार के महात्मा गांधी 1914 में वापस वतन को आ गए। हिंद वापस आके बापू ने पूरे मुल्क का दौरा किया। अमन का ये पैगंबर संदेशा अपना लेकर घर घर गया। यही वो दौर था जब पहली आलमी जंग के शोले दुनिया में लगे थे फैलने और अफरा तफरी के इस जमाने में हिंदुस्तानी आवाम सेल्फ रूल के सपने लगे थे देखने। यही वो जमाना था जब अंग्रेज हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तानियों से लड़ाना चाहते थे। फूट डालो और राज करो की पॉलिसी आजमाना और फैलाना चाहते थे।
0: किस्सा कुछ यूं है जनाब कि भारत आकर महात्मा गांधी ने साबरमती में अपना एक आश्रम खोला और चंपारण से लेकर अहमदाबाद तक हर जुल्म के खिलाफ हल्ला बोला। मुल्क ने उनकी दावत को लब्बैक कहा और हर शख्स उनके पीछे आ गया। महात्मा गांधी की शौहरत मुल्क के बाहर भी लगी थी फैलने और

0: सारी दुनिया पुरुम्मीद होकर उनको लगी थी देखने।
1: जलियांवाले बाग का किस्सा भला कौन है भूल सकता।
0: 13 अप्रैल 1919 का वो दिन यौमे स्याह है जिसने अमृतसर को बनाया एक ज़ियारतगाह है, उसी जगह जहां हिंदू मुसलमानों सिखों ने मिलकर एक साथ जामे शहादत नोश किया था और वो बेगुनाह मासूमों के खून से देश ने स्वराज की बुनियाद का एक नमूना पेश किया था।
2: तो जनाब, ये महात्मा गांधी के सत्याग्रह का असर था जिसने इतने बड़े हादसे के बाद तशद्दुद की लहर को दबाया था और हिंदुस्तान के तूलो अर्ज को लड़ने मरने से बचाया था। गांधी जी के इस नए तरीके ने दुनिया को चौंका दिया, खासतौर पर वो लोग जो अंग्रेजों की नौकरी में थे उनको दहला दिया। अकबर अलाहाबादी उस जमाने में अंग्रेजी हुकूमत में मजिस्ट्रेट थे। उन्होंने घबरा कर फिर ये लिखा, कूचे सर्विसे इंग्लिश में रहे हम साकिन, कूचे सर्विसे इंग्लिश में रहे हम साकिन, जाहो जरही की तमन्ना में कटे जीस्त के दिन, वाजे गांधी से बदल सकते हैं क्यों कर बातिन, आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे, उम्र तो सारी कटी इश्क बुता में मोमिन।
3: ये सारी बातें तो होती रहेंगी, अब चले कुछ बातें ऐसी भी हो जाएं जिससे बापू की जिंदगी के अनदिखे पहलू हम सबको दिख जाएं। एक बार की बात है कि अपने बापू एक जेल में कैद के दिन बिता रहे थे और अजीब बात यह थी कि इस जेल में अंग्रेजों के हिमायती बन के हिंदुस्तानी मच्छर भी उनको सता रहे थे। अजीब जालिम मच्छर थे जो उनको दिन रात काटते थे, लेकिन अहिंसा के पथ पर चलने वाले बापू उनको नहीं मारते थे। और फिर जो नहीं होना था वो ही माजरा हो गया, यानी अपने महात्मा गांधी को मलेरिया हो गया। और फिर जैसे जैसे उनका बुखार बढ़ता गया, अंग्रेजी इलाज के लिए बापू का इनकार भी बढ़ता गया। आखिरकार जाने माने डॉक्टर बीसी रॉय बापू को देखने जेल में आए, लेकिन इलाज के लिए बापू को देर तक समझा ना पाए। बापू ने जब बीसी रॉय की बात नहीं मानी तो रॉय साहब ने बापू को लाजवाब करने की ठानी। कहने लगे, डॉक्टर रॉय, हम आपका इलाज करने नहीं आए, आपको बचाकर हमें 400 मिलियन हिंदुस्तानियों को बचाना है। आपका इलाज उनके इलाज का दरअसल एक बहाना है। अगर आप इस बीमारी से किसी तरह बच जाएंगे तो 400 मिलियन अपने देशवासी बच जाएंगे। बापू मुस्कुराए और हंसते हुए बोले, तुम जीते मैं हारा, दलील में तुम्हारी दम है। तुम्हें वकील बनना था, तुम डॉक्टर कैसे बन गए? डॉक्टर रॉय भी कम नहीं थे, दवा की खुराक पिलाते हुए बोले, महात्मा जी, अगर मैं वकील बन जाता तो बड़ा जुल्म हो जाता, क्योंकि फिर बापू की सेवा कैसे कर पाता। बापू कहने लगे कि ए बीसी रॉय, तुम्हारा ये कमाल का जुमला बताता है कि डॉक्टरी से कहीं ज्यादा तुमको कानूनी दांव बेचाता है।
0: और उसके बाद खिलाफत मूवमेंट की बारी आई जिसमें महात्मा जी ने देश को एक नई राह दिखलाई। बापू ने जोर देके कहा कि हर एक हिंदू का यह फर्ज है कि वो तहरीक अदम तावुन में इंतहा तक मुसलमानों का साथ दे। बापू ने कहा, यह कैसे मुमकिन है कि हिंदुस्तान ऐसे लोगों से तावुन करे जो अपने अमाल हुकूमत के जालिमाना जराइम से पर्दापोशी करे। कहा उन्होंने, मैं तस्लीम करता हूं कि अदम तावुन का रास्ता बड़े खतरात वाला है, लेकिन हमें एक जिंदा कौम बनना है तो यही एक तरीका बस करामात वाला है।
2: फिर इस तहरीक में वो दिन भी आया जब महात्मा गांधी का हाथ हाथ में लेकर मौलाना आजाद ने फरमाया, भाइयों, तहरीक खिलाफत अब एक मंजिल पर पहुंच गई है, खिताबात वापस करके जिसका संगे बुनियाद रखा जाएगा। हम अंग्रेजों का साथ अब कभी ना देंगे, आइंदा इस बात को हमेशा याद रखा जाएगा। और आइए आज हम ये तय करें कि सरकारी नौकरी वाले नौकरियां छोड़ देंगे, ओहदे वाले अपनी अपनी कुर्सियां

0: छोड़ देंगे और तालिबे इल्म सारे यूनिवर्सिटियां छोड़ देंगे।
1: अंग्रेज सोच नहीं सकते थे कि उनके आगे कोई ऐसा सीना सपर होगा। अकबर इलाहाबादी ने देश को पहले ही बता दिया था कि गांधी की आंधी अंग्रेजों के होश उड़ा रही है। देखिए क्या खूब कहते हैं अकबर।
2: नहीं।

अगर बापू ने ये सारी शायराना बातें अनसुनी करते हुए चरखा चलाया और कहा कहा अपने पैरों पर खड़े हो जाओ और अपनी जरूरत का सामान भाइयों खुद ही बनाओ, और फिर वो यादगार लम्हा भी आ ही गया जब देश के लोगों ने विलायती के मोह को छोड़ा, अपने देश का खद्दर ही पहनो बोलियां लगने लगी, बाहर के कीमती कपड़ों का देश ने तिरस्कार ऐसा किया कि जगह जगह ऐसे कपड़ों की होलियां जलने लगी। अपने शायर मीर साहब को गांधी जी के फैसले का पता चला तो बोले,

0: दिन हम फतेहमंद होंगे, जरूर एक दिन हम फतेहमंद होंगे।
1: बापू ने कहा था, ब्राह्मण लोग गैर ब्राह्मण के साथ वैसा ही सलूक करते हैं जैसा कि अंग्रेज हिंदुस्तानियों के साथ करते हैं। हमने दलित कौमों को पामाल किया और बिलाखिर खुद पामाल हो गए हैं। ये हमारी नफरतों का समर है कि हमारे ही भाई हमारी वजह से आज बदहाल हो गए हैं।
2: हम लोग बापू की जिंदगी के सफे यूं ही पलटते जाएंगे। हम लोग बापू की जिंदगी हमारी बात मैं उल्फत के छलकते जाएंगे। अब कुछ बातें भी हो जाएं कि अपने बापू कैसी प्यारी प्यारी बातें करते थे, सारी दुनिया के लोग कैसे उन बातों सर धुनते। भाई हुआ यूं, बहुत बड़े एक सेठ जो करोड़ों आते थे मिलने अक्सर खींचे चले आते थे। उन्हें बापू से एक अनोखा मोह था, दिन रुपए पैसे था। रोकना की बात उसे यूं कहेंगे, ये बताइए आपको देश की सेवा के लिए मेरी जरूरत है या मेरी दौलत की जरूरत है। बापू ने कहा, देश को बस मेरी जरूरत है। सेठ बोले, जब मुझको देश की सेवा लेकर आएंगे तो कौन कौन से अहम काम आप मुझसे करवाएंगे। बापू ने करोड़पति सेठ से कहा, भैया जी हम तो तुमसे बस चरखा कतवाएंगे।
3: जो लोग हको सदाकत की जद्दोजहद में मसरूफ रहा करते हैं, वो लोग अपना वक्त दौलत जमा करने में खराब नहीं किया करते हैं। तो अपने बापू से किसी ने एक दिन पूछा, ये बताइए कि ये जो अपनी है दुनिया, ये समय के साथ क्या बेहतर होती जा रही है या ये जगह पहले से और बदतर होती जा रही है। बापू ने कहा, बेटा हम तुम्हें दिल की बात बताते हैं। मेरा विश्वास है कि इस दुनिया को परम परमेश्वर चलाते हैं, इसलिए ये दुनिया जरूर बेहतरी की तरफ जा रही होगी और इस दुनिया में खराबी कम होती जा रही होगी। फिर कुछ सोच कर कहने लगे, लेकिन देखने से ऐसा लगता तो नहीं है।
1: एक बार की बात है, जब महात्मा गांधी इंग्लैंड के सफर पर थे तो उनको वहां के बादशाह से भी मिलने जाना था। तो राजा और रंग की इस होने वाली मुलाकात पर वहां की पब्लिक में बड़ा हंगामा था। इंग्लैंड के बादशाह का लिबास बड़ा आलीशान हुआ करता था, लेकिन उस कड़ाके की सर्दी में

0: बस एक धोती और कंबल बापू का मुकम्मल परिधान हुआ करता था। लोग बादशाह के पास जब जाते थे तो सज संवर कर दरबार में अपनी छब दिखलाते थे। तो एक अखबार के रिपोर्टर बापू के पास घबराए हुए आए और सवाल के तौर पर एक दूर की कौड़ी लाए, पूछने लगे,
1: शाही मुलाकात के दिन मिस्टर गांधी आपने कौन से कपड़े पहने होंगे?
0: बापू ने कहा, हम यही अपनी पुरानी धोती पहने होंगे। रिपोर्टर साहब ये जवाब सुनकर बौरा गए और सोचते सोचते काफी चकरा गए, कहने लगे,
1: ये कपड़े जरूरत से कम नहीं लगते आपको?
0: नहीं, कोई कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि भैया आपके बादशाह ने हम दोनों की जरूरत से ज्यादा कपड़े पहने होंगे।
2: इंग्लैंड के उसी सफर की एक और बात आप सबको रहेगी बरसों याद। वहां के वजीर आजम थे उस दौर में रामसे मैकडोनाल्ड। बापू जहां ठहरे थे वहां रामसे उनसे मिलने आए और उस इलाके के पोस्टमैन जो लेटर लेकर आते थे महात्मा गांधी का नाम सुनकर वो भी उनसे मिलने चले आए। गांधी जी के अंग्रेज मेजबान ने उनसे पूछा, बापू आप पहले किससे मिलेंगे, पोस्टमैन से या पहले प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे? बापू ने कहा, इसमें सोचना कैसा, हम पहले मैन ऑफ लेटर्स से मिलेंगे।
3: आप सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी कितने अजीम इंसान थे, इतने अजीम कि उनका ख्याल आते ही हमारा जहन और दिल एहतरामन उनकी याद के आगे झुकता चला जाता है और हमको उनकी जिंदगी का एक एक वो वाक्य याद आता है। और खासतौर से एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे अजीम तरीन साइंसदान का वो कॉल हमारी नजरों के सामने आ जाता है जब उन्होंने कहा था कि आने वाली नस्लें कभी इस बात पर हैरत का इजहार करेंगी कि क्या कभी इस कुर्रे अर्ज पर यानी इस प्लैनेट अर्थ पर कोई गोश्त पोस्त का गांधी जैसा इंसान सचमुच गुजरा था।
0: फिर एक दिन गांधी जी ने दांडी यात्रा का ऐलान कर दिया, लेकिन इस यात्रा को लेकर दिलों में शक के बादल छाए हुए थे। यहां तक कि कांग्रेस के बड़े लीडर भी घबराए हुए थे। नमक बनाने का गांधी जी का मंसूबा बहुत सादा था, लेकिन यह कदम हैरत अंगेज भी ज्यादा था। नमक मुल्क के लिए बड़ी अलामत था, क्योंकि नमक इंसान के खाने का बुनियादी हिस्सा था। लिहाजा नमक टैक्स के मसले को उठाकर गांधी जी ने अंग्रेजी हुकूमत की बेरहमी को उजागर कर दिया। उन्होंने दिखाया कि हुकूमत बेरहम है, हुकूमत जुल्म की अलामत है।
2: इससे ज्यादा जुल्म क्या हो सकता था? हर शख्स नमक आसानी से बना सकता था, लेकिन अंग्रेज कानून कहता था कि नमक कोई हिंदुस्तानी नहीं बना सकता था। इस मसले ने जात, रियासत, नस्ल और जबान की तमाम हदों को तोड़कर आवाम को यकजा कर दिया था। अहिंसा और सिविल नाफरमानी तहरीक की कामयाबी का सबसे बड़ा सबूत दांडी यात्रा थी, जो गांधी जी की बड़ी कामरानियों में आती है।
0: 12 मार्च को अहमदाबाद से गांधी जी के पीछे पीछे लोग 240 मील का लंबा सफर

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में जारी युद्ध और संघर्ष के माहौल में गांधी जी का शांति और अहिंसा का संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सत्य और अहिंसा में महात्मा गांधी का अटूट विश्वास, न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और हर व्यक्ति की गरिमा में उनका गहरा विश्वास मानवता को प्रेरित करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी युगों में बापू के आदर्श मानवता के लिए पथ प्रदर्शक बने रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर विजय घाट स्थित समाधि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, किरेन रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल, जितेंद्र सिंह और एल मुरुगन ने आज नई दिल्ली स्थित संविधान सदन में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन, कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कई सांसद, संसद के वरिष्ठ अधिकारी और विद्यार्थियों ने भी दोनों महान नेताओं को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। आज के दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान तक आगे बढ़ाया है। विदेश मंत्रालय भारतीय नागरिक और फ्लाई दुबई विमान के बहादुर पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार की स्वास्थ्य स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। सऊदी अरब के तबुक में एक अस्पताल में आरंभिक उपचार के बाद अब उन्हें अबू धाबी भेज दिया गया है। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय राजदूत ने अस्पताल में कैप्टन मच्छार से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर कैप्टन स्मिथ मच्छार की वीरता और साहस को सलाम किया। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी में 11 मेट्रो स्टेशन अगले निर्देश तक बंद रहेंगे। इनमें जनपथ, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय, राजीव चौक, सेवा तीर्थ, मंडी हाउस, लोक कल्याण मार्ग, आईएनए, चावड़ी बाजार, रामकृष्ण आश्रम मार्ग और नई दिल्ली स्टेशन शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक

0: आंगन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त मंजुला
1: और मैं हूँ राधा पाठक। स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा
0: नमस्कार।
1: आप हमें सुन सकते हैं आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, साथ ही साथ आप हमें सुन सकते हैं इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज पर और एआईआर लाइव न्यूज 24/7 पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं।
0: और दोस्तों, आज का दिन हमें सिर्फ इतिहास याद करने का नहीं है बल्कि अपने भीतर झांकने का मौका भी देता है। आज हम मना रहे हैं राष्ट्रपति महात्मा गांधी की जयंती, जिन्होंने सत्य और अहिंसा को जीवन का सबसे बड़ा हथियार बनाया। गांधी जी के लिए आजादी का अर्थ सिर्फ अंग्रेजी हुकूमत से मुक्ति नहीं था बल्कि एक ऐसे समाज का निर्माण भी था जहां हर इंसान को बराबरी और सम्मान मिले।
1: साथ ही आज सादगी, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के प्रतीक पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती भी है। मंजुला, शास्त्री जी का व्यक्तित्व जितना सरल था उनकी सोच उतनी ही मजबूत थी। सादगी, ईमानदारी और कर्तव्य के प्रति समर्पण उनके जीवन की पहचान रहे। जय जवान जय किसान का उनका दिया हुआ नारा आज भी देश की सुरक्षा और अन्नदाता दोनों के महत्व को याद दिलाता है।
0: और बात अगर गांधी जी के विचारों की हो तो अस्पृश्यता के खिलाफ उनका संघर्ष हमें याद दिलाता है कि इंसान की पहचान उसकी जाति से नहीं, उसकी इंसानियत से होनी चाहिए।
1: इसलिए आज ही मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, एक ऐसी सोच का दिन जो कहती है कि मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद और हिंसा हमारी पहली प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए।
0: तो आज दोस्तों 2 अक्टूबर पर बस एक छोटी सी कोशिश कीजिए, किसी के साथ भेदभाव न हो, किसी की बात सुने बिना उसे खारिज ना करें
1: और जहां तक संभव हो हिंसा की बजाय संवाद को ही चुनें, क्योंकि बदलाव हमेशा बड़े भाषणों से नहीं आता, कभी कभी एक छोटी सी अच्छी सोच भी उसकी शुरुआत हो सकती है।

0: लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत हम सुन रहे थे फिल्म परिवार से।
1: और 2 अक्टूबर एक ऐसी तारीख जो हमें इतिहास के कई महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों की याद दिलाती है। आज सिर्फ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती नहीं, आज ही के दिन महान जन नेता के कामराज की पुण्यतिथि भी है और प्रसिद्ध नाटककार शंकर शेष की जयंती भी है।
0: और 2 अक्टूबर से शुरू होता है राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह। 2 से 8 अक्टूबर तक मनाए जाने वाला ये सप्ताह हमें भारत की जैव विविधता और वन्य जीव संरक्षण के प्रति जागरूक करता है। और मंजुला, पता है तुम्हें इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1952 में।
1: बिल्कुल, लेकिन आज वन्य जीव सप्ताह पर बात सिर्फ बाघ हाथी और जंगलों की नहीं, आज बात उन लोगों की भी जिन्होंने हमें समझाया कि प्रकृति को बचाने के लिए हमेशा बड़ी बड़ी मशीनें या करोड़ों रुपए नहीं चाहिए, कभी कभी एक इंसान की जिद ही काफी होती है।
0: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने मंजुला, क्योंकि असम के जादव मोलाई पयों को देख लीजिए। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे एक बंजर बालू के टापू से शुरू हुई उनकी मेहनत ने दशकों से लगभग 550 हेक्टेयर में फैले जंगल का रूप ले लिया, जिसे आज मोलाई वन के नाम से जाना जाता है। इस जंगल में हाथी, गैंडे, बाघ, हिरण और अनेक पक्षियों ने अपना घर बनाया। 2015 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया।
1: और उनकी कहानी की सबसे खूबसूरत बात कि उन्होंने प्रकृति को अपने हिसाब से बदलने की कोशिश नहीं की, उन्होंने प्रकृति को मौका दिया कि वो खुद अपना संसार फिर से बना सके।
0: कर्नाटक की सालू मर्दा थिम्मक्का, जिन्होंने वर्षों तक पेड़ लगाए, उनकी देखभाल की। झारखंड की जमुना टूडू, जिन्होंने महिलाओं को साथ लेकर जंगलों की रक्षा की मुहिम खड़ी की।
1: और केरल की देवकी अम्मा, जिन्होंने अपनी जमीन को ही एक समृद्ध हरित संसार में बदल दिया। इनकी कहानियां हमें एक बात बताती है कि प्रकृति को बचाने के लिए आपको प्रकृति प्रेमी कहलाने की जरूरत नहीं, बस प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदार निभाइए जिम्मेदारी। पेड़ सिर्फ ऑक्सीजन की मशीन नहीं है, वे मिट्टी को थामते हैं, जल चक्र में भूमिका निभाते हैं, पक्षियों और कीड़ों को भी घर

0: देते हैं, तापमान को नियंत्रित करते हैं और पूरे पारिस्थितिकी या तंत्र को जीवित रखते हैं।
1: इसीलिए जंगल में सिर्फ कितने पेड़ हैं ये मायने नहीं रखता, ये भी मायने रखता है कि उस जंगल में कितने तरह के पेड़, कितने पक्षी, कीट, जानवर और छोटे छोटे जीव साथ रह रहे हैं। सोचिए इसके साए में कितनी जिंदगियां पल रही हैं, क्योंकि जंगल खत्म होने की शुरुआत हमेशा कुल्हाड़ी से नहीं होती, कभी कभी हमारी उदासीनता भी होती है।
0: और जंगल को बचाने की शुरुआत भी हमेशा किसी बड़े अभियान से नहीं, कभी कभी एक इंसान, एक पौधा और उसे बचाने की जिद ही काफी होती है।

0: या आपके आसपास किसी व्यक्ति को इनमें से कोई भी लक्षण हो, जैसे चमड़ी पर सुन्न दाग एवं धब्बे, नसों में सूजन एवं तंत्रिका क्षेत्र में सुनिश्चित सुन्नपन हो, तो घबराए नहीं एवं अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में जाएं। कुष्ठ रोग जीवाणु से होने वाली एक साधारण बीमारी है। इसका इलाज पूर्णतः संभव है, इसलिए कोई संकोच ना करें। इसका इलाज 6 महीने से लेकर 12 महीने तक चलता है और समय पर और पूर्ण इलाज लेने से कुष्ठ रोग हमेशा के लिए दूर हो जाता है। इसके लिए आपका सहयोग बहुत जरूरी है। धन्यवाद।
1: सुना आपने कि समाज के प्रति जागरूक रहना बहुत जरूरी है और जो बीमारी अभी डॉक्टर विनोद सर ने बताई उनका उसका इलाज पूरी तरह से संभव है। सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। कुष्ठ रोग से डरे नहीं, बस समय पर इलाज जरूरी है। स्वस्थ समाज बनाएं। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम घर आंगन, मेरे यानी राधा पाठक और मंजुला के साथ। और आज एक खास सेगमेंट होता है एक कदम बुजुर्गों की ओर। तो दोस्तों, हमारे घरों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास उम्र के साथ साथ अनुभव का खजाना जमा होता है। हम बात कर रहे हैं अपने बुजुर्गों की। दादी नानी की कहानियां, दादा दादी के जीवन के अनुभव, माता पिता के संघर्ष, ये सब हमारे परिवार की ऐसी धरोहर है जिन्हें किसी बैंक में जमा नहीं किया जा सकता।
2: आज की पीढ़ी के पास तकनीक है, तेज रफ्तार है, नई जानकारी है, लेकिन बुजुर्गों के पास क्या है? अनुभव। उन्होंने वो समय देखा है जब चीजें कम थी लेकिन रिश्तों के लिए समय ज्यादा था।
1: बिल्कुल राधा जी। और आज अगर घर में कोई बुजुर्ग हमें पुराने समय की कोई बात बताते हैं तो हो सकता है वो हमें कहानी लगे, लेकिन उसी कहानी में जीवन का कोई बहुत बड़ा सबक छिपा होता है।
2: इसलिए आज 2 अक्टूबर के अवसर पर हम छोटा सा संकल्प ले सकते हैं। हमें अपने घर के किसी बुजुर्ग के पास बैठना चाहिए, उनकी बातें सुननी चाहिए और उनके अनुभवों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना चाहिए।
1: बिल्कुल, क्योंकि बुजुर्ग परिवार का अतीत ही नहीं होते, वो परिवार के आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक भी हो सकते हैं।

0: अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर को फिल्म खानदान से।
1: मंजुला, 2 अक्टूबर के आते ही स्वच्छता का विचार हमारे मन में आ जाता है।
0: बिल्कुल आता है।
1: लेकिन क्या स्वच्छता केवल एक दिन की गतिविधि है? क्या ये हमारी रोजमर्रा की आदत नहीं होनी चाहिए?
0: बिल्कुल सही कहा राधा जी। घर की साफ सफाई, रसोई की स्वच्छता, पानी की बचत, कचरे को सही जगह पे डालना और अपने आसपास के वातावरण को साफ रखना, ये छोटी छोटी बातें मिलकर बहुत बड़ा बदलाव लाती है। और हाँ, यहाँ बुजुर्गों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है,
1: क्योंकि घर के बड़े बुजुर्ग हमें अक्सर बताते हैं कि पहले किस तरह चीजों को दोबारा इस्तेमाल किया जाता था, भोजन की बर्बादी नहीं होती थी और जरूरत के हिसाब से ही सामान खरीदा जाता था।
0: और आज जब हम पर्यावरण और कचरे की समस्या की बात करते हैं तो पुराने समय की कई आदतों से हम सीख सकते हैं, इसलिए स्वच्छता के साथ साथ हमें संसाधनों का सम्मान भी सीखना चाहिए।

0: ठाकुर और साथियों को आप सुन रहे थे फिल्म उपकार में, और मंजुला बात चल रही थी स्वच्छता की, और आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि आप कुछ बहुत जरूरी और खास लेकर आई हैं हमारे श्रोताओं के लिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल दादाजी, तो त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है, दशहरा, फिर दीपावली, और उसके बाद शादियों का मौसम, यानी अगले कुछ हफ्तों तक घरों में खूब रौनक होने वाली। लेकिन इस बार जरा तैयारी का अंदाज बदलिए, सजावट ऐसी हो जो अगले साल भी काम आए, खरीदारी ऐसी हो जिसकी जरूरत सच में हो, और जश्न ऐसा हो जिसमें खुशियां रहें, कचरा नहीं, और यही है जीरो वेस्ट फेस्टिव प्रिपरेशन।
0: सबसे पहले बात घर की सजावट की। हर साल नई झालर, सजावटी सामान खरीदने की बजाय पुराने सामान को नया रूप दिया जा सकता है। पुराने दुपट्टे, साड़ियां, कपड़े की कतरने, ये खूबसूरत वंदनवार झालर या टेबल रनर बन सकती हैं। पुराने कांच के जार में दिए या फूल सजाइए। लकड़ी, बांस, जूट, मिट्टी और कपड़े जैसी चीजें जो हैं सजावट को खूबसूरत भी बनाती हैं और बार बार इस्तेमाल भी की जा सकती है।
1: क्या बात है, और दिल्ली में हुए एक जीरो वेस्ट फेस्टिवल में कपड़े की कतरनों से पुनः इस्तेमाल होने वाली झालरें और पुराने गत्ते से सजावटी फ्रेम बनाए गए थे, यानी जिसे हम बेकार समझते हैं वही थोड़ी कल्पना से सजावट बन सकता है,
0: तभी तो होगा हमारा जीरो वेस्ट।
1: क्या बात।
0: और अब बात आती है रंगोली की। बाजार में प्लास्टिक की चमकीली सजावट खरीदने की बजाय चावल

0: का आटा, हल्दी, फूलों की पंखुड़ियां, पत्तियां और प्राकृतिक रंगों से रंगोली बनाइए। खूबसूरती भी, परंपरा भी और बाद में आसानी से प्रकृति में लौट जाने का विकल्प भी।
1: और खरीदारी, यहाँ एक छोटा सा नियम बहुत काम आएगा। पहले देखिए कि घर में क्या है, फिर तय कीजिए कि वास्तव में क्या चाहिए। हर साल नए कुशन कवर, नई ट्रे, नए सजावटी सामान लेने के बजाय पुराने सामान को थोड़ा सा बदल कर इस्तेमाल किया जा सकता है। और गिफ्ट्स का क्या राधा जी?
0: हर गिफ्ट का मतलब बड़ा डिब्बा, बहुत सारी पैकेजिंग नहीं होती है। मिट्टी के दिए, स्थानीय हस्तशिल्प, कपड़े के बैग, पौधे, घर में बने खाद्य पदार्थ या किसी स्थानीय कारीगर की बनाई चीज, छोटा उपहार भी यादगार हो सकता है।
1: और एक जरूरी बात, प्लास्टिक की चमक हमेशा त्योहार की खूबसूरती नहीं बढ़ाती। भारत में कई ऐसे सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स पर प्रतिबंध लागू है, इसलिए सजावट और जो आयोजन होता है वो योजना बनाते समय प्लास्टिक और थर्मोकोल की बजाय पुनः इस्तेमाल किए जाने वाले प्राकृतिक सामग्री चुनना बेहतर है।
0: तो इस फेस्टिव सीजन एक खूबसूरत संकल्प लेते हैं।
1: बिल्कुल,
0: कम खरीदेंगे, सोच समझ कर खरीदेंगे, पुराने चीजों को नया जीवन देंगे, इस एक बार इस्तेमाल होने वाली चीजों से बचेंगे, स्थानीय कारीगरों और स्थानीय उत्पादों को जगह देंगे, और सबसे जरूरी, त्योहार खत्म होने के बाद अपने पीछे सिर्फ यादें छोड़ेंगे, कचरे का पहाड़ नहीं, क्योंकि असली उत्सव वही है जहाँ घर भी सजे, दिल भी सजे और प्रकृति पर बोझ भी न पड़े।
1: क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने। और दियों की रोशनी रहे, रिश्तों की गर्माहट रहे, त्योहारों की खुशबू रहे, पर बेकार चीजों की भरमार ना रहे।

0: याला याला।
1: ये गीत आप सुन रहे थे उजाला फिल्म से मन्नाडे और लता मंगेशकर की आवाज में। और राधा जी, हमारे आसपास कोई परेशान हो, कोई नौकरी को लेकर उलझन में हो, रिश्ता टूट गया हो, करियर को लेकर कंफ्यूज्ड हो, या बस मन थोड़ा सा भारी हो, हम तुरंत कह देते हैं कि ऐसा करते, तुम्हें पहले ही समझ जाना चाहिए था, मैं तुम्हारी जगह होता तो ये करता, इतना मत सोचो। लेकिन जरा सोचिए, क्या हर परेशानी का समाधान उसी पल चाहिए होता है? कभी कभी इंसान समस्या लेकर नहीं आता, वो बस अपना मन लेकर आता है। और वहाँ सलाह देने से ज्यादा जरूरी होता है सुनना। एक छोटा सा फर्क समझिए, सलाह कहती है तुम्हें क्या करना चाहिए, मैं बताता हूँ, और साथ कहता है तुम जो भी तय करो पहले मुझे बताओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और यही फर्क किसी रिश्ते को सुरक्षित बनाता है।
2: और आपने भी महसूस किया होगा दोस्तों कि जब हम परेशान होते हैं तो कई बार सामने वाला हमारी पूरी बात होने से पहले ही समाधान बताना शुरू कर देता है। और अगर आप किसी के बहुत करीब हैं तो अगली बार उसकी परेशानी सुनते हुए तुरंत मेरी, और अगर आप किसी के बहुत करीब हैं तो अगली बार उसकी बात सुनते हुए ये मत सवाल कहिए कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें सलाह दूं या बस तुम्हारी बात सुनूं। यकीन मानिए, ये छोटा सा सवाल रिश्ते में बहुत बड़ी समझदारी ला सकता है,
1: क्योंकि हर बार किसी की जिंदगी ठीक करना जरूरी नहीं होता। कभी कभी बस उसे मुश्किल समय में उसके साथ खड़ा होना ही बहुत होता है। और शायद रिश्तों की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है, हमेशा सही शब्द मिल जाएं ये जरूरी नहीं, लेकिन सही समय पर किसी का हाथ थामे रहना बहुत जरूरी है।
2: क्या बात है। तो अगली बार किसी अपने को परेशानी में देखें, उसे बदलने की कोशिश मत कीजिए, उसे समझने की कोशिश कीजिए। सलाह बाद में भी दी जा सकती है, साथ देने का समय शायद अभी है।

0: और गीता इस फिल्म में आप सुन रहे थे आशा भोसले और किशोर कुमार को।
1: और दोस्तों, हमारी पीढ़ी कहती है हमारे समय में ऐसा होता था, नई पीढ़ी कहती है अब जमाना बदल गया है,
0: और यहीं से शुरू होता है पीढ़ियों का संवाद। वास्तव में दोनों पीढ़ियों के पास एक दूसरे को देने के लिए बहुत कुछ है।
1: बिल्कुल।
0: युवा पीढ़ी बुजुर्गों को मोबाइल, इंटरनेट और नई तकनीक सिखा सकती है,
1: और बुजुर्ग युवाओं को सिखा सकते हैं धैर्य, बचत, रिश्तों की अहमियत, मुश्किल समय में हिम्मत और कम साधनों में खुश रहना।
0: इसीलिए दोनों पीढ़ियों के बीच दूरी बनाने की जरूरत नहीं है, जरूरत है एक दूसरे को समझने की। अगर दादी मोबाइल चलाना सीख रही है तो पोती उनकी मदद करे, और अगर पोता नया ऐप समझ रहा है तो दादा भी अपने अनुभव उसे साझा कर सकता है, कोई कहानी सुना सकता है, क्योंकि जो ऐप है आजकल मंजुला उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि अगर आप कहानी का ऐप शुरू करोगे तो आपको बुजुर्गों से सहायता लेनी ही पड़ेगी।
1: और यही तो है घर आंगन की खूबसूरती।

0: हम सुन रहे थे जांबाज फिल्म से सपना और किशोर कुमार की थी आवाजें।
1: और दोस्तों, कार्यक्रम अपने समाप्ति की ओर है, तो जाते जाते क्यों ना एक टिप बताया जाए।

0: अगर अभी फेस्टिव टाइम है तो काजल को स्मज होने से बचाना चाहती हैं, तो सबसे पहले अच्छी तरह से काजल लगाएं, उसके बाद उसी कलर का आई शेडो उस पर अप्लाई कर लें। काजल पूरा दिन टिका रहेगा और आपका लुक बहुत ही तरोताजा नजर आएगा।
1: और अब सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत जो हमने लिया त्रिशूल फिल्म से, लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजें। और उम्मीद है कि आज की प्रस्तुति आप सबको पसंद आई होगी। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, दीजिए मुझे यानी राधा पाठक और
0: मंजुला को इजाजत। नमस्कार
1: और सुनते रहिए ये गीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बहादुर भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार से बात की। उन्होंने दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट में अपने सह पायलट के हमले को नाकाम करते हुए 180 लोगों की जान बचाई थी। कैप्टन मच्छार ने प्रधानमंत्री को अपने अनुभव के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि इस घटना के दौरान उन्हें किस बात से साहस मिला। प्रधानमंत्री ने उनकी बहादुरी की सराहना की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।
1: आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूँ।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक से अलग फ्रांस, कनाडा, सऊदी अरब और दक्षिण कोरिया के व्यापार मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में संबंधित देशों के साथ व्यापारिक संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। फ्रांस के विदेश व्यापार और आर्थिक मामलों के मंत्री निकोलस फोरिसिये के साथ बैठक में श्री गोयल ने व्यापार और निवेश बढ़ाने, भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को जल्द पूरा करने तथा विमान निर्माण, यूपीआई के एकीकरण और संयुक्त नवाचार के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। कृतज्ञ देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर विजय घाट स्थित समाधि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और एल मुरुगन सहित कई केंद्रीय मंत्रियों ने आज नई दिल्ली स्थित संविधान सदन में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन, कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कई सांसद, संसद के वरिष्ठ अधिकारी तथा विद्यार्थियों ने भी दोनों महान नेताओं को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक शांति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर से की गई सराहना से प्रत्येक भारतीय को अपार गर्व महसूस होता है। श्री शाह ने कहा कि महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर आया पुतिन का ये बयान दर्शाता है कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक शांति के लिए एक विश्वसनीय आवाज बनकर उभरा है। जापान एशियाई खेलों में आज भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहाइन ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक अपने नाम किया। लवलीना ने चीन की बाओ जी को हराकर भारत के लिए महिला मुक्केबाजी में 12 साल बाद स्वर्ण पदक जीता। ये एशियाई खेलों में महिला मुक्केबाजी में भारत का दूसरा स्वर्ण पदक है। इससे पहले मैरीकॉम ने 2014 में स्वर्ण पदक जीता था। भारतीय महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने 10 बार के ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। भारत के नित्रा कुमानन ने एशियाई खेलों में महिला डिंगी नौकायन स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। पहलवान सुजीत कलकल ने ओलंपिक चैंपियन को हराकर एशियाई खेलों

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहे हैं?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है दोपहर के 1:11 और ये हुए पूरे 28 सेकंड, और ये समय है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। और आज के इस फिल्म का जो जिक्र हम आपके साथ करेंगे उसका नाम मैं आपके साथ जरूर साझा करूंगी, लेकिन हाँ पहले ये बता दूं कि आपके साथ आज इस सफर में रहूंगी मैं, आपकी साथ आपकी रेडियो हम सफर सोनाली। कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार। तो आज की जो फिल्म है वो 1981 में बनी एक हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे तीनू आनंद ने लिखा और निर्देशित किया है, और इसके जो निर्माता है वो इकबाल सिंह है। अब देखिए ये फिल्म बनी है 1981 में। अब वो दौर किसका था? वो दौर था एंग्री यंग मैन का। तो आप समझ गए, इतना क्लू तो मैंने आपको दे दिया, लेकिन हाँ फिल्म कौन सी है ये आप मुझे बताएंगे। तो अब मैं आपको ये पहला गाना आपके सुपुर्द करती हूँ, गाना सुनिए और फिर मुझे बताइए कहाँ बताएंगे। जी हाँ, ipradiodelhi@gmail.com इस पे आप हमें बताएंगे हमारी फिल्म कौन सी है और इस फिल्म से जुड़े आपके कौन सी यादें हैं, कौन सी गाना आपको इस फिल्म का पसंद है, कौन हीरो हीरोइन आपको इसमें नजर आते हैं, जरा बताइए। तो बस आइए सुनते हैं ये पहला गाना।

तो इधर हमने गाना चलाया और उधर हमारे इतने जानकार दोस्तों की मेल्स की बाढ़ आ गई. मतलब इस बाढ़ की तो खैर हमें हमेशा प्रतीक्षा रहती है. अब लोग इतने प्यार से, इतने अपनेपन से और इतनी बाखुशी हमें अपने साथ अपनी बातें साझा करते हैं ना कि सच में कार्यक्रम करने का आनंद आप लोग दो गुना कर देते हैं. तो बस आपने बिल्कुल सही पहचाना, हम बात कर रहे हैं फिल्म कालिया की. जी हाँ, जिसमें है अमिताभ बच्चन मुख्य भूमिका में. और वैसे एंग्री यंग मैन बोलने से तो आप समझ ही गए थे ना कि मैं किसकी बात कर रही हूँ. साथ में कौन थी? जी हाँ, परवीन बाबी, आशा पारेख, कादर खान, प्राण, अमजद खान, की एन सिंह और जगदीप, है ना. और संगीत, संगीत दिया है राहुल देव बर्मन ने और गीत किसने लिखे थे? जी हाँ, मजरूह सुल्तानपुरी ने. तो ये ना जो फिल्म है, ये फिल्म एक गुस्से वाले नौजवान युग की क्लासिक फिल्म थी, है ना. यह फिल्म अपनी क्लासिक जोशीले गीत, हमारा जो पहला गीत था, उसके लिए बहुत ज्यादा याद की जाती है. मतलब ये गाना, ये म्यूजिक चला और हमको पता है कि हम कालिया की बात कर रहे हैं. और अच्छा, कालिया के साथ में आपको याद है बैकग्राउंड में कालिया कालिया कालिया ऐसा लगातार चलता था जैसे ही अमिताभ बच्चन बाहर आते थे तो. और ये ना आज भी हर जगह, हर जैसे कोई भी पार्टी हो जहाँ पे डांसिंग नंबर कोई चाहिए हो तो ये जहाँ तेरी ये नजर है जरूर बजता है. और ना इसे उस दशक के

सबसे प्रतिष्ठित गीतों में से ना एक माना जाता था। खैर, ये तो हुई हमारी बातें इस बारे में, कालिया फिल्म के बारे में। अब मैं आपकी जरा मेल साहब के बारे में बता दूं कि कौन कौन जुड़ा है हमारे साथ। देखिए, ये हमारे साथ है हीरामणि वर्मा जी, दतरेंगी भाटापारा से लिख रहे हैं एक ही फिल्म में। आज हम कालिया से जुड़ी बातें करेंगे, बिल्कुल उसी की बातें करेंगे। फिर है छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा। उन्हें प्रस्तुति अच्छी लगी, पहला गीत वो सुन रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर ये हैं हरजिंदर छिंदा जी हैं, गांव नथाना पंजाब से, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता के साथ। ये कह रहे खुश रहो, खुशियां बांटो, बिल्कुल। फिर गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन से हैं और आप में गांधी जयंती और लाल बहादुर जी की जयंती की शुभकामनाएं दे रहे हैं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धर्मेंद्र छिपा जी, देखिए आज आपका वो चिर परिचित जो अंदाज है वो कहाँ गायब हो गया, कहाँ है जानकारी। खैर, जो भी है वो यही है कि एक ही फिल्म है आज की कालिया, और ये आप भोपालगढ़ राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हैं। उनके साथ हैं कपिल छिपा, ईशान छिपा और पूजा परिहार। फिर ये हैं वडिंग खेड़ा पंजाब से, मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा और सुदर्शन मुखी जी, अनिता मुखिया और सिमरन मुखी के साथ जुड़े हैं शांतिनगर से और बता रहे हैं कालिया फिल्म में क्या बात है। देखिए, अब लोग इतने प्यार से तो हमारी पहेलियां बुझ गए, तो अब मैं आपको इस फिल्म का दूसरा गाना सुनाती हूँ जो मोहम्मद रफी की आवाज में है। और बस आप इस गाने को सुनिए और हम फिर इस फिल्म के बारे में आगे बातें करेंगे।

जी हाँ, मोहम्मद रफी की आवाज से फिल्म कालिया का आप ये गाना सुन रहे थे। अब अगर हम फिल्म की कहानी की बात करते हैं ना दोस्तों, तो फिल्म की शुरुआत कल्लू से होती है। कल्लू एक सीधा साधा अल्हड़ और थोड़ा बेफिक्र नौजवान है जो अपने बड़े भाई शामू और भाभी शांति के साथ रहता है। शांति की भूमिका आशा पारेख ने निभाई थी और शामू का किरदार कादर खान ने। कहानी ना तब करवट लेती है जब शामू जिस मिल में काम करता है वहां एक हादसे में उसके दोनों हाथ चले जाते हैं, नौकरी छूट जाती है और इलाज के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। कल्लू अपने भाई के मालिक शाहनी सेठ से मदद मांगता है लेकिन शाहनी सेठ पैसे देने से साफ इनकार कर देता है। मजबूरी में कल्लू उसके पैसे चुराने की कोशिश करता है लेकिन पकड़ा जाता है और जेल पहुंच जाता है। यहीं से एक मासूम कल्लू के भीतर का कालिया जन्म लेता है। जेल में उसका सामना अपराध की दुनिया से होता है। वहां वह धीरे धीरे बदलता है और जेल से निकलने के बाद शानी सेठ से बदला लेने की ठान लेता है। लेकिन कहानी सिर्फ बदले की नहीं है दोस्तों, आगे चलकर ना शानी सेठ के पुराने अपराध और शालिनी के अतीत की परतें खुलती हैं। शालिनी कौन? जी हाँ, हमारी हीरोइन जो है परवीन बाबी। और यही प्राणी यहाँ पर जो माफ कीजिएगा जो प्राण है वो जेलर की भूमिका में नजर आते हैं। उनका नाम है रघुवीर सिंह। तो यानी जो कालिया फिल्म है एक साधारण आदमी की परिस्थितियों से टूटकर बदल जाने की कहानी है जिसमें परिवार, अन्याय, अपराध, बदला और इंसाफ सब एक साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा, एक चीज अब मुझे आप ये बताइएगा कि इस फिल्म में ना एक ऐसी महिला किरदार है जिनका जन्मदिन भी है और उनके ऊपर ना अगला कार्यक्रम हम उन्हीं पर करने वाले हैं, एक ही कलाकार। तो जरा मुझे बताइए मैं किन की बात कर रही हूँ। तब तक आप इस गाने को सुनिए।

आशा भोसले की आवाज में फिल्म कालिया का आप एक बहुत प्यारा सा गाना सुन रहे थे। और देखिए, हमने पूछा और वहां पर आपके जवाब न आए, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल आ गए ना आपके जवाब। देखिए, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अच्छा ये तो इन्होंने सिर्फ हमें यहाँ पर जुड़े हैं, बताया है कालिया के बारे में, ये लिख रहे हैं नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से, पीएस नाहवकर, निर्मला नाहवकर, विशाल नाहवकर, सोपान तावड़े, और फिर ये है खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा नीटो, लक्ष्मी मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद्र मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू भाविक सिक्का, और शुक्रिया आपका अच्छा लग रहा है, ये हमें भी जानकर अच्छा लगता है। देखिए सही जवाब किसने दिया कि आज किसका जन्मदिन है, मैंने आपसे पूछा था, जो इस फिल्म में भी है। बिल्कुल, ये देखिए भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र जी ने हमें बता दिया है कि आज आशा पारेख का जन्मदिन है। और आपको पता है बहुत अलग बात है, बहुत रोचक सी बात है कि इस फिल्म में अमिताभ के साथ हमें आशा पारेख नजर आती है, और ये इन दोनों की एकमात्र फिल्म है जिसमें ये दोनों साथ नजर आते हैं, लेकिन ये इसमें उनकी ना नायिका है नहीं है, जबकि वो उनके बड़े भाई जो कादर खान है उनकी पत्नी की भूमिका में इस फिल्म में नजर आती है। और इस फिल्म में एक और बहुत प्यारी जोड़ी है दोनों दोस्तों की। अब वो देखिए निजी लाइफ में वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, और इस फिल्म में वो एक ऐसे किरदार में उनके वो दोस्त नजर आते हैं जिनसे कालिया बाद में बहुत बदला लेता है। जी हाँ, मैं शानी सेठ की बात कर रही हूँ। शानी सेठ का किरदार निभाया था कादर खान ने, सॉरी माफ कीजिएगा, अमजद खान ने, और अमजद खान बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं अमिताभ बच्चन के। तो अब देखिए हमारे साथ कौन है, ये स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह, और फिर हमारे साथ है भूषण खेड़ा जी, फजिलका पंजाब खेड़ा से, इनके साथ इनका पूरा परिवार है जिसमें है विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, शालिनी खेड़ा और तिवानशी खेड़ा, भागवानी खेड़ा, आरबी खेड़ा, जीवन सिंह, बुक समिस्त खेड़ा परिवार, और

माफ कीजिएगा, ये आपने जो फरमाइश की है फरमाइशी फिल्मों का कार्यक्रम नहीं है, माफी चाहूंगी आपसे। तो संदीप मक्कड़ जी हमारे साथ हैं, भरत मक्कड़, कमल शाहनी पिंगा वाला चौक गोरैया जालंधर से हैं, बसंत कुमार सिंह हमारे साथ हैं, सिन्हा जी हमारे साथ हैं, ये हमारे साथ इनके साथ है रेखा देवी शॉ, अजय कुमार, रिम्मी, तनुश्री गुप्ता और भी इनके परिवार के सदस्य हैं। फिर हमारे साथ यहाँ पर है धर्मेंद्र शिपा जी का नाम ले चुकी हूँ मैं, और ये हैं फारूक अली खान साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुदर्शन मुखी जी का मेल ले चुकी हूँ, और शुक्रिया आपको अच्छा लग रहा है इस जानकर, बहुत अच्छा लगा, कार्यक्रम अच्छा लग रहा है। फिर यही बात हमारे संग नीतू मल्होत्रा जी का परिवार भी कह रहा है, आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए इस फिल्म का एक और गाना मैं आपके साथ साझा करूंगी, उसके पहले आपको बस इतना बता दूं कि ये जो फिल्म है तीनू आनंद का निर्देशन था, आर डी बर्मन का म्यूजिक था, और जो इस फिल्म को सबसे ज्यादा खास बनाता है वो है कि कालिया से कल्लू से कालिया बनने की कहानी है, और ये बहुत खूबसूरत तरीके से इस कहानी को गुथा गया है और एक बहुत अच्छा संदेश भी देती है ये समाज को। तो हम आपको इस फिल्म का एक और गाना सुनाते हैं, इस फिल्म में गाने ज्यादा नहीं थे लेकिन जो भी थे बहुत ज्यादा कहानी के संग न्याय करने वाले गाने थे। तो आइए सुनते हैं आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में फिल्म का ये एक और गाना।

दोस्तों आप सुन रहे थे आज एक ही फिल्म्स में फिल्म कालिया के बारे में, और ये सफर आपने तय किया आपकी रेडियो हम सफर सोनाली के साथ। तो आपको इस गीत के साथ छोड़े जा रही हूँ, फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी दोपहर, जी हाँ 2:30 बजे, लेकर के कार्यक्रम एक ही कलाकार।

0: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे पंजाबी में समाचार।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन दे नाल मैं यादविंदर सिंह। पहला सुनो बुलेटिन दियां खास खबरां।

0: दुबई के पायलट कप्तान सुमित मझार से बातचीत की। उन्होंने उनकी बहादुरी की तारीफ की और जल्द सेहतयाबी की दुआ की। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने G20 की तिजारत से मुतालिक वजीरों की मीटिंग से अलग फ्रांस, कनाडा, सऊदी अरब और जनूबी कोरिया के अपने हमनसबों से दोतरफा मीटिंग्स की, जिसका मकसद दोतरफा तिजारती ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाना था। मुल्क ने बाबाए कौम महात्मा गांधी और साबिक वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री को आज उनके यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। भारत के महकमे मौसमियात ने अरुणाचल प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। उसने कहा है कि शिमाल मगरबी भारत में जुनूब मगरबी मानसून खत्म होने के कवी इम्कान हैं। और एशियन गेम्स में लवलीना बोरगोहाई ने खवातीन के मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम जुमरे में सोने का तमगा जीता है। अब भारत के पास सोने के 12 तमगों समेत कुल तमगों की तादाद 71 हो गई है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय पायलट कैप्टन सुमित मझार से बातचीत की, जिन्होंने न सिर्फ अपने मुआविन पायलट के हमले से खुद को बचाया बल्कि 180 लोगों की जान भी बचाई। ये वाकया दुबई से तेल अवीव जाने वाली फ्लाई दुबई की परवाज में पेश आया। कैप्टन मझार ने इस वाकये की तफसील वजीर आजम नरेंद्र मोदी को बताई और इस बारे में बताया कि किस तरह उन्हें हिम्मत मिली। वजीर आजम ने उनकी दिलेरी की तारीफ की, उनकी जल्द सेहतयाबी की दुआ की।
1: आपकी हिम्मत ने, आपके धैर्य ने और आपकी सूझबूझ ने फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में इतने निर्णय कर लिए आपने और इतने लोगों की जान बचाई और आज पूरा देश गर्व से कह सकता है कि हम हिंदुस्तानी जान लेने वाले लोग नहीं है, जान बचाने वाले लोग। और आपने अपने शरीर पे इतना बड़ा घाव हुआ, आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूं। मेरे साथ मैं आपसे सुनना चाहूंगा।
2: सर, मेरे लिए मैं सर से भी बोल रहा था, आप मेरे सबसे बड़े
0: दुबई से तेल अवीव जाने वाली फ्लाई दुबई की परवाज में रोनुमा इस वाके में कैप्टन सुमित मझार पर हमला करने वाले मुआविन पायलट को अबू जबी मुंतकिल कर दिया गया है। सऊदी प्रेस एजेंसी SPA ने सऊदी अरब की दाखिली उमूर की वजारत के एक ओहदेदार के हवाले से जानकारी दी है कि तिब्बी मंजूरी हासिल करने के बाद दोनों पायलट अबू जबी के लिए रवाना हो गए। अबू जबी में भारतीय सिफारतखाने ने कल जानकारी दी कि कैप्टन मझार को मुत्तहिदा अरब अमारात लाया गया और उनकी हालत में अब बेहतरी आ रही है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक फ्लाई दुबई की परवाज बुध के रोज सुबह 9:45 पर तबूक में वाके शाह सुल्तान बिन अल अजीज बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे पर बहिफाजत उतरी थी। इस परवाज में 174 मुसाफिर और अमले के 8 अरकान सवार थे। इन तमाम अफराद को जरूरी लॉजिस्टिकल और तिब्बी मदद फराहम की गई। शाम 5:40 पर मुसाफिरों ने फ्लाई दुबई के एक दूसरे तैयारे में सफर किया, जबकि जहाज का अमला एक दूसरी परवाज से वापस चला गया। जुमेरात के रोज दोनों पायलट UAE की एक सिक्योरिटी टीम के हमरा सऊदी अरब से अबू जबी के लिए रवाना हुए। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक UAE की एक सिक्योरिटी टीम के तालमेल से सऊदी हुकाम की तरफ से की गई इब्तदाई तहकीकात में इंकशाफ हुआ कि जहाज के मुआविन पायलट और कैप्टन के दरमियान झगड़ा हुआ, जिसके सबब दोनों अफराद जख्मी हो गए। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने अमरीका के मिलवाकी में G20 वज़राए तिजारत की मीटिंग के मौके पर फ्रांस, कनाडा, सऊदी अरब और जनूबी कोरिया के अपने हमनसब वज़रा के साथ दोतरफा मीटिंग्स की। इन मीटिंगों में शामिल मुल्कों ने दोतरफा तिजारती ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने पर तवज्जो मरकूज की। फ्रांस के गैर मुल्की तिजारत और इक्तसादी उमूर के वजीर के साथ मीटिंग में जनाब गोयल ने तिजारत और सरमायाकारी में इजाफा करने, भारत यूरोपीय यूनियन आजाद तिजारती मुआहदे पर तेजी से अमल दरामद और एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग UPI के इंजमाम और मुश्तरका इख्तराई इकदाम समेत मुख्तलिफ शोबों में दोतरफा तआवुन में मजीद इजाफा करने के बारे में तबादले ख्याल किया। जनाब गोयल ने कनाडा के बैन अल-अक़वामी तजारत से मुतालिक वजीर मनिंदर सिंधु के साथ एक मीटिंग की, जिसमें भारत कनाडा जामे इक्तसादी शराकतदारी से मुतालिक मुआहदे सीपा पर जारी मुजाकरात का जायजा लिया। इस मुआहदे का आगाज मार्च के महीने में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और कनाडा के

0: के पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार से बात की। उन्होंने कैप्टन की बहादुरी की सराहना की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक से अलग व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए फ्रांस, कनाडा, सऊदी अरब और दक्षिण कोरिया के समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। कृतज्ञ देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। मौसम विज्ञान ने आज अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। दक्षिण पश्चिम मानसून के कमजोर पड़ने की संभावना। एशियाई खेलों में लवलीना बोरगोहाई ने महिला मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। 12 स्वर्ण सहित पदकों की संख्या बढ़कर 72 हुई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बहादुर भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार से बात की। उन्होंने दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट में अपने सह पायलट के हमले को नाकाम करते हुए 180 लोगों की जान बचाई थी। कैप्टन मच्छार ने प्रधानमंत्री को अपने अनुभव के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि उस घटना के दौरान उन्हें किस बात से साहस मिला। प्रधानमंत्री ने उनकी बहादुरी की सराहना की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने कहा कि पूरा देश उनकी कुशलता के लिए प्रार्थना कर रहा है। प्रधानमंत्री ने स्मिथ के जज्बे की सराहना करते हुए कहा कि देश गर्व से कह सकता है कि भारतीय वे नहीं हैं जो जान लेते हैं, बल्कि वे हैं जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार रहते हैं।
1: आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ा है और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूँ।
0: बातचीत के दौरान भावुक कैप्टन स्मिथ ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी उनके सबसे बड़े आदर्श हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री का फोन आने पर अपनी खुशी और गर्व का अनुभव किया।
2: उस मोमेंट में सर, मैं अपनी लाइफ के लिए लड़ रहा था। मैं एक ऐसा मोमेंट था जब मेरे को रियलाइज हुआ कि अगर मैंने कुछ नहीं किया, जब मैं नीचे गिरा हुआ था तब मुझे ऐसा सोचा था कि एकरा में नीचे जाना है और बाकी सब की भी उतनी ही उसमें रोल था। बट जान के मैं एक सिर्फ पॉजिटिविटी में, मैं जब भी इम्पोर्टेंट होता है मुझे एक ही चीज आती है, मैं सिर्फ हनुमान चालीसा बोलता हूँ। उस टाइम पे भी मैं सिर्फ हनुमान चालीसा ही बोल रहा था।
0: वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक से अलग फ्रांस, कनाडा, सऊदी अरब और दक्षिण कोरिया के व्यापार मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में संबंधित देशों के साथ व्यापारिक संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। एक रिपोर्ट।
3: फ्रांस के विदेश, व्यापार और आर्थिक मामलों के मंत्री निकोलस फोर्सिये के साथ बैठक में श्री गोयल ने व्यापार और निवेश बढ़ाने, भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को जल्द पूरा करने तथा विमान निर्माण, यूपीआई के एकीकरण और संयुक्त नवाचार के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ बैठक में दोनों देशों ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर जारी वार्ता की समीक्षा की और इसे जल्द आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने मार्च में इस समझौते की शुरुआत की थी। इसका लक्ष्य 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को $50 अरब तक पहुंचाना है। सऊदी अरब के वाणिज्य मंत्री माजिद बिन अब्दुल्ला अल कसाबी के साथ बैठक में श्री गोयल ने भारत और खाड़ी सहयोग परिषद के बीच मुक्त व्यापार समझौते के लिए जारी बातचीत की प्रगति पर चर्चा की। समाचार कक्ष से अनुपम मिश्र।
0: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए श्री मोदी के विचार बहुत अच्छे हैं। एक सार्वजनिक मंच पर राष्ट्रपति पुतिन ने भारत के कूटनीतिक प्रयासों के लिए आभार व्यक्त किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक शांति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर से की गई सराहना से प्रत्येक भारतीय को अपार गर्व महसूस होता है। श्री शाह ने कहा कि महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर आया पुतिन का ये बयान दर्शाता है कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक शांति के लिए एक विश्वसनीय आवाज बनकर उभरा है।

ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट एट AIR न्यूज हिंदी और पब्लिक पर एट AIR न्यूज अलर्ट को फॉलो करें। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में जारी युद्ध और संघर्ष के माहौल में गांधी जी का शांति और अहिंसा का संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सत्य और अहिंसा में महात्मा गांधी का अटूट विश्वास, न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और हर व्यक्ति की गरिमा में उनका गहरा विश्वास मानवता को प्रेरित करता रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी युगों में बापू के आदर्श मानवता के लिए पथ प्रदर्शक बने रहेंगे। महात्मा गांधी की जयंती आज वैश्विक स्तर पर भी मनाई जा रही है। कई देशों में भारतीय राजनयिक मिशनों ने इस अवसर पर गांधी जी की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की और सत्य, अहिंसा तथा शांति के उनके संदेश को याद किया। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 122वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में हुआ था। इसे अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने विजय घाट स्थित समाधि पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और एल मुरुगन सहित कई अन्य मंत्रियों, सांसदों तथा विद्यार्थियों ने आज नई दिल्ली स्थित संविधान सदन में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन, कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी दोनों महान नेताओं को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। गांधी जयंती के अवसर पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज गोयल ने आज नई दिल्ली में खादी महोत्सव का उद्घाटन किया। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12-13 वर्षों में खादी ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं।
1: खादी युवाओं के लिए फैशन स्टेटमेंट बन गया है। आज खादी के देश भर में फैशन शो हो रहे हैं। युवा मोदी जैकेट पहन रहा है, मोदी कुर्ता पहन रहा है, युवा हमारी खादी की कॉस्मेटिक खरीद रहा है, खादी के ग्रामोद्योग उत्पाद खरीद रहा है। खादी की कुर्ती हो, जैकेट हो, वो उत्पाद जो कभी गांव गलियों से बाहर नहीं निकल पाते थे, आज वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खादी अपना जलवा पूरे देश में बिखेर रही है। पिछले 12-13 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खादी कई गुना बढ़ी है।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने आज थिरु के कामराज की पुण्यतिथि पर उपराष्ट्रपति भवन में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधा कृष्णन ने कहा कि थिरु के कामराज ने अपना जीवन राष्ट्र सेवा और आम जनता के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको अटल सुरंग के माध्यम से इस दृष्टि को साकार रूप देने का एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं।
2: विश्व प्रसिद्ध रोहतांग दर्रे के नीचे कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में निर्मित अटल टनल आधुनिक इंजीनियरिंग और सीमा सड़क संगठन की तकनीकी क्षमता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। देश की महत्वपूर्ण आधारभूत और सामरिक परियोजनाओं में शामिल

अटल टनल जहां प्रदेश के कुल्लू व जनजातीय जिला लाहौल स्पीति को वर्ष भर हर मौसम में जोड़े रखती है, वहीं आज हिमाचल प्रदेश के विकास, पर्यटन और सामरिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण पहचान बन चुकी है। समुद्र तल से लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित 9 किलोमीटर से अधिक लंबी अटल टनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 अक्टूबर 2020 को किया था। इस पर करीब 3,200 करोड़ रुपए की लागत आई है। अटल

0: व्यक्त किया है।
1: अटल टनल जो खुलने से पहले हमें रोहतांग टोप होके कुल्लू मनाली जाना पड़ता था, जिससे हमें काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। जैसे ही टनल खुला उसके बाद स्वास्थ्य सुविधाएं भी हम इजिली, इमरजेंसी कभी भी कुछ भी रहता है, हम इमीडिएट एक दो घंटे के अंदर कुल्लू पहुंच जाते हैं। हमारे जो फसलें हैं, जो किसान भगवान भाई है, उन सभी के लिए भी बहुत ज्यादा आसानी हो गई है। हम केंद्र सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
0: अटल टनल रोहतांग के बनने से जहां हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिला है, वहीं इसके माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्रों खासतौर पर लेह लद्दाख के लिए वर्ष भर आवागमन और अधिक सुगम हो गया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की 138वीं कड़ी में पंजाब के हॉकी ओलंपियन राजेंद्र सिंह सीनियर के प्रयासों की सराहना की थी। एक रिपोर्ट।
3: ओलंपियन राजेंद्र सिंह 1980 ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली इंडियन हॉकी टीम का हिस्सा थे। उन्होंने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच 1982 चैंपियंस ट्रॉफी में खेला था, जिसे इंडिया ने राजेंद्र सिंह द्वारा 3 पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान से जीता था और ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। वह 1990 में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी साई से जुड़े और अपना कोचिंग करियर शुरू किया। उनके समय में सब जूनियर और जूनियर हॉकी टीमों ने कई नेशनल अवार्ड जीते। उन्होंने आकाशवाणी को बताया कि राउंड ग्लास अकादमी पंजाब में 60 हॉकी अकादमियां चला रही है, जिसमें 6 से 8 साल की उम्र के लड़कियों समेत 3,000 खिलाड़ी इस राष्ट्रीय खेल की बारीकियां सीख रहे हैं।
4: मैं आभारी हूं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने मन की बात में मेरा जिक्र किया और मुझे मेरे काम की सराहना की। मैं पिछले 5 वर्षों से राउंड ग्लास स्पोर्ट्स अकादमी के साथ युवाओं को हॉकी को आगे ले जाने के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहा हूं। प्रधानमंत्री जी ये प्रेरणादायी शब्द सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरे जैसे और साथी कोचेस ओलंपियन को भी प्रेरणा दें।
3: उन्होंने भारत के लिए मजबूत हॉकी टीम बनाने के लिए काबिलियत वाले युवाओं को कोचिंग देते रहने का भरोसा दिया। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
2: और अब एशियाई खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
5: जापान एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। आज मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहाइन ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक अपने नाम किया। लवलीना ने चीन की बाउ जी को हराकर भारत के लिए महिला मुक्केबाजी में 12 साल बाद स्वर्ण पदक जीता। ये एशियाई खेलों में महिला मुक्केबाजी में भारत का दूसरा स्वर्ण पदक है। भारतीय महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। हालांकि पुरुष रिकर्व टीम को फाइनल में दक्षिण कोरिया से हारकर रजत पदक से संतोष करना पड़ा। पुरुषों की सेपक टकरा के सेमीफाइनल में भारत को जापान से हारकर कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। भारत पदक तालिका में 72 पदकों के साथ 6 स्थान पर पहुंच गया है। इनमें 12 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने सभी पदक विजेताओं को बधाई दी है।
2: मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों और गुजरात तथा मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए मौसम की परिस्थितियां अनुकूल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्लाई दुबई के पायलट कैप्टन स्मित मच्छार से बात की। उन्होंने कैप्टन की बहादुरी की सराहना की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। कृतज्ञ देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। एशियाई खेलों में लवलीना बोरगोहाइन ने महिला मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: मीडियम वेव 1584 किलोहर्ट्ज़, 684 किलोहर्ट्ज़, FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी करगिल है। सामिन पेश खिदमत है एनसीईआरटी का स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग।

0: से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
1: समय और समझ दोनों एक साथ कभी नहीं आते। जब समय आता है तो समझ नहीं होती और जब समझ आती है तो समय निकल जाता है। इसलिए मनुष्य को सद्विवेक से अपना जीवन जीना चाहिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुविचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से राम कुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी का। लिखते हैं,
1: उमंग कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगा और हम लोग पूरा परिवार एक साथ सुनते हैं। ज्ञानवर्धक रोचक जानकारी हमें सुनने को मिला है। प्रस्तुतकर्ताओं को बधाई।
0: अगला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंत तीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी का। लिखते हैं,
1: जय जोहार बंदगी उमंग टीम को, विमलेश मैडम जी, अजीत साहेब जी, जय हिंद जी। 25 अगस्त को सरितपुर की कहानी सुनाया, हमें बहुत प्रेरणादायक लगा। प्रकृति की रक्षा करने की सीख मिली। विमलेश मैडम जी, अजीत साहेब जी, जय हिंद जी। 28 अगस्त को भी हमने कार्यक्रम सुना, भारत की सबसे पहले महिला पायलट सरला ठकराल जी के बारे में रियल स्टोरी, हमें बहुत प्रेरणादायक लगी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
0: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्र रेखा साहू और शुभम सेजल साहू जी का।
1: इसके साथ साथ ही हमें संदेश प्राप्त हुआ है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का
0: और हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदारे जी का।
1: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा जी लिखते हैं,
0: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी।
1: उमंग कार्यक्रम का हर अंक एक से बढ़कर एक होता है, ये कार्यक्रम हम जरूर सुनते हैं। कार्यक्रम की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। उमंग कार्यक्रम में प्रसारित कार्यक्रम हिमालय कैसे बना, अवसर को पहचानिए और उड़न परी पीटी उषा, ये सभी कार्यक्रम सुने बेहद पसंद आए। उमंग कार्यक्रम में प्रसारित कार्यक्रम प्रथम महिला पायलट सरला ठकराल, अरावली पर्वत की कहानी, सुखो मांझरी गांव की कहानी और अन्य कार्यक्रम सुने वो भी पसंद आए। ये सभी कार्यक्रम शिक्षाप्रद और जानकारी से भरपूर लगे। आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
0: आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, आज 2 अक्टूबर है यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिवस। उमंग कार्यक्रम की ओर से उन्हें शत शत नमन। आइए करते हैं शुरुआत उनके जीवन में घटित एक महत्वपूर्ण घटना से जिसने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया।
1: लेकिन आज की कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक सवाल, क्या कभी किसी के साथ हुआ अपमान उनके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है?
0: श्रोताओ, होता तो ये है कि अपमान तो अक्सर इंसान को तोड़ देता है
1: जी,
0: तो कोई भला उससे ताकत कैसे पा सकता है?
1: यही तो आज की कहानी है जो हम आपके लिए गांधी जयंती के अवसर पर खास तौर से लेकर आए हैं। दिन था 31 मई 1893 और स्थान था दक्षिण अफ्रीका का पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन।
0: एक युवा भारतीय वकील ट्रेन में यात्रा कर रहा था, उसका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी के पास प्रथम श्रेणी का वैध टिकट था, वे अपने स्थान पर बैठे थे और यात्रा कर रहे थे।
1: स्टेशन पर बहुत से यात्री ट्रेन में चढ़े, उनमें एक श्वेत यात्री भी था। उस श्वेत यात्री को एक अश्वेत व्यक्ति को प्रथम क्लास में बैठे देखकर बहुत गुस्सा आया। उसने आपत्ति की कि एक भारतीय प्रथम श्रेणी के डिब्बे में कैसे बैठ सकता है।
0: गांधी जी ने अपना टिकट दिखाया, उनके पास पूरा अधिकार था कि वे प्रथम श्रेणी में यात्रा करें,
1: लेकिन टिकट देखने के बावजूद उन्हें डिब्बा छोड़ने के लिए कहा गया। शोर बढ़ता जा रहा था और बहुत से श्वेत यात्री गांधी जी के वहां रहने के कारण आपत्ति जता रहे थे,
0: लेकिन गांधी जी अपनी बात पर अडिग रहे। उन्होंने अपना अधिकार छोड़ने से विनम्रता पूर्वक साफ इनकार कर दिया
1: जी।
0: उन्हें बलपूर्वक ट्रेन से नीचे उतार दिया गया और बाहर थी कड़ाके की ठंड वाली रात।
1: गांधी जी का सामान भी उनके साथ बाहर था, वे स्टेशन पर अकेले बैठे रहे। जरा सोचिए श्रोता मित्रों, उस समय उनके मन में क्या चल रहा होगा।
0: हम आसानी से कल्पना कर सकते हैं, एक युवा वकील जिसके पास वैध टिकट था, फिर भी केवल नस्लीय भेदभाव के कारण उसे ट्रेन से उतार दिया गया था
1: जी।
0: वह रात उनके लिए अत्यंत पीड़ादायक रही होगी।
1: उस रात उन्होंने अपने जीवन की भावी दिशा पर विचार किया। उस रात गांधी जी के भीतर कोई नया संकल्प जन्म ले रहा था जिसे आज हम सत्य और अहिंसा के रूप में जानते हैं। इसी संकल्प का स्वरूप था सत्याग्रह।
0: सचमुच कितनी अद्भुत बात, एक रेलवे स्टेशन, एक ठंडी रात, एक अपमान और उसी से एक महान संकल्प का पैदा होना।
1: तो अजीत जी, गांधी जयंती के अवसर पर हमारे श्रोताओं के लिए आज की सीख क्या है?
0: विमलेश जी, मुझे लगता है सीख बहुत सरल है और सीख ये है कि जब परिस्थितियां आपको गिराएं तो वहीं

0: पतंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार और गांधी जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं।
3: और अजीत का भी नमस्कार, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाइयां। छत्तीसगढ़ पलारी

0: पड़े मत रहिए,
1: जी
0: उठिए, सोचिए और अपने दुख को एक अच्छे संकल्प में बदल दीजिए।
1: दूसरी सीख हमें ये मिलती है कि किसी के गलत व्यवहार का जवाब हम अपने गलत व्यवहार से न दें।
0: बिल्कुल, यही तो इस घटना की सबसे बड़ी प्रेरणा है।
1: तो श्रोताओ, 31 मई 1893 की वो रात गांधी जी के लिए केवल एक कठिन रात ही नहीं थी,
0: लेकिन वो रात उनके जीवन की दिशा को बदलने वाली रात भी थी।
1: जी हाँ, कभी कभी जीवन की सबसे अंधेरी रात ही हमारे भीतर की एक नई सुबह को जन्म देती है।
0: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की प्रेरणादायक कहानी। तो अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है, महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई सबसे चर्चित और प्रसिद्ध पुस्तक का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई सबसे चर्चित और प्रसिद्ध पुस्तक का नाम बताइए। आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
0: तो अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा आज का पहला कार्यक्रम है यादें बापू गांधी की।
1: इस कार्यक्रम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण प्रेरक प्रसंगों के बारे में रोचक ढंग से बताया गया है और उनके जीवन के दर्शन की भी सरल वाक्यों के द्वारा जानकारी दी गई है।
2: शहर को ऐसा साफ सुथरा रखा कि दुनिया में सब लोग आकर देखें कि अगर कोई स्वच्छ शहर देखना चाहिए, सफाई, लोगों का मकान साफ, लोगों का पैखाना साफ, लोगों का बैठने का सोने का सब साफ, गलियां साफ और ऐसे ही लोगों का दिल भी साफ।
3: आइए सुने उस्ताद अमजद अली खां को।

तो यानी ये एक आत्मा है शब्दों की। हाँ बच्चों, ये आपने सुना, इसको कहा जाता है रामधुन। तो हमारे जो राष्ट्रपिता थे, कौन थे? महात्मा गांधी जी। तो उनके साथ इसका बड़ा भारी एसोसिएशन है और उनको बहुत पसंद था ये। मेरे ख्याल से सबसे मशहूर गाना या भजन या सॉन्ग, इससे मशहूर कोई चीज नहीं हिंदुस्तान में। अब ये इंटरनेशनल ख्याति इसको प्राप्त हो चुकी है कि अब जो हमारे बाहर के बीट ग्रुप जो भी हैं, पॉप सिंगर्स जो भी हैं, वो भी इसको गाते हैं, लेकिन उनका प्रोनंसिएशन बदल जाता है। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि वो नकल करते हैं।

यादें बापू गांधी की। अब प्रस्तुत है एक झलक हामिदुल्ला अफसर के जीवन के कुछ यादगार पलों की, वो पल जो उन्होंने गांधी जी के साथ बिताए।

0: सन 1921 का जिक्र है। मैं LLB का तालिबे इल्म था। गांधी जी मेरठ में तशरीफ लाए। मुझे उनसे मिलने का बड़ा शौक था। आखिर मेरी आरजू बर आई और मुझे उनकी खिदमत में हाजिर होने का मौका मिल गया।
1: नमस्ते बापू।
2: नमस्ते
3: प्रणाम।
4: नमस्ते।
3: नमस्ते
2: प्रणाम।
5: हमारी खुश नसीबी आप मेरठ आए।
0: बातें करते करते गांधी जी ने मेरी अचकन की तरफ इशारा करके फरमाया,
6: ये अचकन देशी क्यों नहीं पहनते?
0: मैंने अर्ज किया, 3-4 देसी चीजें मुस्तकिल तौर पर इस्तेमाल करता हूँ। देसी आम खाता हूँ, देसी पान खाता हूँ, देसी आलू खाता हूँ और देसी शक्कर इस्तेमाल करता हूँ, क्या ये काफी नहीं? गांधी जी ने बड़े जोर से कहकहा लगाया और फरमाया,
6: अच्छा अच्छा, तब तो आपके लिए देशी कपड़ा पहनना और भी आसान है, एक ही देशी चीज का तो इजाफा होगा।
0: उसके बाद मुतअद्दिद बार कई कई बरस के वक्फे से मुझे गांधी जी की खिदमत में हाजिर होने का मौका मिला, मगर हैरत है कि हर मर्तबा मुझे देखते ही उन्हें मेरी 4 देसी चीजों में अपनी उसी 5वीं चीज का ख्याल आ जाता। ।1945 का जमाना था। गांधी जी मसूरी पहाड़ पर बिड़ला हाउस में ठहरे हुए थे। मैं भी उसी साल मसूरी गया हुआ था और गांधी जी की खिदमत में कभी कभी हाजिर होता रहता था। मसूरी में उन दिनों बहुत से लद्दाखी मजदूर आए हुए थे। बेचारे बहुत गरीब थे। एक फटे हुए जांघिए और पेवंद लगे हुए शलूके के सिवा उनके बदन पर कुछ ना होता था। रात के वक्त टाट के बोरे में लिपट जाते थे। यही टाट का बोरा उनका लिहाफ था और यही उनका गत्ता। उन्हें इस हालत में देखकर गांधी जी को बड़ा तरस आया और उन्होंने उनकी इमदाद के लिए मुख्तलिफ तजवीजों पर गौर करना शुरू किया। इस सिलसिले में गांधी जी ने एक ऐसी इमारत की तामीर की तहरीक भी शुरू की जहां पर ये बेचारे पहाड़ी मजदूर ठहर सकें और उनसे उसका किराया ना लिया जाए। शायद उस इमारत के लिए 1.5 लाख रुपए के वादे भी हो गए थे। एक दिन ये जिक्र चला कि उस इमारत का नाम क्या रखा जाए।
6: देखो हामिद, जब ये इमारत बन जाएगी तब इन बेचारे गरीब पहाड़ी मजदूरों के यहाँ ठहरने की जगह तो हो ही जाएगी।
5: जी बापू।
6: देखो, इस बात का पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए कि उनसे किराया न लिया जाए।
1: जी बापू, हम ध्यान रखेंगे।
6: अच्छा, अब सोचो इस इमारत का नाम क्या रखा जाए।
7: कुछ खास होना चाहिए,
5: मजदूर रहेंगे उसमें,
1: मेहनत करने वाले।
7: बापू, धर्म का काम है ये तो।
5: भाई क्यों ना इसका नाम धर्मशाला रखा जाए।
6: धर्मशाला? हाँ ठीक है, धर्मशाला।
0: आखिर फैसला हुआ कि उसे धर्मशाला कहा जाए। मैंने अर्ज किया, अब उस इमारत का नाम आप गरीब खाना क्यों नहीं रखते? एक और साहब वहां बैठे हुए थे बोले,
7: भाई गरीब खाना तो अपने घर को ही कहते हैं।
0: मैंने कहा,

0: जी हाँ, कहते तो हैं, लेकिन अपने घर को गरीब खाना महज इनकिसारी की वजह से कहते हैं। खुद को गरीब फर्ज कर लेते हैं और अपने घर को गरीब खाना करार देते हैं, वरना गरीब खाने के मानी गरीब के घर के सिवा और कुछ नहीं।
1: बहुत खूब, मुझे तो ये नाम पसंद आया।
2: हाँ, तो ये नाम ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, ये ठीक। बिल्कुल,
0: गांधी जी को ये नाम पसंद आया। एक दफा एक नौजवान आश्रम में रहने के लिए आए। ये बीए पास कर चुके थे। दस्तूर के मुताबिक गांधी जी ने उनके सुपुर्द ये काम किया कि 3 महीने तक वो आश्रम में रोजाना झाड़ू दिया करें।

0: गांधी जी झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। आश्रम में नेक चलने और सच्चाई के कवायद बड़े सख्त थे। उस नौजवान को बच्चों से बड़ा उंस था और बच्चे भी उससे बहुत मानूस थे। एक दिन आश्रम की एक 8 साला लड़की उस नौजवान से एक लीमू छीनना चाहती थी।
1: ये लो, अरे लो,
2: मुझे भी लीमू दो ना,
1: ये लो
2: चाहिए।
0: वो उस लड़की के साथ खेलने लगा।
1: ये लो।
0: खेलते खेलते उसे थका दिया, लेकिन लीमू नहीं दिया। लड़की तंग आकर रो पड़ी। असल में ये लीमू आश्रम के एक मरीज के वास्ते था। उस लड़की को कैसे दे दिया जाता। जब लड़की रोने लगी तो उस नौजवान की कुछ समझ में ना आया कि अब क्या करे। आखिर उसे एक तरकीब सूझी।
1: ये मैंने फेंका नदी में और लीमू गया साबरमती में।
2: गया?
1: हाँ, वो गया। अरे रो मत।
2: मैं लीमू को नदी से निकाल लाऊं?
1: अरे नहीं, नहीं।
2: वो किनारे पर ही तो होगा ना।
1: अरे नहीं बेटा, लीमू नदी में डूब गया है, अब तुम उसे निकाल नहीं पाओगी।
2: गया?
1: हाँ, गया लीमू।
0: मगर असल में ऐसा नहीं था। उस नौजवान ने लीमू को अपनी जेब में रख लिया था। बात आई गई हुई। दोनों बातें करते हुए आगे बढ़े। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मरीज के कमरे की तरफ जाते हुए,
1: मेरा रुमाल किस जेब में है?
0: उस नौजवान ने अपनी जेब से रुमाल जो निकाला तो उसके साथ लीमू भी जेब से निकलकर जमीन पर गिर पड़ा।
2: अरे लीमू, ये लीमू तो आपके पास ही है।
1: अरे वो
2: आश्रम में रहकर झूठ बोला आपने।
1: अरे
2: मैं ये बात पापा को जरूर बताऊंगी।
1: अरे मेरी
2: पापू।
1: नहीं बेटा, मेरी बात
2: नहीं,
1: तो सुन।
2: नहीं पापू।
1: नहीं, अरे सुन तो, पापू से मत बोल। अरे
2: पापू।
1: नहीं नहीं, अरे
2: पापू।
1: अरे अरे सुन मेरी, अरे सुन।
0: ये कहकर वो भागी और सीधी गांधी जी की खिदमत में पहुंची और उनसे कह दिया,
2: उन्होंने झूठ बोला, आश्रम में रहकर झूठ बोला।
3: हम मालूम करेंगे कि क्या बात है और उन्होंने क्यों झूठ बोला।
2: ठीक है बापू।
0: शाम को दुआ के बाद गांधी जी ने उस नौजवान को बुलाया और उससे पूछा,
3: अच्छा बताओ क्या बात थी?
1: बापू ये सब बस एक मजाक था।
3: देखो आइंदा से इस बात का ख्याल रखो कि बच्चों से मजाक में भी झूठ न बोलो।
1: जी बापू, मैं समझ गया, मैं ख्याल रखूंगा।
4: कोई आंखों से तो सुनता नहीं है, आंखों से देखता है, कानों से सुनता है, इसलिए आंखों को तो सचमुच

बंद करना चाहिए और कानों को खुले रखना चाहिए। अदब रखकर बेच जाना चाहिए तो बड़ा अच्छा लगता है और ऐसा सुंदर लगता है कि आदमी का जी चाहता है कि जो अपने दिलों की बात है वो सुनाए।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम यादें बापू गांधी की, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम गांधी जी के आश्रम में।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका स्थित आश्रम के बारे में जानकारी दी गई है और बताया गया है कि गांधी जी की दिनचर्या कैसी थी और आश्रम वासियों के साथ उनका कैसा सद्भाव था।
0: साथियों नमस्कार, हम सब गांधी जी के बारे में जानते हैं। गांधी जी को बहुत सारे अलग अलग नामों से पुकारा भी जाता है। कोई उन्हें बापू कहता है, तो कोई महात्मा, तो कोई राष्ट्रपिता। गांधी जी ने देश को आजाद करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई और इसके लिए उन्होंने सत्य और अहिंसा का मार्ग चुना। गांधी जी जब अफ्रीका में थे तो उनके दो आश्रम थे, फीनिक्स आश्रम और टॉल्स्टॉय फार्म, और जब वे भारत आए तो उनका आश्रम बना साबरमती। और हाँ, आपको एक बड़ी दिलचस्प जानकारी भी दे दें, दक्षिण अफ्रीका ने गांधी जी के फीनिक्स आश्रम को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया है और आज गांधी जी का आश्रम टॉल्स्टॉय फार्म भी दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित गांधी स्थलों में से एक है। तो आइए चलते हैं गांधी जी के आश्रम में, और सबसे पहले चलते हैं आश्रम के रसोई घर में।
2: अरे बापू जी के आने का समय आने वाला है। टमाटर काट मिर्ची काट।
3: अरे जल्दी जल्दी सब्जी काटो चंपा, आश्रम में भोजन का समय हो रहा है।
2: अरे जल्दी जल्दी में मैं तो एक बात भूल ही गई।
3: क्या?
2: वो सब्जी मैंने बगैर धोए ही काट दी।
3: अरे चंपा, बापूजी को अगर पता चला कि तुमने बिना धोए सब्जी और फल काट लिए तो फिर बहुत डांट पड़ेगी।
2: ठीक कह रहे हो। अरे हरिया वो देखो, छत पर मकड़ी का जाला भी लगा है। बापूजी के आने का समय हो रहा है और यहाँ पर सफाई भी अभी करनी बाकी है। इससे पहले कि वो आए हम जल्दी जल्दी सफाई कर लेते हैं।
3: ठीक है चंपा, ठीक।
4: बापूजी के आने का समय हो रहा है।
3: मुझे आलू दे दो, मैं जल्दी काट लेता हूँ।
2: अरे ठीक है, मैं ये बाकी जो सब्जियां इनको धो लेती हूँ। प्रणाम बापू।
3: नमस्कार बापू।
4: प्रणाम बापू।
5: प्रणाम प्रणाम। ये क्या कर रहे हो तुम लोग?
3: बाबूजी वो सब्जी काट रहे थे हम लोग।
2: बापू सब्जियां काट रहे थे।
5: अभी अभी मुझे पता चला कि तुमने सब्जियां बिना धोए ही काट दी हैं।
2: वो बापू थोड़ी जल्दी थी और भोजन का भी समय हो रहा है, इसलिए बगैर धोए ही, क्षमा कीजिए।
5: देखो चंपा, ध्यान रखना, सब्जी और फलों को कभी भी बिना धोए नहीं काटना चाहिए और न ही पकाना चाहिए। आगे से ध्यान रखना, समझ गई तुम?
2: जी बापू।
5: अच्छा जाओ।
2: जी।
5: अब तुम लोग जाकर अपना अपना काम करो।
3: जी, जी
2: चलो चलते हैं।
3: जी।
0: तो साथियों, अभी हम थे आश्रम के रसोई घर में। आइए अब सुनते हैं गांधी जी के आश्रम की एक और घटना के बारे में। हुआ यूं कि एक बार आश्रम में ही रहने वाली एक बीमार स्त्री को कुछ केले दिए गए। उसने जब केलों को देखा तो उसे बड़ा गुस्सा आया। उन केलों पर काले काले चकत्ते पड़े हुए थे, तो उस स्त्री ने इसकी शिकायत बापू से की।
4: बापू बापू ये देखिए।
5: अरे आओ आओ बिमला, आओ, कहो कैसे आना हुआ?
4: बापू केलों पर कितने काले काले चकत्ते पड़े हुए हैं, दूसरों को तो ऐसे केले नहीं दिए, ये पक्षपात नहीं तो और क्या है?
5: देखो बिमला, ये जो केलों पर तुम काले काले चकत्ते देख रही हो ना?
4: जी।
5: इसका मतलब ये है कि ये केले बहुत अच्छी तरह से पक चुके हैं।

0: तुम्हें पेट की समस्या है ना?
1: हाँ
0: है ना? हाँ, मैंने ही उन्हें कहा था कि तुम्हें अच्छी तरह से पके हुए केले दें। सोनू ने ऐसे दे दिए। उन्होंने तुमसे कोई पक्षपात नहीं किया विमला।
1: जी बापू।
0: हाँ, समझ गई ना?
1: जी।
0: जाओ, अब तुम शीघ्र ही स्वस्थ हो जाओगी।
1: जी बापू, धन्यवाद।
2: साथियों, यह सुनकर विमला बहुत लज्जित हुई और उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। गांधी जी के आश्रम का यह नियम था कि सब लोग अपने अपने बर्तन खुद साफ करें और न सिर्फ अपने कमरों और झोपड़ियों को ही साफ रखें, लेकिन आसपास भी साफ सफाई का ख्याल रखें। गांधी जी रसोई में काम करने वालों के साथ सब्जियों को खुद काटते थे और बर्तन धोने का भी काम किया करते थे। एक दिन की बात है,
3: अरे बापू, ये बर्तन तो धुल गया है।
0: अरे सुधीर, नहीं, अभी ठीक से कहाँ धुला है, अभी भी इसमें थोड़ी सी कसर बाकी है।
3: हा?
0: अभी तो इसे और चमकाना है।
3: ओ,
0: देखो, इसे और चमकाना हो। ये लो, अब देखो, अब ये अच्छी तरह साफ हो गया है और
3: चमकने भी लगा।
0: हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। ध्यान रखो, जिस भोजन को हम खाते हैं उसे हमेशा साफ बर्तनों में ही खाना चाहिए, समझे सुधीर?
3: हाँ जी बापूजी।
0: हाँ, शाबाश।
2: तो साथियों, हमने आज गांधी जी के आश्रम में जाकर क्या सीखा? तो हमने सीखा कि अपना काम स्वयं करें और किसी दूसरे से न तो उम्मीद रखें और न दूसरे से वह काम करवाएं, और हम सबको अपनी व्यक्तिगत और आसपास की साफ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। तो साथियों, यदि आप गांधी जी के जीवन से संबंधित कोई भी किस्सा जानते हैं तो अपने मित्रों से अवश्य साझा करें। तो श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम गांधी जी के आश्रम में, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
4: जगबंधु,
2: चेतना,
4: अर्शद,
2: सौम्या,
4: प्रसून
2: और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सरयुग यादव के साथ
4: विमलेश को आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।

मीडियम वेव 1171 किलो हर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। 3:05 हुआ चाहते हैं, अब खबरें नशर होंगी।

ये आकाशवाणी है। अब आप मोहम्मद कौनैन हैदर से खबरें सुनिए। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने फ्लाई दुबई के पायलट कैप्टन सुमित मछार से बातचीत की। उन्होंने उनकी बहादुरी की तारीफ की और जल्द सेहतियाबी की दुआ की। तिजारत व सनत के वजीर पीयूष गोयल ने G20 के तिजारत से मुतालिक वजीरों की मीटिंग से अलग फ्रांस, कनाडा, सऊदी अरब और जनूबी कोरिया के अपने हम मनसबों से दो तरफा मीटिंगें की, जिसका मकसद दो तरफा तिजारती ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाना था। मुल्क ने बाबाए ओम महात्मा गांधी और साबिक वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री को आज उनके यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया। भारत के महकमे मौसमियात ने अरुणाचल प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। उसने कहा है कि शुमाल मगरबी भारत में जनूब मगरबी मानसून खत्म होने के कवी इम्कान हैं।

एशियन गेम्स में लवलीना बोरगोहाइन ने खवातीन के मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम जुमरे में सोने का तमगा जीता है। अब भारत के पास सोने के 12 तमगों समेत कुल तमगों की तादाद 71 हो गई है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज बहादुर भारतीय पायलट कैप्टन सुमित मछार से बातचीत की, जिन्होंने न सिर्फ ये कि अपने मुआविन पायलट के हमले से खुद को बचाया बल्कि 180 लोगों की जान भी बचा ली। ये वाकया दुबई से तेल अबीब जाने वाली फ्लाई दुबई की परवाज में पेश आया। कैप्टन मछार ने इस वाकये की तफसील वजीर आजम नरेंद्र मोदी को बताई और इस बारे में बताया कि किस तरह उन्हें हिम्मत मिली। वजीर आजम ने उनकी दलेरी को सताइश करते हुए उनकी जल्द सेहतियाबी की दुआ की। दुबई से तेल अबीब जाने वाली फ्लाई दुबई की परवाज में पेश आने वाले वाकये में कैप्टन सुमित मछार पर हमला करने वाले मुआविन पायलट को अबू जबी मुंतकिल किया गया है। सऊदी प्रेस एजेंसी ने सऊदी अरब की दाखिली उमूर की वजारत के एक अहदेदार के हवाले से जानकारी दी है कि तिब्बी मंजूरी हासिल करने के बाद दोनों पायलट अबू जबी के लिए रवाना हो गए। अबू जबी में भारतीय सिफारतखाने ने कल जानकारी दी कि कैप्टन मछार को मुत्तहिदा अरब इमारात लाया गया और उनकी हालत बेहतर हो रही है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक फ्लाई दुबई की परवाज बुध के रोज सुबह 9:45 पर तबूक में वाकई शाह सुल्तान बिन अब्दुल अजीज बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे पर बहिफाजत उतरी। इस परवाज में 174 मुसाफिर और अमले के 8 अरकान सवार थे। इन तमाम अफराद को जरूरी लॉजिस्टिकल और तिब्बी मदद फराहम की गई। शाम 5:40 पर मुसाफिरों ने फ्लाई दुबई के एक दूसरे तैयारे में सफर किया, जबकि जहाज का अमला एक दूसरी परवाज से दुबई लौट गया। जुमेरात के रोज दोनों पायलट यूएई की एक सिक्योरिटी टीम के हमरा सऊदी अरब से अबू जबी के लिए रवाना हुए। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक यूएई की एक सिक्योरिटी टीम के तालमेल से सऊदी हुक्काम की तरफ से की गई इब्तदाई तहकीकात में इंकशाफ हुआ कि जहाज के मुआविन पायलट और कैप्टन के दरमियान झगड़ा हुआ, जिसके सबब दोनों अफराद जख्मी हो गए। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने अमरीका के मिलवॉकी में G20 वज़राए तिजारत की मीटिंग के मौके पर फ्रांस, कैनेडा, सऊदी अरब और जनूबी कोरिया के अपने हममनसब वुजरा के साथ दो तरफा मीटिंग्स की। इन मीटिंगों में शामिल मुल्कों ने दो तरफा तजारती ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने पर तवज्जो मरकूज की। फ्रांस के गैर मुल्की तजारत और इकतसादी उमूर के वजीर के साथ मीटिंग में जनाब गोयल ने तजारत और सरमाकारी को बढ़ाने, भारत यूरोपीय यूनियन आजादाना तजारती माहदे पर तेजी से अमल दरामद और एयरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग UPI के इंजमाम और मुश्तरक इख्तराई इकदाम समेत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा तआवुन को मजीद बढ़ाने के बारे में तबादले ख्याल किया। जनाब गोयल ने कैनेडा के बैन अल-अक़वामी तजारत से मुतालिक वजीर मनिंदर सिद्धू के साथ एक मीटिंग की, जिसमें भारत कैनेडा जामे इक्तिसादी शराकतदारी से मुतालिक मुआहदे CEPA पर जारी मुजाकरात का जायजा लिया। इस मुआहदे का आगाज मार्च के महीने में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और कैनेडा के वजीर आजम मार्क कार्नी ने किया था, जिसका मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा तिजारत को साल 2030 तक 50 अरब अमरीकी डॉलर तक बढ़ाना है। सऊदी अरब के अपने हममनसब माजिद बिन अब्दुल्ला के साथ मीटिंग में जनाब गोयल ने भारत और खलीज तआवुन काउंसिल GCC के दरमियान आजादाना तिजारती माहदे पर मुजाकरात और दो तरफा तिजारत और सरमाकारी के ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने के इम्कान का जायजा लिया। जनाब गोयल ने जनूबी कोरिया के वजीर तिजारत पार्क जंग संग के साथ भी मीटिंग की, जिसमें भारत कोरिया जामे इकतसादी शराकत दारी से मुतालिक मुआहदे IKCPA की मुजवजा पेशरफ्त, मुतवाजन तिजारती तरक्की और भारत की जरई फार्मास्यूटिकल और मेरीन प्रोडक्ट्स की बेहतर मार्केट रसाई पर बातचीत हुई। आज बाबा कौम महात्मा गांधी को उनके 157वें यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। इस मौके पर पूरे मुल्क और बैरून मुल्क भारतीय मिशनों में भी कई प्रोग्रामों का एहतमाम किया गया है। कौमी राजधानी में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का एहतमाम किया गया। आज ही साबिक वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री के 122वें यौम पैदाइश पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। वो उत्तर प्रदेश में 2 अक्टूबर 1904 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में पैदा हुए थे, जिसे पहले मुगल सराय के नाम से जाना जाता था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, मरकजी वजरा राजनाथ सिंह, JP नड्डा, किरण

0: रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल, जितेंद्र सिंह और एल मुरुगन ने आज नई दिल्ली में संविधान सदन में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को खराज अकीदत पेश किया। बीजेपी सदर नितिन नवीन, कांग्रेस सदर और राज्यसभा में ओपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में ओपोजिशन लीडर राहुल गांधी, अरकाने पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के सीनियर अहदेदार और स्कूली तलबा ने भी खराज अकीदत पेश किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत के महकमे मौसमियात ने आज अरुणाचल प्रदेश में शदीद बारिश की पेशगोई की है। उसने कहा है कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात, मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाकों से अगले 24 घंटों के दौरान जनूब मगरबी मानसून खत्म होने के कवी इम्कान हैं। महकमे ने कहा कि आंध्र प्रदेश, केरला, माहे, जैली हिमालयी, मगरबी बंगाल और सिक्किम में कल तक गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और बिजली चमकने के इम्कान हैं। इसी दौरान अगले 2 दिन तक आंध्र प्रदेश में तेज हवाएं चलने का भी इम्कान है। गांधी जयंती के मौके पर एक जीवीपी मुक्त अभियान का आगाज किया गया है। यह अभियान स्वच्छता ही सेवा प्रोग्राम 2026 के तहत गुरुग्राम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने शुरू किया है। ये मुहिम 11 अक्टूबर तक जारी रहेगी और इस दौरान कचरे के 21 मकामात को जीवीपी से पाक किया जाएगा। जापान के आईची नागोया में जारी एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने आज मुख्तलिफ खेलों में कई तमगे जीतकर अपनी शानदार कारकर्दगी का सिलसिला जारी रखा है। भारत ने खवातीन के मुक्केबाजी में 75 किलोग्राम जुमरे में सोने का तमगा जीता है। भारत की मुक्केबाज लवलीना बोरगोहाइन ने फाइनल में चीन की बाओ जी को 5-0 के मुत्तफिका फैसले से शिकस्त दी। एशियाई खेलों में खवातीन मुक्केबाजी में ये भारत का सोने का दूसरा तमगा है। इससे पहले साल 2014 में मैरीकॉम ने सोने का तमगा जीता था। इससे पहले भारतीय खवातीन की रिकर्व तीरंदाजी टीम ने अपना पहला सोने का तमगा जीतकर तारीख रकम की है। भारतीय टीम ने आज खेले गए सनसनीखेज फाइनल मुकाबले में आलमी चैंपियन जनूब कोरिया को 3-5 शिकस्त दी। भारत ने मर्दों के रिकर्व तीरंदाजी टीम मुकाबले में चांदी का तमगा जीता है। धीरज बोमदेवरा, यश देव, संजय भोगे और नीरज चौहान पर मुश्तमिल भारतीय टीम फाइनल में जनूबी कोरिया से 5-1 से शिकस्त के बाद दूसरे नंबर पर है। भारत के तमगों की कुल तादाद 71 हो गई है। इनमें सोने के 12, चांदी के 25 और कांसे के 34 तमगे शामिल हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हर्षिता तोमर और शीतल वर्मा को एशियन गेम्स 2026 में खवातीन के स्कीफ मुकाबले में कांसे के तमगे जीतने पर मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर मुर्मू ने कहा कि तमगा उनकी कोशिशों और खुद को खेलकूद के लिए वक्फ कर देने का एतराफ है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस अज़्म और इस्तकलाल के साथ हर्षिता तोमर और शीतल वर्मा ने भारत को एक अहम मकाम दिलाया है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने फ्लाई दुबई के पायलट कैप्टन सुमित मछार से बातचीत की। उन्होंने उनकी बहादुरी की तारीफ की और जल्द सेहतियाबी की दुआ की। तिजारत और सनअत के वजीर पीयूष गोयल ने G20 के तिजारत से मुतालिक वजीरों की मीटिंग से अलग फ्रांस, कनाडा, सऊदी अरब और जनूबी कोरिया के अपने हमनसबों से दो तरफा मीटिंग्स की, जिसका मकसद दो तरफा तिजारती ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाना था। और मुल्क ने बाबा कौम महात्मा गांधी और साबिक वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री को आज उनके यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हमें आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर। पेश खिदमत है फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम मेरी पसंद। तमाम सामईन की खिदमत में शमीम उस्मानी का पुरखलूस आदाब। सामईन, जैसे कि आपको मालूम है कि आज 2 अक्टूबर है। आज का दिन बड़ा मखसूस है हिंदुस्तानी कौम की जिंदगी के लिए। आज दो ऐसी शख्सियात का यौम पैदाइश है जिन्होंने हिंदुस्तान को दुनिया के नक्शे पर एक नुमाया तौर पर मकाम अता किया। उनमें एक नाम बाबा कौम महात्मा गांधी का है तो दूसरा नाम ज़रई इनकलाब लाने वाले हिंदुस्तान के मारूफ सियासतदान लाल बहादुर शास्त्री का है। जहां तक महात्मा गांधी की बात है तो महात्मा गांधी ने हिंदुस्तान को एक आज़ाद मुल्क के तौर पर دنیا کے نقشے پر

वो तारीफ कराया। जब आज़ादी मिली तो हालात बहुत नाजुक थे, मुल्क दूसरों के निसार पर था, दूसरे ममालिक के निसार पर था। इसको ज़राअत के ज़रिए खुद कफील बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया लाल बहादुर शास्त्री ने। आज के नगमे कुछ ऐसे ही हैं जिनमें बराह रास्त उन लोगों का जिक्र तो नहीं है, लेकिन उनकी कुर्बानियों का जिक्र ज़रूर नुमाया तौर पर नज़र आएगा।

जो तरबियत उस जमाने में बच्चों की की गई थी, जो सबक उन्हें याद कराया गया था, वो सबक आज भी हम सबको याद है। हम आज भी इस मुल्क की हिफाजत के लिए सरबकफ हैं। यकीन कीजिए कि इंसाफ के साथ, इत्तेहाद के साथ और अमन के साथ न सिर्फ हम बल्कि हमारे बच्चे भी इंसाफ की डगर पर चल रहे हैं।

इस मुल्क की सबसे अजीम बात जो है वो ये है कि ये मुल्क सबका है, नानक का है, चिश्ती का है, और तमाम मजाहिब के लोग इसमें मिलजुल कर रहते हैं मोहब्बत के साथ। इसीलिए तो कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है।

0: सामीन इस नगमे के साथ ही आज का फिल्मी नगमों का प्रोग्राम मेरी पसंद अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, हमें आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 71 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर। पेशे खिदमत है क्लासिकल गुलकारा बड़ी मोटी बाइज के साथ की गई गुफ्तगू की एक रिकॉर्डिंग। आपसे गुफ्तगू की थी माधुरी मट्टू ने।
1: आइए तशरीफ लाइए बड़ी मोती बाई साहिबा, आदाब पेश करती हूँ।
2: खुश रहिए, खुश रहिए।
1: बहुत अरसे से आपका नाम सुन रहे हैं और मैं तो बचपन से आपका नाम सुनती चली आ रही हूँ। बनारस वाली मोती बाई, बड़ी मोती बाई बहुत अच्छा गाने वाली हैं, लेकिन आज मुझे मौका हासिल हुआ कि मैंने आपकी नियाज हासिल की और आपसे बातचीत करने का भी कुछ मौका हो जाएगा।
2: मैं बहुत दिन से इस उम्मीद में थी मैं बुलाई जाऊं। मैं जल्द जहां तलक, क्योंकि मेरी उम्र ज्यादा हो गई है, जहां तलक जल्द आ सके, सब लोगों की दर्शन कर सके, यही बहुत है।
1: हमारी तो खुशकिस्मती है कि आपके न्याज हासिल हुए। आपकी इस वक्त क्या उम्र होगी बड़ी बी?
2: मेरे समझ में 80-75 के बीच में मैं होंगी।
1: 75-80 के बीच में?
2: जी हाँ
1: और इस वक्त भी आप गाती हैं?
2: जी, ईश्वर झूठ ना बुलाए तो 1.5-2 घंटा मैं गा सकती हूँ।
1: क्या कहना है, तो आपकी तालीम और उसके साथ आपका रियाज, मुसलसल रियाज, ये उसका नतीजा है कि आप इस वक्त भी गा सकती हैं। आपकी किस उम्र में तालीम शुरू हुई?
2: करीब 6 बरस की मैं

0: छह बरस ऐसे छह या सात की होंगी मैं ऐसे ही, क्योंकि बहुत दिन गुजर जाने से मुझे जरूर ख्याल है कि छह सात बरस में मेरे मैंने शुरू किया है।
1: तो आपके उस्ताद कौन थे पहले?
0: सियाजी मिश्र।
1: सियाजी मिश्र,
0: हाँ, ये कथक लोगों में मिश्र कहे जाते हैं।
1: जी हाँ
0: जी हाँ।
1: तो आपकी तालीम ख्याल से शुरू हुई या ठुमरी से ही शुरू हुई?
0: पहले तो सरगम का भराव दिया गया गले में, सरगम का भराव।
1: अच्छा।
0: उसके बाद टप्पा, उसके बाद टप्पा उप्पा ख्याल ठुमरी
1: दादरा
0: दादरा
1: कजरी वगैरह
0: यही सब। जी।
1: तो आपको रकबत ख्याल से थी या शुरू से ही ठुमरी से ही थी?
0: ख्याल से भी रही है, ठुमरी से भी, इन सबों से जो जरा सा अच्छा मालूम है वही शुरू कर दें।
1: तो आपकी जब तालीम शुरू हुई तो शुरू में तो कुछ पलटे वलटे बताए होंगे उस्ताद साहब ने?
0: जी हाँ, जैसे सिया जी ने
1: जरा बताइएगा पलटा।

0: ऐसा
1: ये सर। हाँ इस तरह से
0: जी हाँ।
1: तो इसको आकार में कहते होंगे। आकार में कहते
0: होंगे इस तरह का।
1: यानी कि आवाज को ठहराने के लिए
0: जी हाँ।
1: उसमें ठहराव
0: जी,
1: पैदा करने
0: जी,
1: के लिए वो
0: जाहिर
1: है पहले तो पलटे से ही शुरू होता
0: जी
1: है।
0: हाँ।
1: तो उसके बाद फिर उन्होंने
0: उसके बाद
1: ख्याल वगैरह की
0: ख्याल ठुमरी टप्पा
1: तो ख्याल कोई एक आपको याद होगा।

0: ज़रा मुझे शौक था ताश वगैरह ये सब
1: ताश
0: खेला
1: खेलने
0: करते थे।
1: का
0: जी हाँ
1: जी बच्चों को होता है, बड़ों को भी होता है, बच्चे
0: जी।
1: मगर बच्चे ही हैं।
0: और फिर इसके बाद खाना खाने ये सब होते, मगर उस वक्त में 1.5 ही 2 घंटा गाने का मौका मिलता था।
1: तो आपकी तालीम सिर्फ सिर्फ सिया जी मिस्र से हुई और किसी से नहीं
0: नहीं,
1: हुई?
0: और भी
1: और कौन
0: वो
1: सा?
0: अपने शामिल उस वक्त मोजदीन खान
1: हाँ,
0: साहब
1: मोहसिन खान साहब तो
0: कलकत्ते
1: बहुत
0: से।
1: ठुमरी
0: जी
1: हैं
0: हाँ,
1: कि बहुत मशहूर, बड़े अच्छे गाने वाले थे
0: बहुत
1: उनके।
0: ऐसे गाने वालों में थे कि
1: जी
0: वो जिस वक्त शुरू करें गाने लोगों से हाय मोजदीन रटते ही उनके पास लोग दौड़ते चले आवे।
1: यही हमने सुन रखा
0: जी
1: है सर,
0: हाँ,
1: बहुत अच्छे गाने वाले
0: बहुत
1: थे।
0: अच्छे। तो वो उसमें तो जो लोग भी सुने बस वो पागल से दौड़े आते थे। उस वक्त में हमारे उस्ताद सिया जी उनको ली आए हमारे घर पर।
1: जी
0: अब तब से उनसे भी गाना शुरू हो गया। इत्तेफाक एक पहले इंतकाल किया है सिया जी ने।
1: सिया जी का इंतकाल
0: जी
1: पहले
0: हाँ,
1: हुआ है।
0: पहले हुआ है।
1: जी
0: उसके बाद मोजदीन खान साहब से गाते, कुछ दिनों के बाद खान साहब भी इंतकाल कर गए।
1: यानी मोहिद्दीन खान साहब
0: जी
1: भी,
0: हाँ,
1: उनका भी इंतकाल हो गया।
0: वो भी इंतकाल कर गए।
1: उस वक्त आपकी उम्र क्या थी?
0: 18 या 19 की थी, 18 19 की।
1: आपकी मुसलसल तालीम मोहिद्दीन खान साहब से कितने बरस हुई?
0: 5 6 बरस हुए
1: 5 6 बरस।
0: जी। और बाद के जब वो इंतकाल कर गए तो एक मिठाई लाल जी बीनकारिये थे,
1: जी हाँ
0: वो महाराज बनारस में नौकर थे,
1: जी।
0: तो उनसे मैंने शुरू किया।
1: उन्होंने क्या बताया आपको?
0: ख्याल और ख्याल टप्पा।
1: टप्पा और
0: जी
1: ख्याल। तो पहले आप हमें कुछ मोहिउद्दीन खान साहब की कोई चीज याद हो तो वो सुना दीजिए,
0: ये
1: कोई
0: जो
1: ठुमरी वगैरह
0: वो
1: उनकी,
0: पहले जो मैंने शुरू
1: वो
0: किया है वो
1: एक
0: खान साहब की है,
1: जी
0: दोनों चीज़ें टोड़ी की मोजीन खान साहब की है।
1: वो अच्छा, टोड़ी का ख्याल जो
0: जी
1: है
0: हाँ, दोनों,
1: जी,
0: वो छोटी और बड़ी दोनों
1: जरा
0: हैं।
1: एक बोल कहिए, वो छोटा ख्याल।

0: वाह बहुत अच्छे बहुत अच्छे, क्या कह रहे हैं, बड़ी इसकी खूबसूरत बंदिश है।
1: ये आपको मौजिक रूप हसाब ने
0: याद करा है?
1: जी।
0: अच्छा तो ठुमरी, ठुमरी का एक आध बोल हमें जरा सुनाइएगा।

वाह वाह वाकई आए तो पुराना नक्शा आपने ऐसा दिखाया है कि तबीयत पे बहुत ही असर हुआ इसका। कितनी कितनी मुश्किलात आप इसमें फिरी हैं, बहुत अच्छा लगा। आपको वाकई इस वक्त मालूम होता है कि कैसी तालीम हुई होगी उस वक्त और कितनी मुसलसल हुई होगी और किस कायदे से हुई होगी, कि जिसका आज इस उम्र में भी आप इतना अच्छा नक्शा पेश कर सकती हैं उसका। अच्छा तो आपको तकलीफ तो होगी, लेकिन हमारी तबीयत बहुत चाहती है कि आप एक आध दादरा भी सुनाएं।

0: वाह, बहुत ही पुरानी चीज आज तो सुनाई आपने, बहुत खूबसूरत बंदिश है इसकी। वाह, ये के ये आप आपने किस किन से हासिल की? कौन साहब थे वो? मौजुद्दीन खान साहब की चीज है या सिया जी की?
1: सिया जी की।
0: सिया जी की है ये भी। वाह, आपके जमाने में उन दिनों में कौन अच्छा गाने वाली थी, ये ठुमरी दादरा वगैरह? आपने तो बहुत सुन
1: चीजें हैं, वो सब चीजें गा सकती थी, ख्याल भी, ठुमरी भी, दादरा भी। बड़ी हुसना बाई,
0: बड़ी हुसना बाई
1: और विद्याधरी बाई।
0: हाँ, विद्याधरी बाई का भी बहुत नाम सुना है। वो क्या गाती थी, ख्याल गाती थी या
1: ख्याल, टप्पा, गजल, ठुमरी, सारी चीजें वो भी गाती थी। हुसना भाई भी ज्यादा गाती थी
0: जी।
1: और ये नाचना भाव बताना हद से ज्यादा इनका मशहूर था सब कुछ
0: जी।
1: जी उन दिनों में ये लुक थी।
0: आपको भी नाच याद है?
1: जी नहीं। नाच का नहीं,
0: नाच का, सिर्फ गाने का ही आपने रियाज किया
1: जी।
0: तो टप्पा भी आपने, आपके गाने से तो जाहिर होता है कि टप्पे की आपको बहुत तालीम हुई है, क्योंकि खटका और तान बड़ी अच्छी तैयार है
1: जी। टप्पा भी मुझे याद है।
0: एक आज जरा बंदिश टप्पे की भी सुनाइए। अच्छा। तो

0: वाह, क्या कहना। आपको बहुत तकलीफ दी मैंने, इस बुढ़ापे में भी आप इतना कह लेती हैं, बड़ी बात है ये, वरना तो सांस लेना मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए। लेकिन आपका पहला रियाज इतना है कि उसमें एक आप कजरी पूर्वी कजरी और पूर्वी गीत वगैरह तो आप गाती ही होंगी
1: जी।
0: तो एक आध आप पूर्वी गीत सुना दीजिए हमारी पूर्वी।

वाह वाह, आज आपसे बातचीत करके और आपका गाना सुन के बहुत ही तबीयत खुश हुई, और हम चाहते हैं कि फिर भी कभी आपको जहमत देंगे।

0: बहुत खुश किस्मत है हम लोग के आपका गाना आज सुनने में आया। अच्छा आदाब पेश करती हूँ।
1: समीन अभी आप बड़ी मोटीबाई मारूफ क्लासिकल गुलुकारा से की गई गुफ्तगू की ये रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। आपसे महवे गुफ्तगू थी माधुरी मट्टो। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है फिल्मी नगमे। प्रोग्राम की पहली पेशकश लता मंगेशकर और साथियों को सुनिए। फिल्म है राम तेरी गंगा मैली। नगमा निगार असद जयपुरी, मौसीकार रविंद्र जैन।

और अब सुनिए मुकेश की आवाज में प्रोग्राम की अगली पेशकश। फिल्म है जिस देश में गंगा बहती है। नगमा निगार शैलेंद्र, मौसीकार शंकर जयकिशन।

ये कविता कृष्णमूर्ति, कृष्ण सारगाथिया और साथी फिल्म है हम दिल दे चुके सनम। साथ में विनोद राठौर भी हैं, नगमा निगार महबूब, मौसीकार इस्माइल दरबार।

और शामिल लीजिए, आप सुनिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में भरोसा फिल्म का नगमा, नगमानिगार राजेंद्र किशन, मौसीकार रवि।

और सामिन आइए अब सुनते हैं डर फिल्म का नगमा, उदित नारायण की आवाज में, नगमा निकार आनंद बख्शी, मौसीकार शिवहरी।

न्यू आकाशवाणी करगिली स्पेशल प्रोग्राम सेवा संकल्प अभियान तहत दूसरा प्रोग्राम दिंग यंतासु पखुरेगा एनायदली यंदी दुनियों से छाना दी दी प्रोग्राम पेनुक नतेस न्यू एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट इस 2020 याना शुरू बसकन दी पॉलिसी गाँव नपसी दे ओल्ड नदी ट्रेडिशनल सिस्टम गाँव एनु नते 10+2 सिस्टम पर पिन यमें नदेर के अपना 3 साली डिग्री दे पुराना सिस्टम पर चेंज बसे दरे 5+3+3+4 सिस्टम पो शुरू बसेन छान दी एजुकेशन पॉलिसी एनु डब्ल्यू सीमा ना मामू बसे नती स्नल ला नता थ्योरेटिकल एजुकेशन सिस्टम पर पिन दे सिस्टम पर चेंज बसे दरे प्रैक्टिकल स्किल बेस्ड एजुकेशन ताउचाओ चाम चिंगियन में सपो फ्रूनी स्किल पर इनहेंस बे तरीकान इस्तेमाल बसे फ्रून दोनों खास कर लोकल नति जबान हिंदुस्तानी व्यस्त पुतम जुछोदास्पादेनुक अलग अलग जगह अलग अलग स्का दियोत छाना लोकल स्कैंग करगिला पूरी गीस का तैनुक जंस्कार ला जंस्कारीस का तैनुक द्रास ला शिनास का तैनुक दो चला साख ताऊ में सिस्टम पो शुरू बसिन छाना दी पॉलिसी

0: दुसरा साल पण उच्च मिनियरस दे करदम वस मोजू फाउंडेशनल लिटरेसी आणि न्युमरेसीचा इम्पॉर्टन्स मन मुंबई ता दे आन दोला निपुण भारत जेते बेसिक रीडिंग रायटिंग दोन मॅथमॅटिकल स्किल्स तिसरी सुपा यु मोचा खाचन इन जो
1: चनंगस दसंगदा फाउंडेशनल स्टेज पो मन इम्पॉर्टन्ट इन दिस फाउंडेशनल स्टेज पे नंगता इम्पॉर्टन्ट चिचिक ट्रिसियन न्यूमरेसी दिस फ्री छह साल या छह साल के अंदर अंदर छह साल सपे फ्री ब्रेन ही डेवलपमेंट नंगता 98 कम्युनिटी ब्रेन डेवलपमेंट नंगता रिसर्च ड्यू इंडिकेट बस इन सुकी 98% तक कोई ब्रेन डेवलपमेंट कंप्लीट छह साल सपे दिगन आल ती प्यान लुस्खानी डेवलपमेंट हुई चाहिए चाइना पहला सिक्स ईयर पियानो खाम से एक्सपोजर ताना चम से वाइब्रेंट इन्वायरमेंट ताना लर्निंग अपॉर्चुनिटीज का तो ताना केयर थोपना दे सब का खुए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में माना स्ट्रॉन्ग छाइ बेस दन चीन सुख चाइना ब्रेन इज स्ट्रॉन्ग छाना चम से दन ना दे पीरियड पे दन चीन सुख दे साइनेप्टिक कनेक्शन दे कनेक्शन यानी कि खुए दे जाना एक्सपीरियंस ही चौशा है खुए एक्सपीरियंस बेस पोल दन चीन सुख चम से एक्सपीरियंस बेस किमोल दन ना खुए फाउंडेशन पो खुए समर्थन में तरह का स्ट्रॉन्ग ना वाइब्रेंट माल दन चीन सुख दे पांच साल पे खुआ चम से दन ना फर्दर दे कना यहाँ दंजमें सुख ख्वादल दनखन पे का फर्दर खुए दिका एडचेन छचेन सुख इन्हें चेन छचेन सुख चाना देखा चम से खिमुल दन न दे सब पो खुए फ्री डेवलपमेंट यहाँ जरूरी इन सुपे दुआ को आगे की पढ़ाई को आसान छचेन सुख लो स्पीड तरकाउन सा लोफशा सा लो स्पीड चीज पे अनुक बाकी सब पी चीज में अनुक मन समझ छचेन सुख चाना फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमेरेसी दी फेसों सिंह था फाउंडेशनल लिटरेसी जमना फ्री अति स्कूल मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टेक्स्ट बुक मीडियम ऑफ लैंग्वेज दे मीडियम पों कारगिली कंटेक्ट इंग्लिश इंग्लिश यंखोज साइंस इंग्लिश यंखोज मैथमेटिक्स इंग्लिश या टेक्नोलॉजी दे बारे ची बना खो सबा पो फरदा साइंस सोशल साइंस इंग्लिश बना तीसरी चापे खुआ इंग्लिश लिटरेसी स्किल्स पर लोब्स पर तीसरी चापे खुआ का तो लिटरेसी स्किल्स लोब्स ना तीसरी उंगाती इन्फ्लेक्शन पॉइंट जैसी तीसरी क्लास खोस लर्न चुचेन रीडिंग के लिए दिगनाल ती खोस रीड बचेन लर्निंग के लिए छाना तीसरी उंगाता इन्फ्लेक्शन पॉइंट जैसी चीज मना हर का तो तीसरी चापेखा अंग्रेजी अनुक कुछ सेंटेंस शिक फ्यूलन जेर बंगिन जेर दे मल्ला पो छुतना मैथमेटिक्स से सवाल उनको छुचिन जेर बंगिन चिन दस उल्ला हिंदी सिलचिन ना हिंदी अंग आर को हिंदी या उर्दू सिलचिन ना हिंदी ने उर्दू तीसरी चापेखा हिंदी अंग बिखानी कम अज कम सट शब चिखवा सीले दे माला पो छुत पर गोस छुत पर खे बेसिक लिटरेसी खे देखा एचूज हो सिंस दस उस लगा था मैथमेटिक्स ही नंबर कॉन्सेप्ट या नंबर से रिलेटेड डिवीजन बचा नंबर का ऑपरेशन दो से रिलेटेड या मैथमेटिक्स स्किल चो जिंदे दे स्किल पो तीसरी सब पे बेसिक स्किल पो खे डेवलप चार वोशन सो दो शाना देखा ना अल तिखवा मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग पो मैथमेटिक्स सिलचा या कंप्यूटर ही चीज सख्त गाँव अंडरस्टैंड बे फिया दे सॉल्व बे फिया दे चीज उनको अंडरस्टैंडिंग बे फिया दो खुआ दे बेसिक स्किल्स पो दे सब पे तीसरी कल सब लोब्स ना इल समझ दे फिर कि तीसरी से पहले बच्चे का फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी माता अचीव चार वोशन चाइना इंडिया नु माता सर्वे एनपी 2020 सर्वे से दे डॉक्यूमेंट पे कुछ सर्वे फाइंडिंग्स का तो कोड बस दे कोड माता 5 करोड़ फ्रुआ दे फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी तीसरी कल इंडिया फ्रू सा अचीव छ मिनुक माशा दस बसे फ्रू साहबोज छिनुक दस बसे स्कूल आना ड्रॉप आउट छिनुक दस बसे खुआ साहब छुत पेनुक मछुत पेनुक हम पीछे लूसिन लूसिन चेन चाना 5 करोड़ फ्रू जब आता लर्निंग क्राइसिस जरे जरे लर्निंग क्राइसिस सोसिन आता तो एक इमरजेंसी सोसिन चाना इमरजेंसी चाना मिशन मोटिकर शुरू जरे दे फिर आता निपुण भारत मिशन ओसिन की दी स्टेज पे कहा था मिशन मोटिकर आता अशुल बहुत चेज मैंने फ्रू दो चुक फ्रू पीछे लूसिन दे स्किल्स पुख दे पर्टिकुलर स्टेज पे लोस पेनुक मालोस पेनो खो पूरा जिंदगी देकर डिपेंड छिनुक दोस्त बस खो पूरा आने वाले लाइफ खो खराब छिनुक चाना अब हमें मिशन मोड पे ये चलाना है इसीलिए निपुण भारत मिशन की निपुण भारत मिशन मकसद पे जो इनकी 2021 स्टार्ट हो 26-27 हर बच्चा जो तीसरी क्लास में पहुंचता है उसको फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी होता है एचयू बचे ताकि खुए आगे का फर्दर पढ़ाई खुए आसान हो।
0: डॉक्टर साहब तो दी पॉलिसी मतलब पॉलिसी की लोकल लैंग्वेज पे गा जगह
1: लोकल लैंग्वेज यूज बोज मकसद चिचिक त्यू इन चुके रिसर्च बेसिक पता सोच

0: किंग आता फ्री थॉट पो ओरिजिनल थॉट पो लोकल खुरी मदर टंग पे डेवलप छिन सुको छाना चम से फ्रुआ राय थॉट टी बेसिक खुआ इनपुट कते होना खुआ चीसुन ज्यादा ठीक तरीके का खुआ समस्या हो जिन सुको जाना गाता जा छिन नॉन ट्रिवियल कांसेप्ट नॉन ट्रिवियल जमन एब्स्ट्रैक्ट कांसेप्ट्स ऑफ फ्रुआ छुच्चा मिन सुको फ्रुआ दे टाइम पे का ओदी पर्टिकुलर स्टेज 8 क्लास सपोज दे प्रेफरेबली 8 क्लास तक यानी कि 5th क्लास तक
1: 5th से 8th तक
0: बेसिक फाउंडेशनल स्टेज पे तो मदर टंग यूज करना ही करना है लेकिन प्रेफरेबली 8 तक करना है छह जब ना इंग्लिश लैंग्वेज पाता बाहरी लैंग्वेज मतलब यूज बस इन दे मत इंडिया नु हर गाँव अनु या हर एरिया हर डिस्ट्रिक्ट अनु अलग अलग लैंग्वेज हो मतलब लद्दाख आता ना मत करगिल आता ना मत पुर्की बल्ती शीना बहुत सारे डायलेक्ट दिस कत पे अनु फ्री तरबियत पोस्ट कैसे ना थ्रू स्कूल या एंट्री तीन जल एंट्री बना प्रिस्कुलियां दिस अप में खुश कच्ची खुश लुप्स खुश एक्सपीरियंस खुश लुप्स
1: थप्स
0: थप्स दिस सवा मीडियम पो खुश खुरी मदर टंग पे अमेज़ कट पे का थप्सीन द अमेज़ कट पे का खुश गोज़र्स चा खुश करकुंज़र्स चा खुश पापाज़र्स चा थुप्पाज़र्स चा आपोज़र्स चा आपीज़र्स चा दोनों गामा खुश लुप्स अब जो ही दिन आता स्कूल यो मनो खुश यंग लैंग्वेज इंट्रोड्यूस बने यंग लैंग्वेज गोमाज़र ढोरज़र करकुमाज़र विंडोज़र फादर्स मदर्स छाना पुआ एस्टिक बहुत सारे कंसेप्ट इंट्रोड्यूस बेत हिंदी अमेत उर्दू अमेत इंग्लिश अमेत मदर टंग पो आता यूज बोस मदर टंग पो चे यूज बोस एक्सपीरियंस मदर टंग डेवलप सोचो फ्री बेसिक थॉट पो खो मदर टंग छा मदर टंग पो आता सोर्स यूज बोस बाकी लैंग्वेज पो लोप्स पीपिया मदर टंग सोर्स दो नंबो सुलचा ए लैंग्वेज पर लोप्स पीपिया कारगिल लद्दाख कंटेक्स छाना इमिजिएटली दो मेरे चाहिए कि ए लैंग्वेज पर फंक्शन डी लैंग्वेज पर सब मेरे चाहिए कि डी लैंग्वेज पर नंबो नंबो सुलचा जे जमा डी लैंग्वेज पर चिकपाना खो खुरी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट खो ओरिजिनल थॉट पो राय मदर टंग पे डेवलप छिन यहाँ रिसर्च दियो पता सोच कि जम से थ्रू मदर टंग के होल यो खो अदर टंग लोप्स पर मा समो छिन लोप्स दे लैंग्वेज पे खो मना फ्यूलन न मन रिच छिन सो जैसे कि गंगारी पुरकी लैंग्वेज अनु नी स्कत मन अर्दे में नी ला वोकैबुलरी मन मांगमत चीज खचिंग पता हर चीज लैंग्वेज से रिलेटेड डेवलप सोंग जो छनंगा इंग्लिश तब ना इंग्लिश पोलोप्स बना नी दे थॉट पो दे वोकैबुलरी दे डेवलप छिन सो ते मन इनरिचिंग छिन सो छना दे अनु को फर्दर को डेवलप बाइन जो से पे दे अनु चो चो लंग आता ना ती इंडियन लैंग्वेज पो प्रमोट बे पिया इन की इंडियन इंडिया बहुत ही रिच लैंग्वेज में डाइवर्स कल्चर है दे कल्चर ही बेस्ट चीजिंग आती लैंग्वेज पे दे लैंग्वेज पे बस आता आती कल्चर समझ आऊँ दे लैंग्वेज पे बस आता आती हिस्ट्री समझ पे आऊँ पास समझ आऊँ दो बस आती लैंग्वेज प्रमोट भी फिर आता कि मदर टंग को ज्यादा प्रमोट करना है मदर टंग में बच्चे का लर्निंग होना चाहिए
1: आर्ट कॉमर्स वोकेशनल एजुकेशन जरे सुन सब्जेक्ट चॉइस पो एरिया बढ़ाई बस
0: स्नल आर्ट साइंस स्ट्रिक्ट डिवीजन
1: बिल्कुल
0: आर्ट्स लेन खान पो साइंस लेन में आर्ट से सब्जेक्ट चीचे फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री शो हो लेकिन साइंस लेकिन साइंस केमिस्ट्री ने फिजिक्स हिस्ट्री लेन लेकिन दो चॉइस पो मैथ पुआ सो मस हिस्ट्री ने केमिस्ट्री यंगस केमिस्ट्री ने फिजिक्स नेमो नेमो स्किल मस कारपेंट्री से रिलेटेड इंफॉर्मेशन यंग टूरिज्म से रिलेटेड कुछ लेने समेत दे अपॉर्चुनिटीज गाता दी 12th अप पे मैथ पिन छना 12th अप पे गाता मस न लज दे कि फाउंडेशन स्टेज दे गना प्रिपरेटरी मिडिल स्टेज दिस स्टेज यू नो प्रुया राय इंटरेस्ट पो पता है जिनसु राय स्कोप पो राय इंटरेस्ट पो या राय फर्दर फ्यूचर यानो ट्रेडिशनल सेटअप दो इंटरेस्ट डेवलप स्कोप मन मित दसान दि स्कोप प्रोवाइड बस कि बच्चे के लिए बुके चोशी बुके अलग अलग अटेम्प्ट्स आजाद बच्चे का चॉइस है कि कौन कौन सा करेगा केमिस्ट्री के साथ फिजिक्स के साथ साइकोलॉजी रख सकता है फिजिक्स बायोलॉजी के साथ वो मैथमेटिक्स या उसके साथ ज्योग्राफी रख सकता है या वो एक स्किल का टूरिज्म रख सकता है या अपेरल कुछ और रख सकता है दोनों दोनों गाँव में खुआ चॉइस जक्सन छाना नाइन क्लास से अब तक खुआ चॉइस स्टार्ट छाचिन 11th 12th सब छाना खुए बेसिक चॉइस सब्जेक्ट छो खेल धनचिन खुरी इंटरेस्ट है बेसिक का छाना दे इंटरेस्ट बेसिक का खुरी चॉइस पो लेन खान पो खोस फर्दर को सा दे चीज पे अनुकवा लाज

0: सियों चिंचु सियों चिंचु फर्दर को आदेन नॉलेज गेन बकवा इंटरेस्ट हों चिंचु दो सों ची दो हैं जो कि को ओपन चॉइस ताँचा फ्री अता मैक्सिमम एकेडमी अनु प्रोस कुछ डिग्री बस है ना खोला चंग स्किल चिक अति इंडियन एजुकेशन सिस्टम में पास सिस्टम पे स्किल चिक म्यों मत दे माना यानी पीएचडी बस है ना यंग आरा अंगरी चीशिक दें दी बच्चे चौशिक क्लासिक बे चीशिक माना हुनर चिमेत स्किल चिक डेवलप चमेत पिन माशाना दासन दो अता चाचुक पीपिया जिंदगी अता फ्रुआ सिक्स क्लासिक ना फनला स्किल एक्सपोजर तुम आगे जाके ट्वेल्थ का फर्दर को स्किल एक्सपोजर दूँ ताकि वो ट्वेल्थ के बाद कुछ काम कर सके, फिर इसके बाद वो ग्रेजुएशन करेगा, टाइम मिलता है वो ग्रेजुएशन करेगा, फिर कुछ काम भी करेगा छोड़ के, फिर से वो पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। चाहे एक लाइफ लॉन्ग लर्नर दो सौ विजन ही करता आदि चीज सुनता ध्यान सेटअप पे जा सकता
1: वो लाइफ सेट दी उन्होंने बता दे स्किल डेवलपमेंट वोकेशनल एजुकेशन का दोनों प्रैक्टिकल लर्निंग का न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ना दी अप्रोच पोस पीएचडी बस यंग लाशिकारे बोग जनरिंग ला स्किल में चाहे दी गैप पो गा चला कोस काम बचा इंजो
0: मतलब स्किल बेस्ड एजुकेशन अनु चिपपन अंगता बहुत सारे काम इफ़े अंगता एलिजिबल छे चिंस खुद का कर सकते या खुद छोटा मोटा बिजनेस एक स्टार्टअप ची स्टार्ट बना अंगता एक डिग्री के साथ साथ अंगतीरां स्किल छे अंगता लोप से हों चिंस जैसे कि अंगता अगर चिंस दी एजुकेशन पॉलिसी जना अगर चिंस की टेंथ पास होते होते बच्चे के अंदर एक पर्टिकुलर हार्ड स्किल्स उसके अंदर होना चाहिए जैसे कि दसवीं पास उसी को माना जाएगा कारपेंट्री करना आता हो इलेक्ट्रिशियन का काम थोड़ा बहुत आता हो या वो टूरिज्म से रिलेटेड कुछ या करना गार्डनिंग से रिलेटेड कुछ करना आता हो और वो करना आता हो तो ही उसका टेंथ पास माना जाएगा फिर ट्वेल्थ में कुछ स्किल का चिंग आता फर्दर ध्यान था जिन दिस स्किल दिस रिलेटेड कोई वोकेशनल स्किल से उसके बगैर गाता स्किल बेस्ड एजुकेशन से बना गाता पहला प्रैक्टिकल एजुकेशन कंपिटेंसी प्री डेवलप चाचा गाता रट्टाफिकेशन आना बाहरों से गाता कुछ कंक्रीट कंपिटेंसी बच्चे डेवलप
1: चाचा
0: प्रैक्टिकल खो लो फ्यूचर एक्सपीरियंस बेसिक को लर्निंग चाचा सबक पोजर ना दे कंसेप्ट पूछू तो ना दे कंसेप्ट भी एप्लीकेशन पे का फोकस ना चा मैक्सिमम आता ट्रेडिशनल सेटअप पे अनु टॉपिक चिंगत याद बचा दो से रिलेटेड क्वेश्चन पो बेसिक आंसर चीज से दो याद बस आते एग्जाम आंसर चा एग्जाम आंसर भी सिंह पास हो सकती ना यहाँ दे बारे आता एक दो साल के अंदर अंदर या मन आता एक महीने के अंदर अंदर गांव मार जीते छाना दो छाना दे सवाल पूछा रोट मेमोराइजेशन रोट लर्निंग रोड लर्निंग बाहर क्यों छा फ्रून ला कंपिटेंसी बेस्ड एजुकेशन तीन छो में पिया खुआ प्रैक्टिकली खो सवाल पे कॉन्सेप्ट छूते ना दे एप्लीकेशन पो दे लैब पे एप्लीकेशन पो बचा सब पे खो जा दो सब जा सौ और दे सब पैसा मीन की खोए अंदर एक एटीट्यूड डेवलप बचा एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप बचा ताकि खुआ दे चीज पो पता है ना बाइन मत बाइन कहना बचा खुरस बचा
1: प्रैक्टिकली
0: बचा गंदगी में बोझ जाएगा तो गंदगी माहौल खराब होता है जरिए स्कूल यहाँ साइंस यहाँ सब जा माहौल खराब हो जाए छात प्लास्टिक छात गंदगी पाना छात वाटर पोल्यूशन एयर पोल्यूशन दोनों गाँव में छात जी जा दे कंसेप्ट पो पहला चीज है ना माना तो छुत पर जाचो रटा तह से एग्जाम आज बीचे चिच्चे खो दे कंसेप्ट छुचिन छूते ना खोस खुरेस भजन खुरी लाइफ पे आने या चाहे छोटा मोटा ची बना क्लासरूम में बना क्लासरूम से बाहर बना खामा बना खोस बचिन एक बार बचिन बाइंजिन ऊपर मीन्स खोस प्रैक्टिकली खोए अंदर एटीट्यूड ची डेवलप छचिन की खोस गंदगी बचा में यंग चीज बना खोस दुआ प्रैक्टिकल एजुकेशन हार्ड स्किल वोकेशनल स्किल्स फ्रून लेता चा ताकि खो खुरी रोजगार कमाए भी कुछ डिग्री बस ना को कमे बस हर एक छेद को कमाए बा नियन को इंडिपेंडेंट कमाए बा खंची छेद को खुरी पेरेंट्स को निकल डिपेंड मिले
1: डॉक्टर साहब ता दिया नुगदे गा पॉलिसी था मतलब गा स्कीम छ कतो शुरू बने गवर्नमेंट इस इंप्लिकेशन पो हा मिस को लेब चुचा क्रिटिकल पीरियड चेंज हो चाना ngati di new education policy implement be be tam je challenge jo khas kar ngati di area to ladakh to jaga ne anuk yu leb chupa
0: लेकिन तो जब ग्राउंड लेवल में काफी गैप क्रिएट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मन अर्दे मो डॉक्यूमेंट अब दो ग्राउंड लेवल लेवल सिंह आता मन बहुत सारे लूप होल्स लद्दाख कंटेक्स्ट गा पॉलिसी चोना नेशनल लेवल के चोना।

0: रिमोट एरिया नो लद्दाख रिमोट एरिया नो इम्प्लीमेंटेशन भी पिया यहाँ नया नया चैलेंज का तुम आता यहाँ ऑब्जॉर्प्शन या छाना गाता फॉर एग्जाम्पल गाता मेन मेन का तुलता ना गाता पॉलिसी टाइम का अवेयरनेस गाता थोपेनुक चाहे दी पॉलिसी शुल भी पिया सिर्फ गाता मिंदा चिकनीस लिया एडमिनिस्ट्रेटर चिकनीस ला पता हूँ चिक या सिर्फ टीचर चिकनीस ला या एकेडमिशियन चिकनीस ला पता हूँ चिक सब चामिन दी पॉलिसी गाता एडमिनिस्ट्रेटर ही गाता उस पर गाता स्टेक होल्डर गाँव में पेरेंट्स सा टीचर सा स्कूल सा प्राइवेट स्कूल गवर्नमेंट स्कूल गवर्नमेंट ही रिमोट एरिया स्कूल हर मिया दिन पता हूँ मरगोस दो पता सौ से ची बच्चे जरे प्रैक्टिकली खुआ छूत पर घोस छूत मैंने खुआ दे ला सुबह में छा नाता वो दे अवेयरनेस छूत पी दे प्रैक्टिकली हर एरिया स्टेक होल्डर गंग में इन्वॉल्व सो से दे पॉलिसी छूत पी दो छुचो टाइम बोन चाहता छूत पर घोस दस दसंगता निपुण भारत मिशन एक मिशन मोड पे चला रहा है 21 में स्टार्ट हो गया 27 तक खत्म हो गया अब 21 से 27 छाना दसान दीजिएगा ना चाहम सो 26 सो एक साल में मेरे मालूस छाना गाता बहुत सारे चीज गेप गाता ना आलूस यो दांग खची मैंने पता में दुगा चो ची बचिन दर चो इंच चीन दर चो मेन स्टेक होल्डर का छाना गाता चैलेंज छेनु की अवेयर छेनु को अंडरस्टैंडिंग छेनु निस्पो गाता फाइनेंशियल इश्यू छिन सुंपो गाता गांव सानु पेरेंट्स लेवल की अवेयरनेस बचा या स्कूली इंफ्रास्ट्रक्चर उससे रिलेटेड उस लेवल पे लाना दे लेवल पे टीचर की कैपेसिटी डेवलप जो चाह ह्यूमन रिसोर्स डेवलप जो चाह छाना पॉलिसी अनु मर्दे मर्दे में जरूरत है वोकेशनल एजुकेशन सब्जेक्ट खाची जोक बच्चों को चॉइस देना चाहिए अब उस चॉइस के हिसाब से फैकल्टीज होना चाहिए टीचर होना चाहिए बाकी कंटेंट को अवेलेबल हो रिसोर्स अवेलेबल हो दोन गाँव आता अवेलेबल होता दे फ्यंग आता मेन इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आता डिजिटल इनिशिएटिव जो कि हर रिसोर्स डिजिटल फॉर्म में डेवलप अवेलेबल बस जैसे कि रिमोट स्कूल आता स्मार्ट क्लासेस स्मार्ट बोर्ड्स आता से दुक दे लिंक शेयर पे से दसा दीक्षा जरे फॉर एग्जांपल टीचर इफ या दीक्षा एप चिक्ड एप पे टाइम टाइम का अपडेट टाइम टाइम ओरियंटेशन ताकि सख जगह जगह सिजर बमें ना टाइम टाइमिंग डिजिटल के थ्रू भी रिसोर्स प्रोवाइड करने की कोशिश बेनता रिमोट रीजन आ नॉट रिचेबल एरियाज आता क्वालिटी रिसोर्स उधर डिजिटली मीन्स का प्रोवाइड बेन छाना दो प्रोवाइड बना दो चौदह गेप पो फील बेन लेकिन फिर भी आता इम्प्लीमेंट बखानून खासकर स्कूल लेवल का या इंस्टीट्यूशनल लेवल का इम्प्लीमेंट बखानूनी माइंड सेट में चेंज छो मैंने कंस्पेक्शन आता जैसे कि पुराने माइंडसेट में आप एक नया माइंडसेट में आना लर्निंग एटीट्यूड अनलर्न रीलर्न करना दे एटीट्यूड पर डेवलप छोचा पुराना सिस्टम पे कंफर्ट को दुख दुख अब नया सिस्टम पे आता हूँ मुश्किल से दुख अब वो मोटिवेशन
1: और बहुत कुछ करना पड़ता
0: है कम मेहनत बार कुछ अब थोड़ा और ज्यादा मेहनत करना चाहिए अब कुछ ऐसे भी सोच सकता है कि भाई ऑलरेडी हमें फैसिलिटीज तो है अब क्यों मेहनत ज्यादा करना कि चाना दे माइंड सेट उन चेंज बचा तुम सा या स्ट्रीम लाइन बचाओ मैं तो मैं चैलेंज दुख पाई दिन चेंज
1: वराइट साहब मैं तो प्रोग्राम में वक्त पाऊं हाँ आखिर ला लेब जो चाना यदि करना दियो नास्ती पर कि मतलब ब्रॉडर वर्जन हम अतः अगर पूरे हिंदुस्तानी लेवल का कदरता नरिक दी न्यू एजुकेशन पॉलिसी एजुकेशन सिस्टम पो गलत से खेल न्यू एजुकेशन पॉलिसीज और गचुगा पेरेंट्स चिगीस टीचर्स चिगीस हाँ ये मैंना स्टूडेंट कम्युनिटी खोरेस दोनों गवर्नमेंट इस दी एजुकेशन पॉलिसी कामयाब बेफिया गचु का मदद बहन चाहें जो
0: मेन ब्रॉडर विजन पर दा दुगना था आती दी एजुकेशन पॉलिसी नेशनल लेवल का मकसद पर दिया जो कि स्किल्ड कंपैशनेट ह्यूमन बीइंग चिकनाती सोसाइटी अनु डेवलप छा चुचा कि जो एक स्किल हो कुछ काम करने की क्षमता स्किल क्वालिटी भी हो स्किल भी हो कर सकता हो और वो कंपैशनेट हो कंपैशनेट मीन्स गाता जो खुद के लिए अच्छा सोचता हो दूसरों के लिए अच्छा सोचता हो सोसाइटी के लिए अच्छा सोचता हो अच्छा सोच रखने वाला एक केयरिंग एटीट्यूड वाला इंसान पैदा करना है जो कंट्री के लिए फायदा हो देश के लिए फायदा हो और इंडियननेस के अंदर ही उन दो ह्यूमन चिंगाता सोसाइटी पैदा बचा जो इंडिया पास रे इंडियन की करो प्रोड फील करता मती इंडिया मतंग देश भारत से दे प्रोड फील बचा जो बहुत ही कंपैशनेट केयर वाला इंसान हो और जो जिसके अंदर कुछ स्किल हो जज्बा हो करने का वो करता हो और देश के लिए सोसाइटी के लिए खुद के लिए डेवलपमेंट के लिए वो कंट्रीब्यूट करता हो एक कंट्रीब्यूटिंग ह्यूमन

0: पर्सन हो और लाइफ लॉन्ग लर्नर हो. लाइफ लॉन्ग लर्नर इज हमेशा वो सीखने की एटीट्यूड उसके अंदर हो और सीखते रहने वाला उस तरह का इंसान आती सोसाइटी पैदा भी दी विजन पो दी पॉलिसी दो यम्बो यम्बो आती रोल छाना हर पेरेंट्स इन ना टीचर इन ना मेन रोल इन दी पॉलिसी आती ग्राउंड लेवल का क्यों में पिया छाना सा रोल पो चीबा चेंज चौ गचुक सपोर्ट चिक प्रैक्टिकली कंट्रीब्यूट बचा रिसोर्स पैदा बचा रिसोर्स सपोर्ट बचा सुई रोल वॉन्चन एज ए पेरेंट्स वो अपने बच्चों को सपोर्ट करे सोसाइटी को सपोर्ट करे स्कूल को सपोर्ट करे हर कोई अपना एक्टिव रोल इस कंटेक्स्ट में समझ के खोज दे रोल पो का तो बना माता कामयाब तरीके से दिचो सोसाइटी फ्यूचर है.
1: डॉक्टर साहब यदि उजुसरी मो कि गति मेमा सुनला गति तखान उनला न्यू एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट 2020 यंग शुरू बसपिति पॉलिसी स्कोला सल्पो बसेरेस गति मेमा सुनला जस दुचा खतन चीफ या इन जर चौ शुरू बसपिन जर चौ क्लासरूम इकना हिंदुस्तान इकोनॉमी गति प्राइम मिनिस्टर स्लोगन जी तक 2047 सुपंगतंग विकसित भारत चोचिंदरे दे
0: एग्जैक्टली
1: दे नानुक दे गोल पेनुक ngati de classroom et kan ipsun is gatso contribute bachin this system po pura gatso gal danchin di education policies gatso madad bachin zer bi di eres di speron ngati me mansu par lep checka era uju seri moju inshallah me mansun yom me ja gona yang ngati soma scheme chi government khure di seva sankalp abhiyan tahat yantan supa yang tutuk de man ngacha jaza chazbo ya ju khuda nar sahmane faqran

आकाशवाणी श्रीनगर न उर्दू खबर न तबसरा बचाइन शाम सतर दुन नाम ने टीप चीका शमकमी नफैदी प्रोग्राम सानी तो सतर क्या

आकाशवाणी दिल्ली ना खबर रिलीबे वक्सोन फितगत सत्रुक दुना सनी तो सतर के नाम मिनट इंग्लिश विज नगा यहां सनी तो सतर गुना मिनट सुमजी का रीजनल न्यूज यूनिट आकाशवाणी करगिल ग्रेली का न्यूज रील प्रोग्राम के नजर करगिल नामा फ्रचु खानुन मोहम्मद अब्दुल्ला ना खतीजा बानो दिन दिन दिन आकाशवाणी करगिल के ना फ्रचु पैत भी प्रोग्राम सिरपो मीडियम वेव के दुआ आकाशवाणी करगिल इन वक्स पर खबर इन सोसु कसता पुरगी खबर लाइन नजर

नरेंद्र मोदी दिरिंग मोतुक राष्ट्रघाटी का महात्मा गांधी मेमोरियल लखुआ छेस लुक्सी बल्टन फ्रचुक जियांग मेन्दो गई नजरंग बासुमिन। गांधी जयंती वक्स पे का जीवीपी मुक्त अभियान गोजुक बसीन दियो अभियान स्वच्छता ही सेवा प्रोग्राम योगा गुरुग्राम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इस गोजुक बसेत दि मुहिम पो अक्टूबर चुक शिक्षक पाडुल चेन यांग दिया बारे अनु कचरा उन जीवीपी मलसिंग ईश्वर सख्शी कनत।

सबे थंग डुम्बुरी पंचायत गार्ला बीडीओ संकुए जरलुक से अनुक सबका योजना सबका विकास मुहिम योगा रिफॉर्म उत्से पेक नजम से मल्ला छोसिन दिवसला लोकसो लुंग उनी ऑफिसर उन्नीस हुकूमती लोकसो स्कीम उन्नी दोना फंतोक्स चन प्रोग्राम उन्नीस कोरला हागोदांस बेन दिवसला दिही तरकी लुंगी छोसना सरकारी स्कीम वीबीजी राम जी ना इम्प्लॉयमेंट ना लस्की मौका उन्नी स्कीम उन्नीस कोरला जरबसों ध्यान चोखला एफसीएससीए पीएचई एग्रीकल्चर और डेलुक्स एनिमल हस्बेंड्री आईसीडीएस फिशरीज यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स कोऑपरेटिव दोना बैंकिंग लुंग निसंग रंगसो से सिकी मुनिस कोला सल्पो बसे मिमंसुन ला हगो तांसिन गांधी जयंती जा पुनजम से सबका योजना सबका विकास मुहिम पेफिया जंस्कारी लोकसो गाम युलियानु रिफॉर्म उत्सव ग्राम सभा मल्लाख्यों सीन दी प्रोग्राम पो जंस्कारी जंगला लुंगनाक दोना जंस्कार बुलागानु लोकसो लुंगुल्ला छोसना मल्लाख्यों मसोमीन नि प्रोग्राम इतोन पो मिमा सुनी जर्चा सुमेत पर बचा हुकूमत सिकी मुन सख सख पर लेप चुक चाव दोना खिदमत उन मुन चुक चाव इन मीन ग्राम सभा चना हेलिकार उन्नीस मिमा सुल्ला ग्राख से यूं में वक्त सुने अनु गजती लस बार गोशे दोन स्कोरलां तंफो ग्राफो बसीन प्रोग्राम पो एक नजम से कृषि विज्ञान केंद्रीय ऑफिसर उन्नीस स्वच्छता अभियान यानी सफाई मुहिम पुयंग खागले ने करशी रूरल डेवलपमेंट कम्युनिटी हाल पुयनु दी अभियान पुस्तुल बसोमीन केवी के हेलिकार उन्नीस सखियत सुन्ना से दो चुपी ग्रालुन टोडो बलांग नीर देलुक्स ओशन नाइट गला जब्तुंग ओरिजिन लस्के दोना डायरी फॉर्म चुस कोरला हगुन गोंचुक सीन पीएचई लुंगिस चुई स्ट्रुंग लुक सी स्कोरी हगो दोना सफाई मुहिम चिगंग स्ट्रुल बसुंग यानी मुखबरुन संग इजिन शस्त बाजत खुदाई फगरेंग

0: Sungmin doon na in, bohat mubarak ki ngatang ngacang tutuk sposition jiyongs doon na ngas bas tu zertu ki nam sang doza kub semeduk cha assembly kalsang nashar lang se rangi sambaw zersh cha doon na otsoga assembly kalang sen duk cha ta ki rangi confidence po zada chet doon na tutuk mukam chikali panajiks majiks pardon wastan cha chet.
1: Makshis nomo, yerang lexina uju tsering mozere, yang tadir yapna yere zersenki uti levelika selection sio zere, tadir yapna uti levelika agar yere sergela performance chitanse, yerang den secure chana, yerang national levelika chachas inzere, ni yerang odon sari mingnang ngachang sari si yerang aduabet, ya yerang argelik son shik zere, yang yere sang mehnat base, yere skoshish base, yerang de makam bikahep shik zere, ngachang sari dua, makshis tsering mo. Dari sakpa yentes nomu khairun nisekana India's Energy Basket 22047 di khatus beka yentang sakpa trisori gang trisik frutchigin utpin rdiang majagay yentang adyur demo sori duktuk yang yentes diunikana fan khelinduk nidiana nangyambu diringi programi tuspong thama thoninduk nan medlusna yang yentang nangyambu skatuk chachas deman po nga izin shazdebo siyaju khodanar sangmani fagrem
2: Nariyantes program yang ini pun disiarkan acuan via program perjuangan pemimpin Sakina Banu. Media yang kedua Akashwani kerjilin waktu itu untuk setruk cenduk kesatuan Akashwani Delhi na Hindi na Anglesia khawarun relevant.
3: Namaskar, Akashwani Samachar ke saath, saya Vishal Sharma. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बहादुर भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छार से बात की। कैप्टन स्मित मच्छार ने दुबई से तल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट में अपने सह पायलट के हमले को नाकाम करते हुए 180 लोगों की जान बचाई थी। प्रधानमंत्री ने उनकी बहादुरी की सराहना की और शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने श्री स्मित के जज्बे की सराहना करते हुए कहा कि देश गर्व से कह सकता है कि भारतीय वे नहीं हैं जो जान लेते हैं बल्कि वे हैं जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार रहते हैं।
4: आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे हैं, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की और सबसे बड़ी बात 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूं।
3: कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया।

पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत की परिकल्पना में स्वच्छता सबसे महत्वपूर्ण है। श्री सोनोवाल ने महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर मुंबई पोर्ट अथॉरिटी के स्वच्छता अभियान संबंधी कार्यक्रम में ये बात कही। कार्यक्रम के दौरान मुंबई पोर्ट अथॉरिटी द्वारा संचालित जवाहर द्वीप मरीन ऑयल टर्मिनल को प्लास्टिक मुक्त ऑयल टर्मिनल घोषित किया गया। गोवा सरकार के सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत पोंडा में आत्मनिर्भरता, कृषि और महिला सशक्तिकरण की योजनाओं की जानकारी देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गोवा में लगभग 6000 लखपति दीदियों को आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक बागवानी केंद्र आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र में बागवानी को मजबूत करेगा और किसानों के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराएगा। श्रीमती सीतारामन ने आज अन्नामय्या जिले के मदनपल्ले में रायलसीमा वैश्विक बागवानी केंद्र परियोजना और भारतीय कृषि विद्यालय की आधारशिला रखी। वित्त मंत्री ने किसानों को सहयोग देने और उनकी आय बढ़ाने के लिए बेहतर जल प्रबंधन, आधुनिक प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे की आवश्यकता पर भी बल दिया। महाराष्ट्र निवेश शिखर सम्मेलन में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में 85 लाख करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्तावित निवेश से संबंधित 67 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। श्री फडणवीस ने राज्य को प्रमुख निवेश स्थल बनाने के

0: presence of mind, and composure saved many lives. The nation pays homage to the father of the nation, Mahatma Gandhi, on his 157th birth anniversary today. A Sarv Dharm Prarthana Sabha was held at Bapu Samadhi at Rajghat in the national capital. President Draupadi Murmu attended the Sarv Dharm Prarthana this morning and paid floral tributes to the father of the nation. Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi, Lok Sabha Speaker Om Birla, Union Housing and Urban Affairs Minister Manohar Lal and Delhi Chief Minister Rekha Gupta also paid tributes to Mahatma Gandhi at Rajghat. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi paid tributes to Mahatma Gandhi at Gandhi Smriti in New Delhi this evening. Several other dignitaries also paid tributes to Bapu. Eminent singers as well as school students sung devotional songs during the program. United Nations has welcomed India's approval of the 1.86 lakh crore rupees Green Energy Corridor Phase 3, describing the Grid Strengthening and Battery Storage Scheme as a major step that will deliver big dividends for the country's people and economy. In a statement to a news agency, UN Climate Change Executive Secretary Simon Steele said the initiative would help India harness its growing renewable energy capacity, meet rising electricity needs, and further strengthen its position as a global leader. And that is the end of this news bulletin.
1: ದರೆಯಂತಸ ಆಕಾಶವಾಣಿ ದಿಲ್ಲಿನ ಖಬರುಲ್ಲಾ ಚೇತ್ಪಿನ್ ಮೀಡಿಯಂ ವೇವ್ ಕದಿಯು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕರ್ಗಿಲಿನ್.
2: Hey girls,
3: hey, congratulations.
2: आज तो पार्टी चाहिए.
4: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे.
5: आइडिया, यही करते हैं पार्टी.
2: पिज़्ज़ा पार्टी लिए. चल अपना कार्ड और पिन दे.
6: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी. आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें. ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें.
2: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग.
6: आरबीआई कहता है जानकार बने, चौकन्ने रहें.
7: तीन महीने में पैसे डबल, वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी. क्या वाकई ऐसा है? कल तो नहीं था यहाँ
8: और कल होगा भी नहीं.
9: तूने कभी पांच ओवर में डबल सेंचुरी मारी है?
10: ऐसी स्कीम के बहकावे में आकर हम धोखा खा सकते हैं.
9: और आरबीआई कहता है अपना पैसा महफूज रखें और समझदारी से सरमायाकारी करें. अगर ज्यादा रिटर्न्स के पीछे भागेंगे तो रिस्क भी उतना ही उठाएंगे.
8: और फास्ट रिटर्न से महफूज रह के
9: और फास्ट बोलिंग से भी. आरबीआई कहता है जानकार बने, चौकन्ने रहे.
11: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे. So easy.
12: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए. आरबीआई कहता है
13: जानकार बनिए, सतर्क रहिए.
14: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में. अरे वाह.
12: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए. आरबीआई कहता है
13: जानकार बनिए, सतर्क रहिए.

0: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RKLI इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
3: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
2: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी

0: Fia. Programa sırtın gân pwain Gulzar Hussein and program prachuk gân pwain Muhammad Hussein.
1: कम वक्त में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक पर, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: ज्यादा बोनस कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही आरबीआई, इससे बेहतर कुछ नहीं।
5: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस आरपीएलआई की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

Kasa kasa.

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: दरियंतेस प्रोग्राम यानी नुतपिन सगेत पौनीफिया प्रोग्राम असर तंग हनपिन में गुलजार हुसैन और प्रोग्राम फचुक हनपिन में मोहम्मद हुसैन मीडियम वेव के द्वारा आकाशवाणी करके लिए वक्त पर शामिल तो सोतरतुन चंदुक का सत्ता प्रोग्राम यानी नजर साइंस मैगजीन प्रोग्राम असर तंग हनपिन गुलजार हुसैन और प्रोग्राम फचुक हनपिन ताहिरा बानो
5: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI इससे बेहतर कुछ नहीं।
6: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
7: Assalamu alaikum Julie program science jubes la khurenga tahira bano yang respachi gendi dun la lepsiot diama jare di antangar gar juksiot na nan met san meter ka musen monyam bo juksiduk tuk yale rin mo che antar taxpayot science program istrolika pharmacic science khabarun science ijadat na tajurbat dona pharmacic topic unika sortanga dukpad program itsir nazom se sak basis nan lar galbet bir don jak pyang sha chakan science khabar khachik prochupat der gyabna diring singi goma topic pyotang how vaccine train the immune system re ni vaccine is ngati immune system puga chwa immune system pula training tang ma diani ga chos biang zdar tang ma dis kolla yen tang sak pek sperari glep chu chain der gyabna diring akashwani kargile studio madam amama banos ke chis khonsod khoi kana biodiversity dona importance of local ecosystem is kolla yen tang sak pek fespa disegang lep chu chain Kasata khabarun di chukaduk, Rgestit Hindustani's Orbital AI Satellite Flight Chatak Benyo Tinchuk, Rgestit Hindustani Khalai Technology Company Take Me to Spaces di chuk satellite chigi chatak benyo tinchuk, Gaz khalayangnuk AI Strolika data niskorla chalchalba nyan chayinchuk. Di satellite po October iljayangnuk SpaceX Rocket Strolika khalayangnuk kalchayinchuk. Di technology Strolika seka data nkalba patsik snalla khala yang nuk di goma la zon gangar gya bacha insu. Yang khabar chik lzot iskor laduk. Rgasti ti khalai las khums isroi choksna lzoti ka sainsi chalsal iskor piang nuk komi thogika duzdam chik man la khyongma som insu. Di khortangi tuspika mission chandriyani kana thobat pi maluma tuni iskor piang nuk grabs ba som insu. Dona sainsdan unis yong mayut pi tusun yang nuk lzoti ka kalbat pi mission. Paskar chandriyan 4 iskor la zirbasun. Chandriyan 4 iton tak po lzoti ka na namunan se ka khyongma inzire zes. Sumpa khabar pur gestit hindustan na fransi khalai lakthut iskor piang duk. Dir gestit Chit niskas Trishana Zirbi satellite mission pikal lasbenyo tinchuk. Di mission iton takpu sathogi dotsat chu dona mahol yani kharkhor skorla chacha inmi speran jambase jambacha inchuk. Chazerna distrolika chu wasailun dona namzigurje skorla rtakspa be fila rokhchuk. Jbi pa khabar pur deluxe na nanotechnology skorla duk. Gestit yanuk nanomedic silung pyanuk. Chalchali la zon dulin yu tinchuk. Chalchal bakhanunis nanotechnology cancer ilachi fila smanthang nrgui khas hesan chakpik lepchuk pi fila dona yung tu sunyangnuk rdeluxpur gyala jakpi fila kolba chacha inchuk. Yang khabarchik namza nathoteduk. Gyastit yangnuk dichik silwe yangnuk monsuni season piyangnuk baki elon natsuksla charpang yunze yung sinchuk. موسم اسکور لا چلچل بخانی کسپانی دیسکور پیانوک چلچلون مال لکھونیو تین چوک چازرنا دیس بریل پو سگیت چوی زرایا دونا جغزیری میچے کا گا چوک شیا پوغندوک زیری دیسکور پیانوک چلچلون دولنیو تین چوک یان خبر

0: Dari intes program ini nut pin science magazine program prachuk handpin min tohira bano medium wave ke diwa akashwani kargil in waqs po khabar ini sonsu kasata purgi khabrulla ngin nasad
1: kam premium zyada bonus apno ke liye sabse sahi rpli इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस आरपीएलआई की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

सर्वधर्म प्रार्थना सभाग्रल बस्योत्मिन वजीर आजम नरेंद्र मोदी दिरिंग मोतुक राजघाटी का महात्मा गांधी मेमोरियल ला खोंगा छेसलुक्सी बल्टन फ्रोचुक्स यंग मेन्दोंग नजर बासोमिन गांधी जयंती वास्पी का जीवीपी मुक्त अभियान नि गोजुक बसिन द्यू अभियान स्वच्छता ही सेवा प्रोग्राम योगा गुरुग्राम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इज गोजुक बसेत दि मुहिमपो अक्टूबर इच्छुक शिक्षक पाडुल चैन यंग द्याबरियानु कचराउन जीवीपी मलसंग ईश्वर चक्षी गणत थे चैन गांधी जयंती वक्फ बिका हुक्मरानी स्कोरी इस्लाहत पंचायत नुस्तान पुरचोचाओ दिही खिदमात नुरियलर चीफियर यस्त्रित गानु ग्राम सभा मल्लख्योने करगिल लंग अची नुमाइंदा महमद मुसे खबर तामा नजम से फेसबुक ग्राम सभे थंग दुम्बुरी पंचायत गरला वीडियो संग के जेर लुक्सियानुक सबका योजना सबका विकास मुहिम योगा रिफॉर्म उत्सव पेग नजम से मल्लख्योसिन दिवसला लोकसोल नुंगुनी ऑफिसर उन्नीस हुकूमती लोकसो सिक्किम उन दोना फंतोक्स चन प्रोग्राम उन्नीस कोरला हागोतांग स्पिन दि प्रोग्राम चना दिही तरकी लुंगी छोसना सरकार

0: का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
1: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं शेख यासीन। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। कौम आज महात्मा गांधी को उनकी जन्म जयंती पर कर रही है खराज अकीदत अदा। बापू की समाधि पर मुख्तलिफ मजाहिब की दुआइया मजालिस का एहतमाम। मुल्क की क्यादत के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर और वजीर आला का बापू को शानदार खराज अकीदत। जम्मू कश्मीर में कंप्रेस्ड बायोगैस पॉलिसी 2026 नोटिफाई। और चीफ सेक्रेटरी की सभी अहल किसानों को एग्री स्टैक के दायरे में लाने की डिप्टी कमिश्नरों को हिदायत। पेश है खबरों की तफसील। भारत आज बाबाई कौम महात्मा गांधी को उनकी 157वीं जन्म जयंती पर याद करके उन्हें खराज अकीदत अदा कर रही है। इस सिलसिले में मुल्क भर में कई तकरीबात का एहतमाम हो रहा है, जबकि बैरून ममालिक में भी भारतीय मिशनों की जानिब से सिलसिलावार प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है। कौमी राजधानी दिल्ली में नई दिल्ली के राजघाट में बापू की समाधि पर सभी मजाहिब की एक दुआइया मजलिस का एहतमाम हुआ। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन और वजीर अजम नरेन्द्र मोदी ने गांधी जयंती के मौके पर अपने अलग अलग पैगाम में कहा है कि बाबाई कौम महात्मा गांधी ने पूरे आलम को सच्चाई, अदम तशद्दुद, खुद इन्हसारी और अमन की राह दिखाई है। कौम आज साबिक वजीर अजम लाल बहादुर शास्त्री को भी उनके 122वें जन्म जयंती पर खराज अकीदत अदा कर रही है। वजीर अजम नरेन्द्र मोदी, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला और कई मरकजी वजरा ने आज संविधान सदन नई दिल्ली में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को खराज अकीदत अदा किया। बीजेपी के सदर नितिन नवीन, कांग्रेस के सदर राहुल गांधी, पार्टी के सीनियर लीडर मलिक अर्जुन खड़गे और दीगर कई अरकान पार्लियामेंट ने भी महात्मा गांधी को खराज अकीदत पेश किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि आज का दिन मुल्क के हर शहरी को एक नए तरीके से सोचने और इंसाफ के साथ खड़ा रहने का मौका फराहम करता है। SKICC श्रीनगर में आज गांधी जयंती के सिलसिले में मुनक़द तकरीब पर इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने भारत को मुकम्मल तौर विकसित बनाने और लोगों को खुद एतमादी के साथ जीने का रास्ता दिखाया।
4: मुझे पूरा भरोसा है कि बापू का दर्शन, सत्य, अहिंसा और एकता की ये ताकत निश्चित रूप से जो आज देश का रिजल्ट बन गया है, जिस बात को माननीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार दोहराया है, 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का बड़ा संकल्प, निश्चित रूप से बापू के आशीर्वाद और प्रेरणा से देशवासी उसे ले जा सकते हैं। आइए ऐसे भारत बनाने का हम सब यहाँ मिलकर के संकल्प लें, जिसमें प्रगति की गति तेज हो लेकिन मानवता की गति भी उसके साथ साथ उसी रफ्तार से चले। आइए एक ऐसे भारत बनाने का हम संकल्प लें जो बहुत शक्तिशाली हो लेकिन संवेदनशील भी हो, मॉडर्न भी हो लेकिन अपनी आत्मा से सदैव जुड़ा हुआ हो, समृद्ध हो लेकिन न्यायपूर्ण हो। सबसे बढ़कर वह एकजुट हो, ये सबसे बड़ी आवश्यकता है।
3: इससे कबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने वहां महात्मा गांधी के मुजस्मे पर गुलबारी करके बापू को शानदार खराज पेश किया। इस मौके पर कई फनकारों और स्कूली बच्चों ने गांधी जयंती की मुनासिबत से मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम पेश किए। तकरीब पर वजीर सेहत सकीना आयतू और चीफ सेक्रेटरी अटल डिल्लू के अलावा दीगर कई शख्सियात भी मौजूद थीं। इस दौरान मनोज सिन्हा ने मुल्क के साबिक वजीर अजम लाल बहादुर शास्त्री को भी उनकी जन्म जयंती पर खराज अकीदत पेश किया है। इस दौरान वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी महात्मा गांधी को खराज अकीदत पेश किया है। उन्होंने कहा है कि बापू जी ने पूरी दुनिया के लोगों को अदम तशद्दुद और भाईचारे का रास्ता दिखाया। गांधी जयंती को मुल्क भर में स्वच्छता

दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। इस दिन गांधी जी के उस ख्याल को अमली जामा पहनाने की कोशिश की जाती है जिसमें उन्होंने अपने तन मन के साथ साथ आस पड़ोस के माहौल को साफ सुथरा रखने पर जोर दिया है। आज स्वच्छता दिवस के मौके पर स्कूलों, दीगर इदारों और समाजी तंजीमों की जानिब से सफाई सुथराई के मुतअद्दिद प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है। आज गांधी जयंती के मौके पर पूरे मुल्क में खुसूसी ग्राम सभाओं का भी इनेकाद किया गया। इनमें हुक्मरानी की बड़ी तब्दीली वाली इस्लाहात और इकदामात पर गौर खोज किया गया जिनका मकसद पंचायतों को मुस्तहकम बनाना, अवामी खिदमात में बेहतरी लाना और मुल्क के देही इलाकों में मयार जिंदगी को बेहतर बनाना है। देही तरक्की और पंचायती राज महकमे के अहतमाम से आज गांधी जयंती के मौके पर जम्मू कश्मीर की सभी 4291 पंचायतों में खुसूसी ग्राम सभाओं का इनेकाद किया गया। देही तरक्की और पंचायती राज के वजीर जावेद अहमद डार ने कहा है कि देही इलाकों में तरक्की याती और सफाई सुथराई के अहदाफ फकत सरकारी इकदाम से नहीं बल्कि अवाम की भरपूर शमूलियत से हासिल किए जा सकते हैं। वो आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज टंगमर्ग में स्वच्छता ही सेवा की इख्तितामी और रिफॉर्म्स उत्सव की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के दौरान इजहार ख्याल कर रहे थे। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने कहा कि वजीर आला उमर अब्दुल्ला की सरबराही में हुकूमत जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए एक साफ सुथरा और पायदार माहौल कायम करने की वादाबंद है। बाद में उन्होंने डिग्री कॉलेज में मुख्तलिफ खेलों के लिए दस्तियाब सहूलियात का भी मुआयना किया। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर और राज्यसभा मेंबर शर्मा ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जन्म जयंती पर खराज पेश किया है। इस सिलसिले में आज पार्टी के सदर दफ्तर त्रिकुटा नगर जम्मू में एक तकरीब मनकद हुई जिसमें पार्टी के कई सीनियर लीडरों ने शिरकत की। बीजेपी के सीनियर लीडर और राज्यसभा मेंबर इंजीनियर गुलाम अली खटाना ने कहा है कि वजीर अजम नरेन्द्र मोदी ने विकसित भारत जी राम जी के जरिए देही इलाकों को खुद इनसार बनाने के लिए गांधी जी के नजरिए को एक नई जहत दी है। वो आज गांधी भवन जम्मू में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जन्म जयंती की मुनासिबत से मुनक़द तकरीब में इजहार ख्याल कर रहे थे। आकाशवाणी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में आज डीजी आकाशवाणी राजीव कुमार की सरबराही में स्वच्छ भारत दिवस मनाया गया जिस दौरान अफसरान और दीगर अमले ने स्वच्छता का अहद लिया। इस मौके पर महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जन्म जयंती पर खराज पेश किया गया। प्रोग्राम के दौरान एक पेड़ मां के नाम मुहिम के तहत पौधे भी लगाए गए। तकरीब पर आकाशवाणी के एडिशनल डीजी न्यूज एस सुब्रमण्यम भी मौजूद थे। गांधी जयंती के सिलसिले में सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन और सीजीएचएस वेलनेस सेंटर के मुश्तरक एहतमाम से स्वच्छ भारत के तहत एक प्रोग्राम मुनक़द हुआ जिस दौरान सनत नगर श्रीनगर में वाका मिनी मैटरनिटी अस्पताल की सफाई सुथराई की गई। यूटी में जम्मू कश्मीर पुलिस के एहतमाम से भी मुख्तलिफ अजला में गांधी जयंती तकरीबात मुनक़द हुई। इस दौरान कई मकामात पर स्वच्छता मुहिमात के तहत सफाई सुथराई भी अमल में लाई गई। वजीर आला उमर अब्दुल्ला की सरबराही वाली सरकार ने जम्मू कश्मीर कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी पॉलिसी 2026 को नोटिफाई किया है। इस पॉलिसी को हालिया दिनों वजारती काउंसिल की मीटिंग में मंजूरी दी गई थी। ये पॉलिसी ऑर्गेनिक वेस्ट को साफ सुथरे ईंधन और आला मयार की कुदरती खाद में तब्दील करने के लिए जामे लाहे अमल फराहम करती है। वजीर आला के दफ्तर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि पॉलिसी कुदरती खाद तैयार करने के लिए अखराजाती मुआवनत, रियायती निरखों पर जमीन की फराहमी, सिंगल विंडो खिदमात और मार्केटिंग की सहूलियात भी फराहम करती है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में पायदार तरक्की को फरोग देने के लिए यह तारीखी पॉलिसी तरतीब देने पर साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर सतीश शर्मा और महकमे के दीगर अफसरान को मुबारकबाद दी है। खुराक के वजीर सतीश शर्मा ने आज जम्मू सूबे के छंब असेंबली हलके का तफसीली दौरा किया। उन्होंने हलके में 13 करोड़ रुपए लागत वाले मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा और कई एक का इफ्तिताह किया। वजीर मौसूफ ने कहा कि सरकार लोगों की फलाह बहबूद के लिए पुरअज़म है। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें और आकाशवाणी के दीगर प्रोग्राम आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन और डीटीएच पर भी समाप्त कर सकते हैं। चीफ सेक्रेटरी अटल

0: लू ने तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर को हिदायत दी है कि वो सभी अहल किसानों को एग्री स्टैक के दायरे में लाने और उन्हें फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन असनाद जारी करने के लिए जरूरी इकदाम करें। श्रीनगर में आज मुतलका अफसरों की एक मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर में एग्री स्टैक की अमल आवरी का जायजा लेने के दौरान उन्होंने इस काम में शफाफियत को बरकरार रखने पर भी जोर दिया। चीफ सेक्रेटरी ने लैंड रिकॉर्ड्स की डिजिटाइजेशन के अमल का भी जायजा लिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अवामी खिदमत के अपने सफर के 25 साल मुकम्मल कर रहे हैं। इन 25 बरसों के सफर की कामयाबी वज़ीर-ए-आज़म के जन सेवा से देश सेवा के जज्बे से वाज़ह हो जाती है। इस खुसूसी सीरीज के सिलसिले में समाप्त करें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से मुतालिक हमारे नुमाइंदे की ये रिपोर्ट।
1: मरकजी सरकार ने साल 2014 से आम लोगों की फलाह व बहबूद को यकीनी बनाने नीज उनके मयार हयात में बेहतरी लाने के लिए कई इख्तराई इकदाम किए। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट स्कीमें और प्रोग्राम अमलाए जिनसे आवाम की जिंदगियों में आसानियां पैदा हुई, तरक्की की राहें खुल गई और रोजगार के नए नए मौके भी पैदा हुए। इन्हीं अहम प्रोजेक्टों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी नुमाया अहमियत हासिल है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की शुरूआत मुल्क में साल 2014 में डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने की। उस वक्त दुनिया के 89 ममालिक में भारत की रैंकिंग 142 थी। जब से लेकर आज तक भारत तमाम इंडिकेटर्स में नुमाया पेशरफ्त हासिल कर रहा है और इस वक्त 190 ममालिक में से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत 63वें पायदान पर है। अपनी नौयत की इस अनोखी पहल की रूह से अब मुख्तलिफ कवानीन आसान किए गए हैं। दफ्तरी तवालतों को कम से कम तर किया गया है। कोई भी कारोबार शुरू करने, परमिट हासिल करने, कर्जे हासिल करने, टैक्स की अदायगी, ट्रेडिंग और मसाइल को हल करने के निजाम को अवाम दोस्त बनाया गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत नए लेबर कवानीन, ई कोर्ट्स, जेम पोर्टल, डिजिटल अदायगी और दीगर फायदा बख्श निजाम वजूद में लाए गए। बहरहाल सरकार और आम लोगों के दरमियान दूरियां कम हो रही हैं। सुहेल भट्ट, आकाशवाणी न्यूज, श्रीनगर।
0: शुमाली रेलवे ने आज कटरा बानिहाल सेक्शन पर वंदे भारत ट्रेन का 100 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार का कामयाब तजुर्बा किया है। रेलवे के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने इस पेशरफ्त को एक तारीखी संगमील करार दिया। इस कदम की बदौलत मुसाफिरों को आरामदेह और कम वक्त में ज्यादा मसाफत तय करने की सहूलत मयसर होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने कहा है कि पार्टी जम्मू कश्मीर के आईनी हकूक की बहाली के लिए अपनी जिद्दोजहद जारी रखेगी। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि यूटी में मुंतखब जमहूरी हुकूमत को मौसर इख्तियारात, इंतजामी जवाबदेही और आवाम के साथ बराह रास्त जिम्मेदारी देने के लिए रियासती दर्जे की बहाली नागुजीर है। वादी में इन दिनों सयाहों की एक अच्छी खासी तादाद मौजूद है। ये सयाह यहां के मौसम खिजां की खूबसूरती से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। अनंतनाग से हमारे नुमाइंदे तसद्दुक रशीद ने खबर दी है कि कई सयाह जनूबी कश्मीर में वाका सेब के बागात की सैर से महजूज हो रहे हैं। कुछ सयाहों ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए अपने तासुरात का कुछ इस तरह इजहार किया है।
2: यहाँ का नजारा अच्छा है, एपल गार्डन बहुत बढ़िया, खाने के लिए बहुत मीठा ताजा वाला है और ये मौसम ठीक है यहाँ का।
3: बागीचा में पहली बार देख रहा हूँ, हमको देखने में बहुत अच्छा लगा एंड इस कश्मीर इज रियली भूस्वर्ग।
4: अभी आया है तो देखा, अच्छा लगा इसलिए पेड़ से तोड़ लिया, टेस्ट लगा है। आगे देखा भी है इसलिए ले भी लिया। कंट्री के लिए यही कहना चाहता हूँ, जो भी आए सेब के बागान में जरूर आना और अपना हाथ से तोड़ के खा के देखना, बहुत अच्छा लगेगा।
0: शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम श्रीनगर में जम्मू कश्मीर और रेस्ट ऑफ इंडिया के दरमियान ईरानी ट्रॉफी के लिए 5 रोजा टेस्ट मैच जारी है। मैच के दूसरे दिन आज जम्मू कश्मीर ने 21 रन के स्कोर के साथ अपने खेल का आगाज किया। जम्मू कश्मीर की टीम अपनी पहली इनिंग्स में 278 रन स्कोर कर सकी और इस तरह रेस्ट ऑफ इंडिया पर 41 रनों की सबकत हासिल की। दूसरे दिन के खेल के अख्ताम पर रेस्ट ऑफ इंडिया ने अपनी दूसरी इनिंग्स में एक विकेट के नुकसान पर 24 रन बनाये। मौसम महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 30 डिग्री जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत 10.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 33 डिग्री जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत 21.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर में कल तुलू आफ्ताब सुबह 6:26 और गुरूब आफ्ताब शाम 6:12 पर होगा। इसके साथ ही खबरों ये अब रिटर्न खत्म हुआ। अब सुनिए तबसरा, हमें दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।
5: आदाब, आज का तबसरा लेकर हम हाजिर। स्वच्छ भारत दिवस हर साल 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के यौमी पैदाइश

0: गांधी जयंती के मौके पर पूरे भारत में मनाया जाता है। इस दिन का बुनियादी मकसद सफाई सुथराई की अहमियत को उजागर करना और हर शहरी में जिम्मेदारी का एहसास पैदा करना है। महात्मा गांधी का मानना था कि सफाई आजादी से ज्यादा अहम है। ये दिन उनके पाकीजा और साफ सुथरे भारत के ख्वाब को पूरा करने की एक याद दहानी है। इस दिन का मकसद लोगों को अपने घरों, मोहल्ले और अवामी मकामात को साफ रखने की तरगीब देना है, ताकि गंदगी से फैलने वाली बीमारियों का खात्मा हो सके, क्योंकि सफाई बराह रास्त इंसानी सेहत से जुड़ी हुई है। स्वच्छ दिवस के जरिए सेहत और तंदुरुस्ती के पैगाम को आम किया जाता है, जिससे मुल्क में वबाई अमराज पर काबू पाने में मदद मिलती है। माहौलियाती तहफ्फुज के लिए ये दिन प्लास्टिक के कम इस्तेमाल, फजले के दुरुस्त इंतजाम और दरख्त लगाने जैसे इकदामात पर जोर देकर माहौल को बचाने का पैगाम देता है। खुलासा ये है कि स्वच्छ दिवस सिर्फ एक दिन की मुहिम नहीं, बल्कि ये एक याद दहानी है कि सफाई को हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए, ताकि एक सेहतमंद और तरक्की याफ्ता माशरा तश्कील पा सके। स्वच्छ दिवस यानी सफाई का दिन सफाई सुथराई, हिफजान सेहत और माहौलियाती जिम्मेदारी की अहमियत को भी उजागर करता है। कश्मीर के लिए साफ सुथरा माहौल खासतौर पर अहम है, क्योंकि ये खत्ता अपने खूबसूरत पहाड़ों, झीलों, वादियों, बाग और दीगर कुदरती मनाजिर के लिए मशहूर है। सियाहत कश्मीर की मईशत का एक अहम हिस्सा है और सफाई को बरकरार रखने से इसकी खूबसूरती के तहफ्फुज और सयाहों के तजुर्बे को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। कश्मीर हिंदुस्तान और दुनिया भर से सयाहों को अपनी तरफ रागिब करता है। ताहम कूड़ा करकट फैलाने, प्लास्टिक के फजले, आलूदगी और कचरे को गलत तरीके से ठिकाने लगाने से इन मकामात को नुकसान पहुंच सकता है। स्वच्छ दिवस के मौके पर चलाई जाने वाली सफाई मुहिमात मकामी बाशिंदों, सयाहों, तलबा, दुकानदारों और सियाहत से वाबस्ता कारकुनों में इन मकामात को साफ रखने के बारे में शऊर बेदार कर सकती है। सियाहती मकामात की सफाई सयाहों पर मुस्बत तासर छोड़ती है। साफ सुथरी सड़कें, बाजार, झीलें, होटल, पार्कें और अवामी मकामात सयाहों को सुकून का एहसास दिलाते हैं और जिम्मेदाराना सियाहत की हौसला अफजाई करते हैं। सफाई सुथराई कश्मीर के कुदरती माहौल के तहफ्फुज और इसकी झीलों, दरियाओं, जंगलात और जंगली हयात को महफूज रखने में भी मददगार साबित होती है। सफाई के प्रोग्रामों की कामयाबी सबकी शिरकत पर मुनहसर है। मकामी बरादरियां कूड़ा फैलाने से गुरेज कर सकती हैं और फजले को मुनासिब तरीके से ठिकाने लगा सकती हैं, जबकि सयाह सफाई के असूलों पर अमल कर सकते हैं और प्लास्टिक के गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल या इसे उधर फेंकने से बच सकते हैं। सरकारी में बल्दियाती इदारे, होटल और सियाहती तंजीमें भी फजले के इंतजाम की मुनासिब सहूलियात फराहम कर सकती हैं और आगाही फैला सकती हैं। लिहाजा कश्मीर के लिए स्वच्छ दिवस की अहमियत और भी ज्यादा है। ये लोगों को याद दिलाता है कि कश्मीर की खूबसूरती एक मुश्तरक जिम्मेदारी है। खत्ते को साफ रखकर और इसके माहौल का तहफ्फुज करके कश्मीर अपनी कुदरती कशिश को बरकरार रख सकता है और सयाहों को बेहतर तजुर्बा फराहम कर सकता है। आखिर में सफाई सुथराई कश्मीर में पायदार सियाहत का एक लाजमी जुज्व है। स्वच्छ दिवस लोगों को अच्छी आदत अपनाने और मौजूदा व आने वाली नस्लों के लिए कश्मीर को साफ, सरसब्ज और खूबसूरत रखने की खातिर मिलकर काम करने की तरगीब दे सकता है। साफ सुथरी वादी की खूबसूरती मकामी लोगों के रोजगार में भी मुआविन साबित हो सकती है। सयाह दस्तकारी की अशिया, रिवायती मलबूसात, कालीन, खाने पीने की अशिया और दीगर मकामी मसनूआत खरीदेंगे, जिससे कारीगरों, दुकानदारों, गाइड्स, ड्राइवरों, होटल मुलाजमीन और दीगर बहुत से लोगों के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे। अगर स्वच्छ दिवस की अहमियत को जिम्मेदारी के साथ उजागर किया जाए तो इसके फवायद माशरे के वसी तर तबके तक पहुंच सकते हैं। मजीद बरा सियाहत कश्मीर के भरपूर सकाफती वरसे को फरोग देने का मौका भी फराहम करती है। रिवायती मौसीकी, दस्तकारी, पकवान, त्यौहार, फन तामीर और रस्म रिवाज को सयाहों के सामने बावकार अंदाज में पेश किया जा सकता है। इससे सकाफती समझ बूझ भी पैदा हो सकती है और साथ ही नौजवान नस्ल की हौसला अफजाई होती है कि वो अपने वर्षे की कद्र करें और इसे महफूज रखें। आखिर में ये कहा जा सकता है कि स्वच्छ दिवस का कश्मीर में सियाहत की तरक्की के साथ गहरा ताल्लुक है। खैर मकदम करने वाला माशरा, जिम्मेदाराना रवैया, माहौलियाती आगाही, सकाफती एहतराम और मकामी आबादी व सयाहों के माबेन ताउन पायदार सियाहत के फरोग में माउविन साबित हो सकते हैं। कश्मीर का हुस्न सयाहों को अपनी जानिब खींचता है, लेकिन यहां की मेहमान नवाजी, जिम्मेदाराना शहरी रवैया और लोगों व फितरत का एहतराम उनके तजुर्बे को बामकसद और देरपा बना सकता है। तबसरा खत्म हुआ, इजाजत दें, शब बखैर।
1: हमारी आवाज
2: समीन, अभी आप आकाशवाणी श्रीनगर से उर्दू में खबरें और तबसरा समाप्त कर रहे थे। मीडियम वेव 684 किलोहर्ट्ज़, मीडियम वेव 1584 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ के अलावा मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर यह आकाशवाणी करगिल की आवाज़ है। شب کے 8 بجے ہوا چاہتا ہے

0: जय हिंद। फिल्मी गीतों पर मबनी प्रोग्राम फौजी भाइयों के लिए लेकर हम हाजिर खिदमत है। प्रोग्राम सुनने वाले तमाम फौजी भाइयों और दोस्तों की खिदमत में हमारा मोहब्बत भरा सलाम।
1: पार्टी चाहिए,
2: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
3: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
1: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
3: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
3: आरबीआई कहता है जानकार बने, चौकन्ने रहे।
4: 3 महीने में पैसे डबल,
5: वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी।
4: क्या वाकई ऐसा है? कल तो नहीं था यहाँ
5: और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है?
6: ऐसी स्कीम के बहकावे में आकर हम धोखा खा सकते हैं।
5: और आरबीआई कहता है अपना पैसा महफूज रखें और समझदारी से सरमायाकारी करें। अगर ज्यादा रिटर्न्स के पीछे भागेंगे तो रिस्क भी उतना ही उठाएंगे।
7: और फास्ट रिटर्न से महफूज रह के
5: और फास्ट बोलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बने, चौकन्ने रहे।
0: दोस्तों, आज एक ही कलाकार के तहत आज के हमारे कलाकार है बेगम अख्तर। बेगम अख्तर का पूरा नाम अख्तरी बाई फैजाबादी थी। उनकी पैदाइश 7 अक्टूबर 1914 को अवध में पैदा हुए।

आप समाप्त कर रहे थे बेगम अख्तर को, कलाम थी शकील बदायूनी की। दोस्तों आज के हमारे कलाकार हैं बेगम अख्तर, वो हमारे मुल्क की एक मशहूर गुलकार और अदाकारा भी थी। उसकी मकबूलियत को देखते हुए उन्हें मलिके गजल यानी क्वीन ऑफ गजल के नाम से भी मौसूम की गई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैकड़ों लोगों की जान बचाने वाले फ्लाई दुबई के पायलट कैप्टन स्मित मच्छर की बहादुरी की सराहना की। कहा, भारतीय जान लेते नहीं बल्कि दूसरों की जान बचाते हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की

0: पृथ्वी पर राष्ट्र आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और एशियाई खेलों में भारत ने 44 वर्ष बाद महिला हॉकी में स्वर्ण पदक जीता। पहलवान सुजीत कलकल, मुक्केबाज परवीन हुडा, लवलीना बोरगोहाइन और अंकुश पंघाल ने भी स्वर्ण पदक जीते। भारत 16 स्वर्ण सहित कुल 76 पदकों के साथ पदक तालिका में पांचवें स्थान पर पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कैप्टन स्मिथ मच्छर से फोन पर बात की। श्री मोदी ने इसराइल जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट को क्रैश कराने की कथित कोशिश को नाकाम करने में कैप्टन स्मिथ मच्छर की बहादुरी और सूझबूझ की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय वे लोग नहीं हैं जो दूसरों की जान लेते हैं, बल्कि वे हैं जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार रहते हैं। श्री मोदी ने कैप्टन मच्छर की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने पलक झपकते ही जो फैसला लिया उससे सैकड़ों यात्रियों की जान बच सकी।
1: आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूं।
0: बुधवार को दुबई से तलवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कॉकपिट में सहयोगी पायलट के हमले में कैप्टन मच्छर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। फ्लाइट में 174 यात्री सवार थे, जिनमें 27 बच्चे भी शामिल थे। पायलट का अभी संयुक्त अरब अमीरात के अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। अस्पताल से प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में कैप्टन मच्छर ने कहा कि 17 वर्ष के फ्लाइंग अनुभव ने उन्हें हालात की गंभीरता को समझने और तुरंत कार्रवाई करने में मदद की। उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि वे देश से दूर हैं लेकिन देश की संस्कृति से नहीं। प्रधानमंत्री ने कैप्टन स्मिथ मच्छर के इलाज का इंतजाम करने के लिए सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की सरकारों का आभार प्रकट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन के दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात कर रहे हैं कि मन की बात से इस दृष्टिकोण को कैसे साकार किया गया है।
2: 2014 अक्टूबर से आकाशवाणी पर शुरू हुए मन की बात कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से संवाद करते हैं। यह कोई नीतिगत संबोधन नहीं है। इसमें किसी आम नागरिक द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को सामने लाया जाता है, किसी योजना को सरल और सहज भाषा में समझाया जाता है और स्वच्छता, जल संरक्षण या आत्मनिर्भरता जैसे विषयों में लोगों से सहयोग की अपील की जाती है। रेडियो उन जगहों तक भी पहुंचता है जहां संचार का कोई और माध्यम नहीं पहुंच पाता। अप्रैल 2023 में मन की बात के 100वें एपिसोड में अपने विचार साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा था,
3: मन की बात में पूरे देश के कोने कोने से लोग जुड़े, हर आयु वर्ग के लोग जुड़े। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो, स्वच्छ भारत आंदोलन हो, खादी के प्रति प्रेम हो या प्रकृति की बात, आजादी का अमृत महोत्सव हो या फिर अमृत सरोवर की बात, मन की बात जिस विषय से जुड़ा वो जन आंदोलन बन गया।
2: मीडिया से बातचीत में लखनऊ के विभिन्न हिस्सों से श्रोताओं ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को एक दूसरे से और देश से जुड़ने का एक नया माध्यम प्रदान किया है।
4: प्रधानमंत्री जी ने जो भी पहल की है देश के हित में की है, तो हमें उससे भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि एक घर का गार्डन जैसे परिवार का गार्डन को समझाना चाहिए। आभार का प्रधानमंत्री हमें समझा रहा है तो हमें उस पर अमल करना चाहिए।
5: देश में बहुत लंबे समय बाद रेडियो की उपयोगिता बढ़ी है। प्रधानमंत्री जी ने रेडियो के माध्यम से अपना संदेश गाँव के उन नौजवानों तक पहुँचाया जो इस सूचना प्रौद्योगिकी के दौर में पिछड़ गए थे और उनकी बातों कर रहे हैं।
2: आज करोड़ों भारतीय प्रधानमंत्री के इस संबोधन को सुनते हैं। एक आकांक्षी भारत उत्सुकता के साथ उन कहानियों को सुनता है जिनमें बदलाव के वास्तविक अनुभव सामने आते हैं। मन की बात ने सार्वजनिक संचार के स्वरूप को एक नया रूप दिया है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। श्री गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन पर यह बात कही। श्री गोयल

0: कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, जिसकी घरेलू मांग पर आधारित अर्थव्यवस्था 140 करोड़ लोगों की जरूरतों को पूरा करती है। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का प्रावधान इस व्यवस्था की महत्वपूर्ण गारंटी है, जिसके अंतर्गत छोटे और बड़े सभी कारोबारियों के लिए समान शर्तें लागू होती हैं। जबरन मजदूरी को समाप्त करने के विषय पर श्री गोयल ने कहा कि जबरन श्रम के उन्मूलन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पूर्ण और बिना शर्त है। उन्होंने विश्व व्यापार संगठन WTO को केंद्र में रखते हुए निष्पक्ष, समान, भेदभाव रहित और पारदर्शी बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने विकासशील देशों को विकास और खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी नीतिगत गुंजाइश देने तथा सर्वसम्मति से फैसले लेने की व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया। इस बीच श्री गोयल ने ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब और दक्षिण कोरिया सहित कई देशों के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की। आरजू के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है।

0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम नई दिल्ली स्थित गांधी स्मृति में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान जाने माने गायकों और स्कूली विद्यार्थियों ने भक्ति गीत गाए। विश्वभर में स्थित भारतीय दूतावासों और उच्चायोगों ने भी आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 157वीं जयंती पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर उनके सत्य, अहिंसा और शांति के संदेश को याद किया। चीन में भारतीय राजदूत विक्रम दोरईस्वामी ने भारतीय समुदाय और स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों के साथ पेइचिंग में महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। जापान में भारत की राजदूत नागुमा मल्लिक और भारतीय समुदाय के सदस्यों ने टोक्यो के एडोगावा में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। पाकिस्तान, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बहरीन और दक्षिण कोरिया में भी इसी तरह के स्मृति कार्यक्रम आयोजित किए गए। खादी और ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी के अध्यक्ष मनोज गोयल ने आज बताया कि नई दिल्ली के क्रॉट प्लेस स्थित खादी भवन सहित पूरे देश में विशेष छूट अभियान शुरू किया गया है। ये छूट आज से 16 नवंबर तक उपलब्ध रहेगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि निस्वार्थ सेवा भारत की संस्कृति और सभ्यतागत मूल्यों का मूल आधार है। नई दिल्ली में आज आयोजित 11वें संत ईश्वर सम्मान समारोह में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि देश के महान संतों और विचारकों ने लोगों को स्वार्थ की संकीर्ण सीमाओं से ऊपर उठकर दूसरे के कल्याण के लिए स्वयं को समर्पित करने की प्रेरणा दी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: अपडेट रहे, आगे रहें, expert@AIRNews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIR News अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने केंद्र सरकार को शिशु देखभाल अवकाश संबंधी सिफारिशें सौंप दी हैं। इनमें शिशु देखभाल अवकाश को निजी क्षेत्र में लिंग भेद रहित बनाना, अनिवार्य सवैतनिक पितृत्व अवकाश और 2030 तक 5,00,000 शिशु देखभाल केंद्रों की स्थापना करना शामिल है। आयोग ने ये सिफारिशें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, महिला और बाल विकास मंत्रालय तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय को सौंपी हैं। एक रिपोर्ट।
2: आयोग ने अनौपचारिक गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को भी मातृत्व और बाल देखभाल लाभ प्रदान करने की सिफारिश की है। आयोग ने पाया कि 90% से अधिक महिला श्रमिक प्रभावी कवरेज से बाहर हैं। आयोग ने मौजूदा महिला केंद्रित बाल देखभाल अवकाश ढांचे को लिंग भेद रहित बाल देखभाल अवकाश में बदलने की सिफारिश की है, जो दोनों अभिभावकों में से किसी एक को उपलब्ध हो। रिपोर्ट में मौजूदा 730 दिनों के बाल देखभाल अवकाश ढांचे को दोनों कामकाजी अभिभावकों के बीच समान

0: रूप से विभाजित करने का प्रस्ताव है। इसमें प्रत्येक को 365 दिन मिलेंगे या साझा पूल बनाने का प्रस्ताव है, जहां दोनों अभिभावक एक ही संगठन में काम करते हों। 0 से 2 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए रिपोर्ट में प्राथमिक और माध्यमिक देखभालकर्ताओं के बीच 60:40 के रूप में साझा देखभाल मॉडल का भी प्रस्ताव है। इसमें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को सार्वभौमिक और कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार बनाने का भी प्रस्ताव है। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
1: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मिजोरम में कल दुखद सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले सूचना और प्रसारण जगत के 3 सदस्यों के असामयिक निधन पर शोक व्यक्त किया है। ये दुर्घटना तब हुई जब अधिकारी आधिकारिक ड्यूटी पर थे और उनका वाहन गहरी खाई में गिर गया। मृतकों में भारतीय सूचना सेवा के 2 वरिष्ठ अधिकारी डॉ इंगम पामे और नामपीबू मरिनमाई तथा केंद्रीय संचार ब्यूरो के कर्मचारी एच लियानवेला शामिल हैं। और अब एशियाई खेल खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
2: जापान में एशियाई खेलों में आज भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के साथ ही भारत ने लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। वहीं भारतीय पहलवान सुजीत कलकल ने पुरुषों के फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया।
3: मैं सभी देशवासियों को धन्यवाद करता हूँ, उनकी दुआओं से ये मेडल आया। ये सोच के उतरे थे मैट पे कि भाई देश के लिए गोल्ड लाना है, और आखिरी तक मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी और भगवान की दया से गोल्ड आया देश के लिए। अपने देशवासियों को डेडिकेट करता हूँ क्योंकि उनकी दुआ ही सबसे ज्यादा काम आती है।
2: पुरुष मुक्केबाजी के 80 किलोग्राम वर्ग में अंकुश पंघाल ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिला मुक्केबाजी के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन हुड्डा ने नियन चिन चेन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहाइन ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता।
4: बहुत ज्यादा स्पेशल है ये मेडल मेरे लिए, कहीं ना कहीं मैं बॉक्सिंग छोड़ने भी वाली थी, उसके बाद से फिर से मेंटली स्ट्रांग होके आना और जीतना वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात, और मैं सोच के आई थी कि इस बार मुझे बर्थडे पे गोल्ड मेडल ही चाहिए।
2: महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर पहला स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 16 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य सहित 76 पदकों के साथ 5वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है।
1: दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने जानकारी दी है कि दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास गेट खोल दिए गए हैं। नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर इंटरचेंज की सुविधा भी अब उपलब्ध है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश में अगले 2 दिनों तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, आंध्र प्रदेश, केरलम और माहे में 5 अक्टूबर तक गरज चमक के साथ तूफान की आशंका है। कल लक्षद्वीप, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रह सकती है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैकड़ों लोगों की जान बचाने वाले फ्लाई दुबई के पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छर की बहादुरी की सराहना की। कहा, भारतीय जान लेते नहीं बल्कि दूसरों की जान बचाते हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर राष्ट्र आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और एशियाई खेलों में भारत ने 44 वर्ष बाद महिला हॉकी में स्वर्ण पदक जीता। पहलवान सुजीत कलकल, मुक्केबाज परवीन हुडा, लवलीना बोरगोहाइन और अंकुश पंघाल ने भी स्वर्ण पदक जीते। भारत 16 स्वर्ण सहित कुल 76 पदकों के साथ पदक तालिका में 5वें स्थान पर पहुंचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: Good evening. This is Akashvani. I'm Shagun Chopra with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi praises brave pilot Smith Machar for saving hundreds of lives and foiling attempt to crash Israel-bound flight. Asserts Indians are those who risk their lives to save others, not take lives. Commerce Minister Piyush Goyal says India is building manufacturing value chains from design to finished goods as a trusted link in global supply chains. Nation pays homage to father of the nation Mahatma Gandhi and former Prime Minister Lal Bahadur Shastri on their birth anniversary. And in Asian Games, India wins first women's hockey gold in 44 years. रेसलर सुजीत कल

0: कौमी राजधानी में राजघाट पर बापू की समाधि पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा यानी सभी मजाहिब के दुआइया जलसे का एहतमाम किया गया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह सर्वधर्म प्रार्थना में शिरकत की और बाबा कौम को गुलहाए अकीदत नजर किए। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और दीगर रहनुमाओं ने भी राजघाट पर महात्मा गांधी को गुलहाए अकीदत नजर किए। नायब सदर और वजीर आजम ने आज शाम नई दिल्ली में गांधी स्मृति पर महात्मा गांधी को खिराज अकीदत पेश किया। प्रोग्राम के दौरान नामवर गुलकारों के साथ साथ स्कूली तलबा ने रूहानी नगमे गाए। मुल्क ने आज साबिक वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री को उनके 122वें यौमे पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। वो 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में पैदा हुए, जिसे पहले मुगल सराय कहा जाता था। नौ उम्र में वो भारत की तहरीक आजादी में शामिल हुए और साल 1921 की अदम तावन तहरीक में हिस्सा लिया। आजादी के बाद लाल बहादुर शास्त्री ने उत्तर प्रदेश और उसके बाद मरकजी हुकूमत में कई अहम ओहदों पर खिदमात अंजाम दी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने साबिक वजीर आजम को आज सुबह कौमी राजधानी में वाकई उनकी यादगार विजय घाट पर गुलहाए अकीदत नजर किए। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अवामी खिदमत के 25 बरस मुकम्मल हो रहे हैं, जो जन सेवा से देश सेवा के मंत्र पर मबनी है और इस अंथक अजम का सिलसिला जारी है। सेवा और सुशासन के इस नजरिए के तहत हुकूमत साल 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने की खातिर अंथक काम कर रही है। आज अपनी खसूसी सीरीज में हम तस्करा कर रहे हैं कि मन की बात के जरिए इस नजरिए को किस तरह अमली शक्ल दी गई है।
1: आकाशवाणी पर मन की बात महाना रेडियो प्रोग्राम के तौर पर शुरू हुआ था। इसके आगाज के बाद से एक भी महीना ऐसा नहीं गुजरा जब ये प्रोग्राम नशर ना हुआ हो। ये कोई पॉलिसी से मुतालिक खिताब नहीं है। इस प्रोग्राम में आम लोगों के उन कामों को उजागर किया जाता है जो उन्होंने अच्छे तरीके से अंजाम दिए हों। इस प्रोग्राम के जरिए किसी सरकारी स्कीम को आम फहम जबान में समझाया जाता है और सफाई, सुथराई, पानी या खुद किफालत जैसे मामलात में आवाम से ताउन की अपील की जाती है। रेडियो उन लोगों तक भी पहुंचता है जहां कोई और जराए इबलाग नहीं पहुंच पाते हैं। इस प्रोग्राम ने मुल्क के आवाम से बातचीत का एक ऐसा अंदाज पैदा किया है जो न तो प्रेस कॉन्फ्रेंस है और न ही इंतखाबी मुहिम। अप्रैल 2023 में मन की बात के 100वें नशरिये के मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मन की बात में जिन मौजूदात या स्कीमों का अहाता किया गया वो अवामी तहरीक की शक्ल अख्तियार कर गईं।
2: मन की बात में पूरे देश के कोने कोने से लोग जुड़े, हर आयु वर्ग के लोग जुड़े। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो, स्वच्छ भारत आंदोलन हो, खादी के प्रति प्रेम हो या प्रकृति की बात, आजादी का अमृत महोत्सव हो या फिर अमृत सरोवर की बात, मन की बात जिस विषय से जुड़ा वो जन आंदोलन बन गया और आप लोगों ने बना दिया।
1: मीडिया से बात करते हुए लखनऊ के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले सामेईन ने कहा कि मन की बात प्रोग्राम के जरिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बहुत कुछ आवाम तक पहुंचाया है।
3: प्रधानमंत्री जी ने जो भी पहल की है देश के हित में की है, तो हमें उससे भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि एक घर का गार्जियन जैसे परिवार का गार्जियन को समझाना चाहिए। आभार का प्रधानमंत्री हमें समझा रहा है तो हमें उसमें अमल करना चाहिए।
4: देश में बहुत लंबे समय बाद रेडियो की उपयोगिता बढ़ी है। प्रधानमंत्री जी ने रेडियो के माध्यम से अपना संदेश गांव के उन नौजवानों तक पहुंचाया जो इस सूचना

0: के दौरान पिछड़ गए थे और उनकी बात वो कर रहे हैं।
1: मीडिया से बात करते हुए मारूफ अदाकार आमिर खान ने कहा कि मन की बात प्रोग्राम ने लोगों को काफी मुतासिर किया है। आज करोड़ों भारतीय वजीर आजम के खिताब को सुनते हैं और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से सामने आने वाली हुक्मरानी की कामयाबियों की कहानियां सुनते हैं। उमंगों वाला भारत, बदलती हुई हकीकतों की दास्तानें गहरी दिलचस्पी और जुस्तजू के साथ सुनता है। नई दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीर।
2: भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आइंदा दो दिन के दौरान अरुणाचल प्रदेश में शदीद बारिश होने की पेशगोई की है। IMD ने कहा है कि इस महीने की 5 तारीख तक तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, आंध्र प्रदेश, केरलम और माहे में गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। बरतानवी भारतीय शतरंज खिलाड़ी बोधना सिवानंदन के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की जानिब से खवातीन का ग्रैंड मास्टर खिताब WGM जीतने वाली सबसे कम उम्र खिलाड़ी होने का एतराफ किया गया है। इस 11 साल स्कूली तालिबा ने समरकंद उज़्बेकिस्तान में मुनक़िद 46वें शतरंज ओलंपियाड को जीतकर तारीख रकम की थी, जिससे वो बावकार WGM खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र खिलाड़ी बन गई थी। भारत की सरकर्दा ट्रैप शूटर नीरू ढांडा इतवार को आईची नागोया में होने वाली एशियाई खेलों की इख्तितामी तकरीब में भारत की खवातीन परचम बरदार होंगी। जापान के आईची नागोया में जारी एशियाई खेलों में सोने के तमगे जीतने का सिलसिला जारी है। खेल के 13वें दिन भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए हॉकी, मुक्केबाजी, कुश्ती और तीरंदाजी में 6 सोने के तमगे हासिल किए और अपनी महारत, अज्म और खेल के आला मेयार का मुजाहिरा किया। खवातीन हॉकी के फाइनल में भारतीय टीम ने सख्त मुकाबले में दिफाई चैंपियन चीन को 0-1 देकर सोने का तमगा जीता। लाल रेमेम सियामी ने भारत की जानिब से फैसलाकुन वाहिद गोल किया, जबकि गोलकीपर सविता पूनिया ने पेनल्टी स्ट्रोक का बचाव करते हुए भारत की बढ़तरी बरकरार रखी और सोने का तमगा जीता। एशियाई खेलों में भारतीय खवातीन हॉकी टीम ने 44 सालों के लंबे इंतजार के बाद पहला सोने का तमगा हासिल किया है। इसके साथ ही भारतीय खवातीन हॉकी टीम ने 2028 के लॉस एंजलिस में होने वाले ओलंपिक्स खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इससे पहले भारतीय पहलवान सुजीत कलकल ने 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल मुकाबले में शानदार वापसी करते हुए सोने का तमगा जीता। मर्दों के 80 किलोग्राम जुमरे के फाइनल में अंकुश पंघल ने जनूबी कोरिया के किम मिन सियोंग को 4-0 से हराकर सोने का तमगा जीता। भारतीय खातून मुक्केबाज लवलीना बोरगोहाइन ने 75 किलोग्राम जुमरे के फाइनल में चीन की खिलाड़ी को हराकर जीत हासिल की। इसके साथ ही तमगे की फहरिस्त में भारत 5वें नंबर पर पहुंच गया है। भारत के तमगों की तादाद बढ़कर 76 हो गई है, जिसमें सोने के 16, चांदी के 25 और कांसे के 35 तमगे शामिल हैं। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बहादुर पायलट स्मित मच्छर की सैकड़ों जाने बचाने और इसराइल जाने वाली परवाज को तबाह करने की कोशिश नाकाम बनाने पर तारीफ की। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारतीय वो होते हैं जो दूसरों की जान नहीं लेते हैं, बल्कि दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल देते हैं। तिजारत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आलमी सप्लाई चेन में एक काबिल एतमाद शराकतदार के तौर पर डिजाइन से लेकर तैयारशुदा अशिया तक मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन तश्कील दे रहा है। मुल्क ने बाबाए कौम महात्मा गांधी और साबिक वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री को उनके यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। और एशियाई खेलों में भारत ने 44 सालों में खवातीन हॉकी में सोने का पहला तमगा जीता। एशियाई खेलों में भारत तमगों की फहरिस्त में 5वें मकाम पर पहुंच गया है। इसके तमगों की मजमू तादाद बढ़कर 76 हो गई है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
3: दरियन तेज आकाशवाणी दिल्ली ने हिंदी अंग्रेजी दिन उर्दियां खबर लाइन मीडियम वेब कदि आकाशवाणी करगिलिन वॉक्सपोर्टानी तुसतुरगुना फेत सोसुक कजता रीजनल न्यूज यूनिट आकाशवाणी करगिल ग्रैलिका न्यूज रील प्रोग्राम गिन नजत करगिल नामा सिरतंगन पुइन मोहम्मद अब्दुल्ला प्रचुखन पुइन खदीजा बानो।
4: نین خان کنی خدمت لا السلام علیکم ریجنل نیوز یونٹ آکاش ونی کرگل اگرلکنین مزد کرگل نامہ سقوا سنسنال لنگین مزد دی ہفتیاں چکنی خبرونی چرپو یو ٹی انتظامیہ سیویل ایویشن محکمہ سرولکا سپٹمبر الزنگ ایشور سرگنا فلغہ لداخ گنگ پیان سبسیڈی رینکا ہیلیکاپٹر ان سرولبا گزوک لداخ پولیس از کانسٹیبل سلیکشن افیا ریکوائرمنٹ ریلی کرگل لا جگما غیفیا گرال بسے ان لیفٹیننٹ گورنر ونی کمار

0: Rdunna Rdungena Gapchu Lehna Padumash Mulstong Trukna Rgubgena Rdunchuna Ga Lehna Depling Nyarak Deskitla Shmulstong Jbjina Trugena Gapchu Gapchu Deona Tsogzla Lehna Tushtuga Shmulstong Trukna Rgena Rgubchu Kirayaun Shchose In Deona Zomsezilla Intizamian Di Servisun Sninkomna Nyambo Shtulbi Mingna Rgozoti Gralsirun Sakmalen Kyonse Helipet Na Lezan Officerun Dona Nodal Officerun Sak Mingfez Boz Zerek Kaskun Tangma Song Deona Tsoxla Deputy Commissioner Unla Khette Mimang Sunla Helicopter Idi Service Police Korlash Taxpa Chachukpi Mingna Lokso Media Paunis Rolika Hagun Sagan Tong Zere Zerset De Bariang Bespaun La Rangi Tikatun Official Ladakh Helicopter Service Portal heliservice.ladakh.gov.in Pekana Book Boz Zere Zere In Ladakh Police is Constable Selection If Your Requirement Really Kargil La Jagma Ghi Mingna Gral Basi Indi Reliu Tsirna Drese Malla Kyunganiyot Goma Jag Nispiang Bomo Umedwar Unifia Physical Standard Test Dona Physical Endurance Test Po Malla Kyunse In Yang Adit Sakpa Dekana Bomo Buzha Unifia Di Test Un Malla Kyuncha In Mediana Gragan SSP Kargil Netin Yados Dius Na Leh Malla Kyunspin Zes Yang Dare Kargil La Dule In Zere Zerba Song Kong di gral siruna la zone ka singin khom baziyang mana nginse absence thomas song zes
1: yeah abhi ye kargil mein hai to kal aur aaj ladkiyon ka recruitment ka physical aur physical endurance test tha iske baad ladkon ka shuru hoga jo sunday ko khatam ho jayega but yahan pe aap jaise dekh sakte hain ki teen cheezon ka hona hai height measurement aur ladkon ke liye height aur chest dono rahega usme uske baad race hai uske baad long jump hai और लड़कियों के लिए शॉर्ट पुट और लड़कों के लिए पुशअप रहेगा इसमें और आगे आने वाले टाइम पे लड़कों के लिए रहेगा और यहाँ पे जो हम ये रिक्रूटमेंट प्रोग्राम कर रहे हैं ये बेमथा ग्राउंड में कर रहे हैं और इसमें हमने एक पॉजिटिव चीज देखी है कि एब्सेंटिज्म काफी कम है इस बार मतलब लोग काफी बढ़ चढ़कर इसमें आ रहे हैं मतलब सिर्फ ये नहीं है कि फॉर्म भर दिया फिर बाद में लोग आ नहीं रहे बट लोग बड़े एंथुजियास्टिकली इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में भी जो लड़के का रिक्रूटमेंट होगा लड़कों का रिक्रूटमेंट होगा उसमें भी मैं आशा करता हूँ कि लड़के बढ़ चढ़ कर आए और लद्दाख पुलिस का पार्ट बने मोस्टली जो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में जो फेल हो रहे हैं वही है जो प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे क्योंकि आपको पता है कि हमने एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी चलाया था इसके रिगार्डिंग तो उसमें काफी लोगों ने हेल्प ली थी उसमें प्रैक्टिस करी थी लोगों ने लॉन्ग जंप की और बाकी जितने भी इवेंट्स हैं तो आप भी एक बार अपना सबसे पहली बात आइए क्योंकि क्या पता अगर आप में वैसे ही स्टेमिना होगा और आप फिजिकल एंड्योरेंस के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए कैपेबल होंगे तो आप वैसे भी क्वालिफाई कर सकते हैं और दूसरा यहाँ पे मैं एक आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि यहाँ पे बिल्कुल फेयर और ट्रांसपेरेंट काम हो रहा है यहाँ पे मतलब अगर कोई सोचता है कि कोई किसी का जुगाड़ लगा के कुछ होता है तो ऐसा नहीं है आपने जैसे कि एक अभी पूरी हर जगह की वीडियो भी रिपोर्टिंग करी है इसमें आप जैसा कि हर हमारे इवेंट पे कैमरेज लगे हुए हैं और बिल्कुल ही मशीन्स के द्वारा जहाँ पे कोई भी एक ह्यूमन इंटरफेरेंस की जो गुंजाइश होती है वो हमने बिल्कुल रूल आउट करने की कोशिश करी है
0: दी फिजिकल टेस्ट पियंग चेस्ट चर्चाउन बाउंस डोर लॉन्ग जंप दोना शॉर्ट पुट ना पुश अप उन ड्रेसे योट पिन एसएसपी कारगिल इज दी टेस्ट निफिया प्रैक्टिस मना खर्चन इन जरेंदे फियास ना ओरिएंटेशन प्रोग्राम मल्ला क्यों स्पिन जरे थोर टांस एसएसपी नितिन या दोस दी लसुन स्किन कम नाश कैंस मना ड्रेसे स्ट्रुलची फिया सीसी कैमरा उनी रोक्स योट जेस या उम्मीदवार उनी खुरी क्यूट ना ड्रेसे दोना जोमसे डेन सेलेक्शन शोचा इन जरे जरबा सॉन्ग डीआईजी लेहना कारगिल दोना चेयरमैन रिक्वायरमेंट बोर्ड कुशाल कुमार शर्मा ना एसएसपी कारगिल ना ए एहलकार उन्नीस दी लसुनला तालुक जखसे योतनन गवर्नर विनय कुमार सक्सेना जिला कारगिल अंगनुक थुंगछुन लास के तामे मिंगना छी सोमा प्रोजेक्ट इजबिए इज इन तंसे इन लेफ्टिनेंट गवर्नर खसकोना जोमसे इंतजामिया सरगस्त्रित न पाकिस्तानी लाजुगी सचमसी गामियुल हिंदुरमान ला छी इंफ्रास्ट्रक्चर उन छी मिंगनाश मुल्क करोर गे इज इन तंसे इन गाउन लेफ्टिनेंट गवर्नर इज खोरंग दी गामियुली जिक्सखोरिका योत्पी वक्सला मीमांग सुनिस गामियुल प्यानोक छुत्सी गिस कोरला जरबाना Malianu Kyonse in Zere Zerse Diawna Tsos Larmul Karor Sumna Lak Nishwi Rini Ka Yang Project Hachigang Izin Tanse in Gawen